अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आपने सुना गायन। कलाकार मधुप मुद्गल, राग रामकली आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल

0: आज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said, BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS Foreign Ministers' meeting, which is underway in New Delhi. The government has imposed a limit of 100 kg on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Directorate General of Foreign Trade said, advance authorization for import of gold shall be issued subject to a maximal remissible quantity of 100 kilograms. The Directorate General added that any subsequent advance authorization for the import of gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation. Earlier, there was no limit on gold imports under the scheme. European Union has included India in the revised draft list for continued export of aquaculture products to the EU market. Ministry of Commerce and Industry said that the earlier regulation had not included India among third countries authorized to export products of animal origin.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदना।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लघु वार्ता भगवान महावीर के उपदेश। वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
2: भारतवर्ष की तपोभूमि पर ज्ञान का अमृत बांटने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर एक राजकुमार थे और उनके माता पिता ने उन्हें वर्धमान नाम दिया था। राजा का पुत्र होने के कारण उनके पास कई सांसारिक सुख संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और राजघराने को छोड़ अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी। मानवता की सेवा, उसके दर्द, दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में वे एक भिक्षु बन गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जो आज भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य बिंदुओं में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। सब जीवों में आत्मा है, किसी को भी हिंसा न पहुंचाओ। महावीर स्वामी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान देना ही अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है,

0: कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की बजाय उसे शांति से जीने दें और खुद भी शांति से जीने का प्रयास करें, तभी आपका और सबका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आत्मा ही उसकी शत्रु होती है। आपका असली शत्रु आपके भीतर ही है, जो कि क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत हैं। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से स्वयं का विनाश होता है। जैसे आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जीवित व्यक्ति तीनों लोकों की सारी धन दौलत पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाएं, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी भूल जाना चाहिए। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाए उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। महावीर ने मानव जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कर्म को ही भाग्य माना। उन्होंने कहा कि शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को दर्शाती हैं। महावीर का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश सार्वभौमिक करुणा से परिपूर्ण है। महावीर ने कहा कि जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जिसमें संभावित रूप से पूर्ण बोध यानी अनंत दर्शन, पूर्ण ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, पूर्ण शक्ति यानी अनंत वीर्य और पूर्ण आनंद यानी अनंत सुख है। महावीर का संदेश जीवित प्राणी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस का।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृतसरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

0: रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमानविकाससंस्थायाः विमानसमायोजनस्य उड्डयनपरीक्षणकेन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नतमध्यमयुद्धविमानकार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 37 होरास् झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिस्सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11100 जनाः मृताः, 200 जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुर मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतम् आभूषण निर्यातकाः शून्यशुल्केन असंस्कृत वस्तूनाम् अथवा निवेश सामग्रीणाम् आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य

वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति

उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका।

संगीती का कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे क्षितिज माथुर के गाए भजन। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अंधेरों के इतने आदि हो जाते हैं कि रोशनी पर यकीन करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और हर ठहरी हुई जिंदगी में एक दिन बहार भी ज़रूर आती है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि मौसम बदलने में वक्त लगता है, मगर जब बदलता है ना तो जिंदगी पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तो आइए, उठिए, मुस्कुराइए, शायद आज जिंदगी की निंदिया से जागी बहार आपका इंतजार कर रही है।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों जानते हैं, दोस्ती ना सिर्फ हंसने का नाम नहीं है, ये वो रिश्ता है जो गिरने पर उठाता है और जीत मिलने पर सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों को ही होती है। ज़िंदगी के दौड़ में मंजिलें बदलती रहती है, कभी हार मिलती है तो कभी जीत, लेकिन अगर साथ में अपने यार हो ना तो हर सफ़र आसान लगने लगता है। आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं, उन रिश्तों को सलाम करने का है जो बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़े रहते हैं, और वो होते हैं हमारे दोस्त।

दोस्तों, ये पंछी सिर्फ आसमान में उड़ते हुए पंख नहीं है, ये तो आज़ादी की वो कहानी है जो हर सुबह लिखी जाती है। इनकी चहचहाट में कोई शिकायत नहीं होती, बस एक सुकून होता है, एक भरोसा होता है कि दुनिया अब भी खूबसूरत है। इन्हें देखिए ना, कैसे ये हवा में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं, ना कोई डर, ना कोई रुकावट का बोझ, बस एक खुला आसमान और एक अनकही सी हिम्मत। शायद हमें भी इनसे यही सीखना चाहिए कि उड़ान के लिए मंजिल नहीं, हौसला चाहिए होता है। और अगर दिल में सच्ची चाहत होती है ना, तो फिर कोई भी रास्ता, कोई मिल गया जैसा जादू बन जाता है।

जानते हैं, सुबह की हवा जब पेड़ों से होकर गुजरती है ना, तो पंछियों के सुर खुद ब खुद जग जाते हैं। ये कोई सीखा हुआ गीत नहीं होता, ये तो प्रकृति का दिया हुआ वरदान होता है, जहाँ ना कोई चिंता है और ना कोई कल का बोझ। बस एक पल है जो पूरी तरह जिया जा रहा है। इन पंछियों को देखकर लगता है कि जिंदगी अगर सुर में जी ली जाए ना, तो हर दिन एक नया गीत बन सकता है और हर सांस में एक नई उम्मीद गूंज सकती है।

दोस्तों, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ रुकता हुआ सा लगता है, रास्ते भी अपने नहीं लगते और सपने भी दूर हो जाते हैं। लेकिन असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहां लोग रुक जाते हैं। जो गिर कर भी उठने की हिम्मत रखते हैं ना, वही अपनी कहानी लिखते हैं। हर मुश्किल हमें तोड़ने नहीं आती है, वो हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। और याद रखिएगा, समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हमेशा बदलता है। बस खुद पर यकीन कभी मत खोइए।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
6: इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। UAE अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। UAE के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से LNG तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और UAE की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
7: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा

0: अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
1: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: दाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रन।
0: महाराष्ट्र की सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: भारत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेर सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाऊ में सैंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% ज़रूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू ज़हबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तशदीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इमकान ग्रिड इंटर कनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार कम हो जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं, जिससे बाहमी तजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से एलएनजी तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत यूएई शराकतदारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इकतसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वजीर आजम ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फरोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग के दौरान हुई जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वज़ीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अमनो सलामती आलमी इस्तेकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106.68 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की 93.14 रुपये फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.74 रुपये, जबकि फी लीटर डीजल 95.13 रुपये हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटेरियल दरामद करने की इजाज़त देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाज़त नामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
1: DGFT ने पहली दफ़ा दरख्वास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीक नामा उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा जिसमें पेशगी तस्दीक नामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुतालिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नज़रसानी शुदा मुसविदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत व तजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में जवाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन जवाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अदविया एंटी माइक्रोबियल से पाक हों। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नज़रअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई ज़िले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज़ का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज़ को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा पांचवें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयार प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपये की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मस्कूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज़ नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज़ VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराए ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोज़ा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर ज़िले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर ज़िला इंतज़ामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर ज़िले का मशहूर मेला है, जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का ये पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के लिए कदम उठाएं एस जयशंकर। मुल्क में SIR के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंतखाबी कमीशन ने 16 रियासतों और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में खसूसी जाम नज़रसानी कराने का फ़ैसला किया। अखबारात ने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबे में खुद इन्हसारी पर ज़ोर देने के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के मुअस्सर इकदामात को भी नुमाया जगह दी है। अखबारात में शाया होने वाली बैनुल अक्वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा, शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन के तल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज UAE, नैदरलैंड्स, स्वीडन

नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत की ज़ेर सदारत ब्रिक्स एक ज़्यादा शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्वरगंगा कार्यक्रम के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं पंडित हरीश तिवारी का गाया राग आसावरी तोड़ी।

स्वरगंगा कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। इसमें आज आपने सुना हरीश तिवारी का गायन। ये पेश कर रहे थे राग आसावरी तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 800।

0: 10 किलो हॉर्स पर। प्रस्तुत है गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है महात्मा गांधी के महिलाओं की शिक्षा पर विचार। आलेख रीमा यादव और स्वर गुल निगार चौधरी।
1: अक्सर हम महात्मा गांधी को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के नायक के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका असली संघर्ष तो सामाजिक न्याय और समानता के लिए था। गांधी जी का मानना था, यदि भारत को वास्तव में स्वतंत्र होना है तो उसकी आधी आबादी यानी महिलाओं को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर आना ही होगा। गांधी जी के लिए शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान या ऊंची डिग्रियां नहीं था। उन्होंने एक बार बहुत ही मार्मिक बात कही थी। उन्होंने कहा था, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन यदि एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। गांधी जी की नज़र में शिक्षा वो है जो मनुष्य के भीतर सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाए। महिलाओं के संदर्भ में वे इसे और भी गहराई से देखते थे। वे कहते थे कि शिक्षा वो शस्त्र है जो महिला को उसकी गुलामी से मुक्त करती है। पुराने समय में समाज ने महिलाओं के लिए जो लक्ष्मण रेखाएं खींची थी, गांधी जी ने शिक्षा के माध्यम से उन रेखाओं को नया अर्थ दिया। वे अक्सर कहते थे कि शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी महिला और पुरुष की शिक्षा में समानता के समर्थक तो थे ही, लेकिन वे दोनों को एक जैसा बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क बड़ा व्यवहारिक था। वो कहते थे कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का कार्य क्षेत्र प्रकृति ने अलग बनाया है, इसलिए उनकी शिक्षा में भी कुछ भिन्नता होनी चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि महिलाएं गृह बंधन, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता और बच्चों के मनोविज्ञान की शिक्षा लें, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वे महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद रखना चाहते थे। इसके उलट गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि महिलाएं पुरुष की दासी नहीं हैं, वे उनकी सहचरी हैं, उनकी अर्धांगिनी और समान अधिकारों वाली साथी हैं। वे चाहते थे कि शिक्षा महिलाओं में वो आत्मबल पैदा करे, वे समाज की कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ खड़ी हो सकें। गांधी जी का मानना था कि एक शिक्षित स्त्री ही अहिंसा की सबसे बड़ी दूत बन सकती है, क्योंकि स्त्री में त्याग और प्रेम की शक्ति पुरुष से कहीं अधिक होती है। अब बात करते हैं गांधी जी के सबसे प्रिय प्रतीक चरखे की। बापू के लिए चरखा आर्थिक शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम था। वे जानते थे कि जब तक महिला आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहेगी, वे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने शिक्षा को कौशल यानी स्किल से जोड़ा था। वे चाहते थे कि हर लड़की आत्मनिर्भर बने। गांधी जी के शब्दों में, चरखा एक ऐसा संगीत है जो नारी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाता है। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। ऐसी शिक्षा जो अंग्रेजी में कहें तो हैंड हार्ट हेड का समन्वय करे। वे चाहते थे कि महिलाएं निडर बने। उन्होंने एक बार कहा था कि जिस दिन भारत की कोई महिला रात के 12 बजे भी अकेले सड़क पर निडर होकर निकल सकेगी, उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा देश वास्तविक रूप में स्वतंत्र हो गया है। और ये निडरता केवल शिक्षा से ही आ सकती है। आज हम 21वीं सदी में हैं। आज महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, देश चला रही हैं, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस रास्ते की नींव कहीं ना कहीं बापू के उन्हीं विचारों में थी जिन्होंने महिलाओं को घर से निकलकर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए साहस दिया। बापू ने हमें सिखाया कि नारी अबला नहीं है। उनकी नज़र में स्त्री अहिंसा का साक्षात रूप थी। आज हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें गांधी जी के उस विचार को हमेशा याद रखना चाहिए कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण का आधार है। गांधी जी ने एक बार कहा था, स्वराज के निर्माण में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं बल्कि अधिक ही होगा, क्योंकि वे अधिक कष्ट सहन करने की क्षमता रखती हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैंने ये बात समय समय पर कही है कि महिलाओं को उनकी निर्भरता के आधार पर वंचित करना या उन्हें समान अधिकारों से वंचित रखना उचित नहीं है, बल्कि शिक्षा महिलाओं को उन प्राकृतिक अधिकारों को बनाए रखने, उनमें सुधार करने और उनका प्रसार करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो लड़के लड़कियों को स्वयं के प्रति अधिक उत्तरदायी बना सके और एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान की भावना पैदा कर सके। महिलाओं को भी उनकी ये सलाह है कि वे सभी अवांछित और अनुचित दबावों के खिलाफ आवाज उठाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी महिलाओं की शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे और उनका ये मानना था कि महिलाओं की शिक्षा के बिना समाज और देश का पूर्ण विकास असंभव है।
0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था महात्मा गांधी के महिलाओं की शिक्षा पर विचार। आलेख रीमा यादव और स्वर गुल निगार।

इसी के साथ गांधी चर्चा कार्यक्रम का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वीके तोमर।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपये और डीजल 95.13 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपये और डीजल का मूल्य 95.35 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
3: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्ते दोस्तों, आज हम रेडियो सफ़र पर एक ख़ास सफ़र में निकल रहे हैं, यानी कि रेडियो के इस कार्यक्रम में आपकी पसंद में आज हम निकल रहे हैं एक सफ़र पे। तो अपनी जो खिड़की वाली सीट है वो अगर आपको पसंद है तो जल्दी से उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि हमारी जो ये ट्रेन है ना वो यादों और गानों के स्टेशन पर रुकेगी भी और आपको बहुत सारी यादों में लेकर भी जाएगी। और आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है आपकी पसंद, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त आरती गौर और आज हम बात करेंगे ट्रेन से जुड़े सफ़र की, जिससे जुड़ जाती हैं बहुत सारी ऐसी अनोखी यादें जो भुलाए नहीं भूलती। कभी कुछ अच्छी, कभी कुछ बुरी, कभी कुछ नमकीन, कभी कुछ खट्टी, कुछ मीठी, तो हर तरीके की यादें लेकर जो हमारी ट्रेन होती है ना वो गुज़रती है। तो आज ये ट्रेन भी गुजर रही है आपको अपनी यादों के आईने में ले जाने के लिए। तो बस आप भी अपने स्टेशन का ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि उस स्टेशन पर हुआ क्या था। कुछ ऐसा वाकया हमें बताइए जिसे सुनकर हमें भी मज़ा आ जाए और आपकी भी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो बस आप शुरू हो जाइए अपनी यादों के जो अतीत है में गलियारे में झांकने के लिए और ट्रेन से जुड़े उस वाक्य को याद करने के लिए। फिलहाल अभी तो गाड़ी बुला रही है, उसके बाद बहुत सारे लोगों की जो मेल है वो भी हमें बुला रहे हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे। लेकिन आप अपनी यादों से निकाल कर लाइए कोई ऐसा किस्सा जो मज़ा ही आ जाए और IP Radio Delhi@gmail.com पर आपको

हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे पैसेंजर, और एक पैसेंजर जो हमारे हैं यानी हमारे साथी जो हैं, उनका मेल आया है। वो कहते हैं कि आरजे आरती गौर जी नमस्कार, हमें आपके शो की गाड़ी बुला रही है लवली आगाज़। तो इनको ये गीत काफ़ी पसंद आया है और ऐसा लिखना है, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाद्रा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु निधान खुराना है। इसके साथ जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। ये कहते हैं बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं, हम भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शिद्दत से सुन रहे हैं। तो ज़रूर थैंक यू आपका कि आप सब इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लेकिन बहुत ही और भी खुशी होगी अगर आप अपनी यादों को भी हमसे साझा करेंगे। भाई हमारी गाड़ी तो निकल गई है छैया छैया होते हुए ही, लेकिन अब आपकी यादों की गाड़ी कब तक पहुँचेगी हम तक? तो आप हमें बताइए, ट्रेन में जुड़ा कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी कहानी जो आपके दिल में आज तक घर करके बैठी है, तो आप हमसे शेयर कीजिए ipradiodelhi@gmail.com पर।

ये हमारे पास आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का। कहते हैं आरती दीदी हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, चल छैया छैया। तो भाई ये तो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये इन्होंने बता दिया है, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। फिलहाल आप सबने ट्रेन से ना सही पर सफर तो जरूर किए होंगे जिंदगी में, तो उन सफर से जुड़ी हुई कोई याद हम तक पहुंचा दीजिए। भाई आप भी तो झांकी है ना अपने अतीत में थोड़ा सा, और गुदगुदाती हुई कोई याद निकाल कर आइए और बताइए कि कैसा था वो सफर। आगे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, परदीन, सुहान, अरजान, अबान और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं बहन आरती गौर जी हमारे मेल की गाड़ी कहीं रुक गई है, जरा धक्का देकर निकाल दो। देखिए धक्का देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपकी गाड़ी निकल के बाहर आ गई है और आपका स्टेशन भी आ गया है। अगले जो संदेश में है हमारे साथ वो है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। इसके साथ ही अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, रशीद वारसी, अनम अब्बासी और यशव अब्बासी। इसके साथ ही अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुड्डू और भावित सिक्का।

तो किशोर कुमार जी कह रहे हैं, अनुरोध फिल्म में आते जाते खूबसूरत रास्तों पे अक्सर कई किस्से भी बन जाते हैं, जो कुछ किस्से हमें याद भी रहते हैं और कुछ हम भूल भी जाते हैं। तो आपको भी अगर कोई किस्सा याद है तो ज़रूर सुनाइए हमें। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने संदेश की तरफ। ये है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगेराम सतौड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार कह रहे हैं आरती जी बहुत सुंदर गाने बज रहे हैं, कार्यक्रम में चार चांद लग गए, धन्यवाद जी। तो चलिए आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है, शुक्रिया। इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष।

तो ये हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा कहते हैं, ट्रेन का सफ़र मैंने बहुत पहले किया था जब मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता था और रानीगंज बंगाल में, और मैं रानीगंज बंगाल में, और इसका कुछ अलग ही मज़ा है, एडवेंचर है, फैमिली एक साथ बैठती है जस्ट लाइक अ पिकनिक, नए नए लोगों से मिलना होता है और साथ ही बहुत सी नई जगहों की जानकारी होती है। तो भाई इन्होंने तो अपने दिल की बात हमसे कह दी कि इनका सफ़र कैसा रहा और क्या क्या सीखा इन्होंने अपने सफ़र में। ऐसे ही आपके पास भी सफ़र से जुड़े कुछ किस्से तो ज़रूर होंगे, तो अगर आप सुनाना चाहें तो बिल्कुल IP Radio Delhi@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं।

अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, ये हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, और ये जुड़े हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। किसी भी गीत में ये शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हैं वो हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, कहते हैं इंद्रप्रस्थ अभी लाइव सुन रहे हैं, लाजवाब नगमों की पेशकश के लिए दिल से शुक्रिया। अगले जो श्रोता हैं वो हैं दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और श्रोता हैं रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू, साथ ही जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इन्होंने दोबारा संदेश अपना भेज दिया है और बहुत सारे संदेश हमारे पास एक नहीं बल्कि पता नहीं कितनी बार आए हैं। फिलहाल हम नए संदेश को शामिल करेंगे, लेकिन पहले ये गीत सुनते हैं।

जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। इसके साथ ही अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित। साथ ही जुड़े हुए हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नगमा नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से हमारे साथ ये बने हुए हैं, गंज डुंडवारा से शमशुल कुमार।

ये जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो है इंदिरा नगर भंवरपुर से राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन। इसके साथ ही जुड़े हुए हैं ज्योति मकर मन्नत भरत कमल साहनी पिंगा वाला चौक गोरिया जालंधर से। साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं मोहम्मद सादिक सनावत से वैष्णो कॉलोनी पाकिजा रेडियो श्रोता संघ, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। साथ ही हमारे साथ और भी बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं जिनका हम नाम समय समय पर लेते रहेंगे। ये हमारे साथ जुड़े हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा।

जी हाँ, दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और इस खूबसूरत सी दुनिया को अगर जानना है तो सफ़र पे तो निकलना ही होगा। और हम सब निकल जाते हैं सफ़र पे कुछ ना कुछ नया ढूंढने के लिए। फिलहाल अभी तो मैं ढूंढ रही हूँ एक मेल जो हमारे पास आ गया है। ये है एनी सॉन्ग जी मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं जग्गी गुड मॉर्निंग कहते हुए। अगले जो श्रोता हैं वो हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। और आगे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं गांव हीरावाला, फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, और ये कहते हैं नमस्कार जी, प्रोग्राम हम लाइव सुन रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इन्होंने दोबारा संदेश भेजा है। अगले संदेश की तरफ बढ़ते हैं, इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन।

जी हाँ, ट्रेन की बात चले, सफ़र की बात चले और ये गीत उसमें शामिल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। मेरे सपनों की रानी, आराधना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत हमारे पास, बहुत सारे लोगों ने इसकी जो डिमांड है वो करी थी। तो चलिए, आप तक आपका गीत पहुंच चुका है और साथ ही ये कहना चाहेंगे कि सच में ट्रेन में ही ये जिस तरीके से ये शूट हुआ था ना, सच में मज़ा आता है इस गीत को देखने सुनने में। आगे बढ़ते हैं अपने संदेशों की तरफ। गांव चौधरी बास हरियाणा से मांगेराम सतौड़ कहते हैं, हम एक बार आगरा जा रहे थे गाड़ी में। इन्होंने बस इतनी ही बात बताई है और इसके साथ ही इन्होंने जिस गीत की डिमांड की थी वो गीत प्ले हो रहा है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने अपना हमेशा की तरह वही काम किया है कि बार बार बार बार बार बार संदेश भेजा है और इस वजह से काफ़ी सारे संदेश जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं। थोड़ा मैं ढूंढती हूँ, तब तक आप इस गीत का आनंद लीजिए।

और ये जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं रेस्पेक्टेड होस्ट दीदी जी, अगर हो सके तो हमें भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लीजिए। लीजिए शामिल हो गए हैं और ये लिखने वाले हैं जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो, ये किसी भी गीत में शामिल होना चाहते थे। इसके साथ ही सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। साथ ही जुड़े हुए हैं पुरी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी और बेबी बॉय हिमांशु। इसके साथ ही जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं गंजुंडवारा से शमशुल कुमार राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान और अनु खान। अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं वापस गंजुंडवारा से ही जुड़े हैं। तो भाई बार बार आपको यही कहा जाता है कि आप सारे लोग मैसेज भेजते हैं, अपने मेल हमें करते हैं, हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन कोशिश कीजिए एक या दो से ज़्यादा संदेश मत भेजिए, क्योंकि बहुत सारे श्रोता फिर अपनी नाराज़गी हम पे जताते हैं, जबकि हकीकत तो ये होती है कि आप सबके बार बार के मेल के चक्कर में

बढ़ते हैं आप सबके संदेशों की तरफ। ये हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगले जो श्रोता हैं वो हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता है इनका लगान पंडरिया छत्तीसगढ़। इसके साथ ही जो अगले श्रोता जुड़े हुए हैं वो हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। इन्होंने बहुत सारी एक लिस्ट बना के दी है कि इनमें से कुछ भी बजा दीजिए, तो बहुत सारे गानों का इन्होंने अच्छे खासा प्लेलिस्ट बनाकर हमको दे दी है। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा और कुवात बिहार से शेख जफर हसन और

हमारे जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, ऋषिका संधू, प्रतीक्षा संधू और मैक्स, ये हमारे साथ जुड़े हैं गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से। साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो किशन वंजानी हैं। इसके साथ ही अगले हमारे साथ जुड़े हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल हमारे साथ

हमारे साथ किशन बंजानी ने ही लिखा है, कार्यक्रम शानदार चल रहा है, गीत पसंद आ रहे हैं, थोड़ा सा प्यार ये गीत ये सुनना चाहते हैं। चलिए कोशिश करेंगे, समय तो वैसे काफ़ी कम रह गया है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है सबको नाराज़ ना करें, और आपकी जो ये जो आप प्यारे प्यारे गीत और प्यारी प्यारी बातें करते हैं उनको हम पूरा कर सकें। अगले जो श्रोता हैं वो राम शरण विश्वकर्मा हैं, इन्होंने शायद अपना संदेश दोबारा हम तक पहुंचा दिया है। ऐसे बहुत सारे श्रोता हमारे पास हैं जिनके संदेश बार बार बार बार लगातार आ रहे हैं, और वही संदेश है, एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट किए हुए संदेश हैं, और वो शायद कार्यक्रम को सही से सुन नहीं रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के मेल दिए जा चुके हैं।

ये जो हमारे पास संदेश आया है वो है कस्बा गुन्ना और यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा का। इसके साथ ही बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग हमारे साथ जुड़े हैं। अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो वापस रिपीट वाले संदेश ज़्यादा हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं मलयान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियन जैन। ये कहते हैं दी ट्रेन के सफ़र का आनंद अलग ही होता है। मैंने ट्रेन से हमारा तीर्थ चाहिए है और अबू रोड माउंट आबू जाने के लिए बहुत सफ़र किया है। अच्छा, तो ये बताना चाहते हैं ये यहाँ जाने के लिए काफ़ी सफ़र करते हैं। तो भाई आपके तो पास तो काफ़ी सारे किस्से रहे होंगे क्योंकि आपने सफ़र काफ़ी कुछ किया है ट्रेन में, तो ऐसे कुछ किस्से अगर सुनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर अपने वाक्यों को शेयर करना शायद सही नहीं समझा, या फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा भी आया था संदेश कि उन्होंने ट्रेन में सफ़र ही कभी नहीं किया। तो इस बात को सुनकर थोड़ा सा मैं हैरान भी थी हुई और थोड़ा सा अजीब सा भी मुझे लगा कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ट्रेन में कभी सफ़र ही नहीं किया। ये एक मतलब दुख की बात ही कह सकती हूँ मैं, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है और दुनिया को देखने के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और ट्रेन से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र शायद कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जब रास्ते भागते हैं, ट्रेन के विंडो सीट पर आप बैठे होते हैं, चलते हुए पेड़, भागते हुए रास्ते, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और साथ में ठंडी हवा और आसपास में लोग जो होते हैं, जिनका जमावड़ा होता है, जो कुछ अजनबी होते हैं, कुछ पहचान के होते हैं, उनसे जो बातचीत का सिलसिला होता है, नए लोगों से पहचान होती है, वो एक अलग ही किस्सा होता है।

तो दोस्तों, अब तो आप सबके स्टेशन के साथ साथ अब मेरा भी स्टेशन आ गया है और मुझे भी अब इस स्टेशन पर उतरना होगा, क्योंकि और भी बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो रास्ते में लगी हुई हैं, यानी कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो आपके लिए आने बाकी हैं, उन्हें लेने के लिए मुझे तो जाना होगा। और फिलहाल आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ यूँ ही बनी रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, और सफ़र ज़रूर कीजिए और अपनी यादों को संजो कर ज़रूर रखिए, क्योंकि ये ही होती हैं जो हमेशा हमारे मन को गुदगुदाती हैं। और हम जब अतीत में झांकते हैं तो अक्सर यही यादें हमें मुस्कुराना सिखा जाती हैं। तो फिलहाल अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें NTA वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार NTA विस्तार से NTA का एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर NTA के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों, कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और

0: अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरों मध्य खुला रहना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on

अभी आपने जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल सुनी, और आइए अब सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे प्रतीक चौधरी जी द्वारा बजाए सितार वादन का राग वृंदावनी सारंग।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसके अंतर्गत आपने आनंद लिया प्रतीक चौधरी जी द्वारा सितार वादन का राग वृंदावनी सारंग।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
3: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
5: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
3: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. The National Testing Agency, NTA, has announced that the medical entrance exam, NEET UG 2026, will be reconducted on the 21st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month, was cancelled due to alleged paper leak, and CBI is investigating the matter. In a social media post, the agency

और दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर। और दोस्तों देखिए, कहते हैं कि अच्छे विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में हमेशा अमर रहती है। और साथ ही इन मुलाकातों का असर भी हमेशा रहता है। अगर एक बार किसी से मिले तो बार बार मन करता है, यानी अपने दोस्तों से मिलने का बार बार मन करता है। इसलिए हम आपसे मिले यही हमारा मन करता है, और बहुत समय के बाद मिले तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो एक अच्छा सा खूबसूरत सा सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं गीत तो आपकी नज़र, और उसके बाद हम करेंगे बहुत ढेर सारी बातें आपसे आगे। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ घर आंगन के इस शो में।

और अब बात करते हैं कुछ आकाशवाणी के 90 सालों के सफ़र की, क्योंकि 90 सालों के सफ़र की शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही खूबसूरत रही है, और ख़ास तौर पर ऑल इंडिया रेडियो बना आकाशवाणी। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आधिकारिक रूप में बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी का शाब्दिक अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज़। ये नाम रेडियो की उस शक्ति को दर्शाता है जिसके माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचते हैं। आज आकाशवाणी 23 भाषाओं को यानी 100 यानी कि 189 बोलियों में प्रसारण कर देश की लगभग 98% आबादी तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है। तो है ना, कितनी खूबसूरत सी बात। तो आकाशवाणी का जो ये 90 सालों का हमारा शुरुआती सफ़र रहा है, बहुत ही खूबसूरत रहा है, जिससे कि हर देश के कोने कोने तक आकाशवाणी की आवाज़ उन जन जन तक पहुंचाई जा रही है जो हमारे कार्यक्रमों को सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं।

और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। पहले की तरह इस साल भी आप harghartiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं, आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा।

और अब बात करते हैं दोस्तों, आज महावीर आचार्य महावीर प्रसाद की जयंती है। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 15 मई 1864 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। वे हिंदी साहित्य के एक महान लेखक, संपादक और विचारक थे, जिन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का शिल्पकार माना जाता है और उन्हें हिंदी नवजागरण का भी अग्रदूत कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने सरस्वती पत्रिका के लिए संपादन यानी कि 1903 से 1920 के माध्यम में हिंदी भाषा को उजागर किया। उनका सोचना था कि प्रयत्न और परिश्रम ही बड़ी महिमा है, तो इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन संपादन और भाषा के सुधार में लगा दिया।

और अब बात करते हैं कुछ आज के दिन की। आज है हमारा कार्यक्रम विशेष। कार्यक्रम होता है शुक्रवार के दिन एक कदम बुजुर्गों की ओर। जी हाँ, और बुजुर्ग जब तक परिवार में हमारे ना हो तो हमारा परिवार घर परिवार नहीं लगता। और आज है परिवार दिवस। दोस्तों, आज परिवार दिवस पर दिल खोल कर मुस्कुराने का दिन है। परिवार वो छोटा सा जहाँ है जहाँ हर चेहरा मुस्कुराता है, हर दिल धड़कता है और हर लम्हा यादगार बनता है। घर की हंसी, माँ की डांट, पापा की डांट, सब कुछ कितना प्यारा लगता है। छोटे छोटे पल, साथ बैठकर खाना, एक दूसरे को छेड़ना और हंस हंस के लोटपोट होना, यही तो है असली जिंदगी। आज अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए, उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने खास है, क्योंकि घर की असली दुनिया है परिवार और असली खुशियाँ देता है हमारा खुद का परिवार और घर परिवार।

और अब बात करते हैं एक कदम बुजुर्गों की ओर की। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, बुजुर्ग हमारे घर के नींव होते हैं, जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। वो तो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो ढाल बनकर खड़े होते हैं, और वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब रिश्ते होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे सब खुश होते हैं। वे घर के बड़े बुजुर्ग ही तो होते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और अब बात करते हैं, बुजुर्गों के साथ अगर घूमने जाएं तो कुछ बातों का रखें ध्यान। हमारी तरह हमारे बुजुर्ग भी माता पिता की इच्छा होती है कि वो बाहर घूमने के लिए जाएं। हर बुजुर्ग व्यक्ति चाहता है कि वो बदलाव अपने जीवन में और समय निकालना खुद के लिए, हर कोई यही चाहता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ट्रैवलिंग करते हुए हम जब घूमने जाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे जाने से पहले एक बार पूरे शरीर का चेकअप ज़रूर करवा लें, अगर कुछ स्वास्थ्य समस्या है तो पहले से ही पता चल जाएगा, जिससे रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और हाँ, कपड़े पैक करते समय अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स भी ज़रूर रख लें, और साथ ही कुछ दवाइयाँ, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो डॉक्टर की परामर्श से आप ज़रूर ले सकते हैं। बुज़ुर्गों को हमेशा आरामदायक जगह ही देनी चाहिए। फिर भी चाहे आप गाड़ी से या फ्लाइट से जाएं या ट्रेन से जा रहे हों, तो साथ ही आरामदायक तकिया और ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। बुज़ुर्गों को कभी कभी खाना अच्छे से हजम नहीं होता, तो अपने साथ कुछ अच्छे स्नैक्स और ड्राई फ्रूट ज़रूर ले जाएं, जिससे यात्रा के दौरान भूख लगने पर वो उन्हें दे सकें आप। सबसे ज़रूरी बात कि टिकट कंफर्म होने पर ही घूमने की तैयारी करें, तो सफ़र आसान भी होगा और खुशनुमा भी बनेगा।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब बात करते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट प्लान की। बुजुर्गों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए सरकार खास उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं। अगर समय पर इन योजनाओं का इस्तेमाल किया जाए तो जीवन आराम से चल सकता है। इनमें से आज हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे वो है सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान की। सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की है जिसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग खाता खोलकर पैसा जमा करा सकते हैं। और इस योजना के तहत खासतौर पर निवेशक को खासतौर पर जो साधारण ब्याज है उससे अधिक रिटर्न भी मिल रहा है। और उसके लिए आपको बैंक या डाकघर की शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। तो फिर देर किस बात की, इस योजना का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बुजुर्गों की ओर। अब बात करते हैं बुजुर्गों को मानसिक सुकून का हिस्सा जो बना सकती है वो है बागवानी। बुजुर्ग लोगों को और अकेले रहने वाले लोगों को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बागवानी से जोड़ा जा रहा है और इस मुहिम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में बागवानी के लाभों से अवगत कराना है, जिसे एक बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। बागवानी दुनिया की सबसे अच्छी और सस्ती दवा है जो उदासी, दुख, तनाव को दूर करके हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत दुरुस्त करने में काफ़ी मददगार होती है। और गमले में लगाए हुए फूल, पौधे, बेल और साग सब्जियों से एक नहीं अनेक लाभ हैं। अगर आपके पास बहुत सारी जगह नहीं है तो 7-8 गमले बालकनी में रखकर भी बागवानी का आनंद और लाभ दोनों ले सकते हैं। और पर्यावरण की सेवा से तितली, गौरैया, गिलहरी को आवास मिलता है और मन को खुश रखने की मूल चाबी है ये बागवानी।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की

0: जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव और आपके विचारों का स्वागत है। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है FM Gold GA@gmail.com।

चलेंगे तो हम ज़रूर, लेकिन हमारी घड़ी भी कह रही है कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है। तो आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Interest paper leak and CBI is investigating the matter. In a social media post, the agency has requested candidates and parents to rely only on the official channels of NTA. Meanwhile, Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said students are the priority of the government and the centre is sensitive towards them. Briefing media in New Delhi, Mr. Pradhan assured fairness and transparency in the exam process. The minister added that NEET UG examination will be conducted in computer-based test CBT mode from next year instead of the existing OMR-based mode.
1: Our foremost priority is the welfare and future of the students, and the government remains deeply mindful of the hard work and dedication they invest in their studies. Following the conduct of the examination on 3rd May, we were determined to ensure that no genuine candidate was deprived of a fair opportunity due to the unethical practices of the education mafia.
0: The education minister admitted that NTA requires definite reforms and said steps will be taken to strengthen the examination system to prevent future irregularities. Indraprastha Gas Limited has increased the prices of compressed natural gas, CNG, by 2 rupees today. After the price hike, the new rate for 1 kilogram CNG in Delhi is 79 rupees 9 paise and 87 rupees 70 paise in Ghaziabad and Noida. In Gurugram, the new rate for 1 kilogram CNG is 84 rupees 12 paise. Earlier, oil companies raised the petrol and diesel prices by 3 rupees per litre each. Amid spike in global energy prices, the petrol price has risen from 94 rupees 77 paise to 97 rupees 77 paise per litre, while diesel prices have increased from 87 rupees 67 paise to 90 rupees 67 paise per litre in New Delhi. Similar hike in oil prices were seen in other metro cities, including Mumbai, Kolkata and Chennai. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. And with that, we end this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है दोपहर के 1:10 और ये समय है, जी हाँ, ये समय है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। और आज की जो फिल्म है वो कौन सी है? देखिए, हमेशा की तरह आपके साथ मैं एक पहेली पूछना मुझे पसंद है। और ये जो सफ़र है, जी हाँ, एक ही फिल्म का ये जो सफ़र है, ये सफ़र आप तय करेंगे किसके साथ? मेरे साथ, यानी सोनाली के साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो फिल्म है ये 1980 के दशक की फिल्म है और इस फिल्म में बॉलीवुड के दो दिग्गज कलाकार साथ में आए हैं और ये एक ऐसा साथ है जो दोबारा हमें नज़र नहीं आता है। और ये जो दिग्गज कलाकार हैं ये अपनी अपनी जगह पर इतने ज़्यादा माहिर और इतने ज़्यादा एक अलग मुकाम रखने वाले लोग हैं कि दोनों को आप एक दूसरे के ताकत आप किसी को कम नहीं आंक सकते। दोनों की शक्ति एक दूसरे से बराबर है। और ये जो फिल्म है ये 1982 की फिल्म है और इस फिल्म में है कौन, ऐसे ना बताऊंगी, आपको एक गाना सुनाऊंगी। तो आइए सबसे पहले ये गाना सुनिए और फिर मुझे बताइए आप ये गाना सुनकर समझ गए हमारी आज की फिल्म कौन सी है।

0: देखिए, मैंने भी एक दुआ मांगी थी जो कबूल हो गई। दुआ ये थी कि मुझे मेरे श्रोता बताएं कि हम कौन सी फिल्म की बात करें और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे कोई सवाल पूछें और आप वो बात हमें बताएं ना। देखिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि आज की फिल्म कौन सी है, उसके बारे में आपको बता दूंगी। पहले ये बता दूँ, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में आप गाना सुन रहे थे। और आगे बढ़ें, इस सफ़र को हम और आगे ले जाएं, उसके पहले एक बहुत ज़रूरी संदेश सुन लेते हैं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कमेंट्स और आपकी बातें हमारे तक आ रही हैं, हम वो सब बातें करेंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी तक आप प्रोग्राम सुन रहे थे, जी हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं 1982 में रिलीज हुई फिल्म शक्ति की। और अभी आपने जो गाना सुना वो गाना था महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, और हम इस फिल्म के बारे में आपसे और भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये रमेश सिप्पी के निर्माण में ये फिल्म बनी थी, घरेलू बैनर था सिप्पी फिल्म्स का, और इसमें उन्होंने अपने घरेलू निर्माण से बाहर जाकर निर्माता मुशीर रियाजी की कंपनी MR प्रोडक्शंस के लिए इस फिल्म का निर्देशन किया था। अपने निर्माण के दौरान ये फिल्म चर्चा में रही और फिल्म प्रेमियों में इस फिल्म काफ़ी उत्सुकता बनी रही। और बस यही हम बातें और भी बताएंगे आपको इस फिल्म के बारे में, लेकिन आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक वो गाना जो इस फिल्म के हीरोइन, जी हाँ, देखिए दो दिग्गज कलाकार तो थे ही, कौन, जी हाँ, अमिताभ बच्चन, और उनके साथ थे महान नायक हमारे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। तो एक तरफ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और दूसरी तरफ थे हमारे साथ कौन, जी हाँ, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। इन दोनों की जोड़ी ने दोबारा कभी साथ में काम नहीं किया। शक्ति फिल्म एक ऐसी थी जिसमें इनको लाया गया साथ में, और इस फिल्म में दोनों को साथ लाया गया था, लेकिन उसके बीच में तकलीफ क्या थी और क्यों कैसे दोनों साथ में काम करने पर राजी हुए, इस बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे एक दोस्त, देखिए यहाँ पर भावसार साहब ने हमें इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख करके दी हैं, उसको हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, और हमारे जितने श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन सबकी बातें भी हम आपसे करेंगे। लेकिन एक गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस फिल्म का, एक और गाना जिसको फिल्माया गया है इस फिल्म की नायिका स्मिता पाटिल पर।

जी हाँ, ये आप गाना सुन रहे हैं फिल्म शक्ति से, और गाया किसने था? किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने। और देखिए, हम बात कर रहे हैं आज एक ही फिल्म से में, फिल्म शक्ति की। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि इस फिल्म के दो दिग्गज कलाकार थे अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, इनके साथ थे राखी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, अमरीश पुरी और अनिल कपूर भी। फिल्म का जो निर्देशन है हमने आपको बताया था, रमेश सिप्पी ने किया। लेखक थे वो लेखक जोड़ी, जी हाँ, सलीम और जावेद। और इसके बारे में आपको बता दें एक चीज़ और कि इस फिल्म में ना जो लेखन है वो सलीम जावेद की सफल जोड़ी ने किया था। इससे पहले रमेश सिप्पी के साथ इन्होंने अनेक सफल फिल्में दी हैं, जैसे अंदाज है जो 1971 में रिलीज हुई, सीता और गीता 1972 में, शोले

1975 में और शान 1980, ये सारी फिल्मों का लेखन सलीम जावेद की जोड़ी ने किया था। और रमेश सिप्पी मदर इंडिया की तरह एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें पिता को अपने आदर्शों के लिए पुत्र का बलिदान करते हुए दिखाया जाए। उन्होंने ना शिवाजी गणेशन की एक तमिल फिल्म के सारे अधिकार खरीद कर अपने लेखकों की जो टीम है, जी हाँ, सलीम जावेद के साथ मिलकर उस फिल्म की कहानी को विकसित किया और शक्ति फिल्म के स्क्रिप्ट को तैयार किया। शक्ति फिल्म की जो कहानी और पटकथा और प्रस्तुतिकरण है उसमें सलीम जावेद की जो पिछली फिल्म है, जी हाँ, कौन सी, दीवार, 1975 में जो रिलीज हुई थी, उसका ना साफ असर दिखाई देता है, जो स्वयं मदर इंडिया और गंगा जमुना से प्रेरित है ये जो दीवार फिल्म है। तो हम बात करें आज फिल्म किसकी, जी हाँ, शक्ति की। तो और इनकी बात करें और आप लोगों की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और इनके साथ ही जुड़े हैं हमारे साथ सुरेश जाधव। शक्ति फिल्म हमने सनम को खत लिखा, ये गाना इन्हें बहुत पसंद है, शुक्रिया। और इनके साथ हैं अनिता जाधव नेहरू चौक पैठण से। फिर है राखी जी ने 70 के दशक में बहुत फिल्मों में अमिताभ जी की नायिका की भूमिका निभाई थी, फिल्म शक्ति में अमिताभ जी की माँ की भूमिका निभाई थी। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। और इस फिल्म में उन्होंने क्यों अमिताभ की माँ बनना स्वीकार किया, क्योंकि वो दिलीप कुमार के अपोजिट हीरोइन के रूप में आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अमिताभ की माँ बनना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करना था। और ये हैं हमारे साथ पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी, और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए शुक्रिया। फिर हमारे साथ हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरासी, ज़िला हिसार से, और इन्हें फिल्म का, इन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और गाने तो खैर है ही पसंद। तो संदीप मक्कर हैं, ज्योति मक्कर हैं, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमाल शाहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर, पंजाब से, बहुत शुक्रिया आप सभी का। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, इन्हें शक्ति फिल्म के गाने सुनकर अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। देखिए हमारे साथ हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और इन्हें पता है कि हमारी आज की फिल्म है शक्ति, तो भाई फिल्म तो उसी का है, फिल्म वही है शक्ति, तो गाने भी उसी फिल्म के बजेंगे। तो अब हम आपको जो और एक गाना इस फिल्म का सुनाते हैं, और वो कौन सा गाना है देखिए आप बताइए। हाँ,

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: देखिए सनम को खत लिखा किसने? स्मिता पाटिल ने। और फिर अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे दोस्तों ने हमें क्या क्या लिखा। जी हाँ, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। फिर है हमारे साथ भूषण खेड़ा, फैजल पंजाब, जी हाँ पंजाब से है हमारे साथ। इनके साथ है विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लड्डी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, तिवानशी खेड़ा, वानी खेड़ा और बी खेड़ा, जीवन बुक गीत झुमका गिरा। अच्छा ओके, आपने फरमाइश की है। नहीं आज तो हमको, आज हम आपको सिर्फ शक्ति फिल्म के ही गाने सुनाएंगे। और पंकज देखिए ये हमारे साथ है, राजू अग्रवाल, केशव प्रयाग, प्रियांशी विवेक, और ये हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी वास से। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे और दोस्त, जी हाँ ये हैं गुरमीत सिंह मेहता। अच्छा आपका तो मैं ईमेल शामिल कर चुकी हूँ। तो देखिए हमारे साथ जितने दोस्त जुड़े हैं तो ये हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा, जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। फिर हमारे साथ हैं दीवार और शक्ति का टकराव, मेरा मानना था कि शक्ति की कहानी सलीम जावेद की फिल्म दीवार से काफ़ी मिलती जुलती थी। अच्छा ये लिख रहे हैं कौन, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार। देखिए इस फिल्म में ना कुल जमा 3 ऐसे गाने हैं जिनको आप गाना बोल सकते हैं, और एक गाना है जो बमुश्किल 1 मिनट पौने 2 मिनट का है।

0: का दौरा जनवरी में और वली अहद शहजादे ने फरवरी में किया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में सभी शराकत दारों के साथ काम करने का पाबंद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग के दूसरे दिन एक ओपन सेशन से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन सरगर्मियों की वसत से इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि सभी रहनुमा तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया में कसीर मुल्की तआवुन को मुस्तहकम बनाने में शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैनुल अक़वामी माली तरीक़ेकार में इस्लाह की फौरी ज़रूरत है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत ने इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम की लगातार वकालत की है, जो एक ऐसा मुल्क है जो मौजूदा दौर के हकाइक की अक्कासी करता है और उभरती हुई मार्केट्स नीज तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों पर काम करता है। उन्होंने कहा कि हर एक मुल्क को न सिर्फ आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बल्कि एक मजीद जमहूरी सबकी नुमाइंदगी करने वाले और मुसावियाना बैनुल अक़वामी निज़ाम को तश्कील देने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के वजीर खारजा अब्बास राख्शी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जयशंकर ने बताया कि दोनों लीडरों के दरमियान मगरबी एशिया की सूरत हाल और उसके असरात के सिलसिले में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहमी मफाद के दो तरफा मामलों पर भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग में जनाब अराक्ची की शिरकत को भी सराहा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि तलबा हुकूमत की तरजीह हैं और वो इनके तई हसास हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इम्तहानात का इनाकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि नीट UG 2026 का दोबारा इम्तहान अगले महीने की 21 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो तलबा इस इम्तहान में दोबारा शामिल हो रहे हैं उन्हें अगले महीने की 14 तारीख तक इम्तहान के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नीट UG इम्तहान अगले साल से मौजूदा OMR पर मबनी तरीक़ेकार के बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके से कराया जाएगा।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: तालीम के वजीर ने एतराफ किया कि NTA को वाज असलाहत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई बदउनवानी न हो इसके लिए इम्तिहान के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के इकदाम किए जाएंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि कोई मुस्तहक तालिब इल्म के धोखेबाज उम्मीदवारों या तालीम का माफिया की साजिशों की वजह से अपने हकूक से महरूम हो जाएं। माहौलियात जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि आज दुनिया न सिर्फ दिलचस्पी के साथ बल्कि सताइश के साथ भारत की तरफ देख रही है। नॉर्वे के एक अखबार में नॉर्वे के साबिक वजीर एरिक सोलहियम का तहरीर करदा एक मजमून शेयर करते हुए जनाब यादव ने कहा कि इस मजमून में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत की इकतसादी और माहौल के लिए साजगार तरक्की नीज जमहूरी ताकत उजागर की गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में हिंदुस्तान भारत उभर रहा है और उसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रतेंद्र बासु को मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली का बिला मुखालिफ स्पीकर चुन लिया गया है। जनाब बासु, जो भारतीय जनता पार्टी के कानून साज रुकन के तौर पर कुछ बिहार जुनूब की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने असेंबली इंतखाबात में अपनी पहली कामयाबी के बाद ये ओहदा पहली बार संभाला है। उनका इंतखाब प्रोटेम स्पीकर तपस राय की निगरानी में आज सुबह किया गया। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने जनाब बासु का नाम बाकायदा तौर पर तजवीज़ किया था। ऐवान ने इस तकर्रुर की 100 वोट से तस्दीक कर दी। तृणमूल कांग्रेस के अरकान इंतखाबी अमल के दौरान मौजूद नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने इजलास में बाद में शिरकत की। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपये 77 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपये 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपये 67 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 93.14 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. کولکاتہ میں فی لیٹر پیٹرول 108.74 روپے جبکہ فی لیٹر ڈیزل 95.13 روپے ہو گیا ہے. دوسری جانب اندرپرستھ گیس لمیٹڈ نے بھی آج سی این جی کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا ہے. اب دلی میں فی کلو گرام سی این جی کی قیمت 79.09 روپے اور غازی آباد اور نوئیڈا میں 87.70 روپے ہے. گروگرام میں سی این جی کی قیمت 84.12 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو سے نئی دلی میں ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ انہوں نے ریاست سے متعلق اہم ترقیاتی ترجیحات پر تفصیلی بات چیت کی. وزیر موصوف نے سب کی شمولیت والی ترقی اور سبھی کے لیے بہتر فضائی رابطوں کے وزیر اعظم نریندر مودی کے تصور کے مطابق مدھیہ پردیش میں ہوا بازی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور علاقائی رابطوں میں اضافہ کرنے کی وزارت کے عزم کو دہرایا. تھائی لینڈ اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی سرکردہ جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی آج بینکاک میں سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے 21-12, 21-13 کامیابی حاصل کی. اس جوڑی نے جاپان کی تاکومی نومورا اور یوئیچی شیما گومی کو شکست دی. خواتین کے سنگلز میں دنیا کی 12ویں نمبر اور اولمپکس میں 2 بار تمغہ جیتنے والی پی وی سندھو نے جاپان کی اکانے یاما گوچی کو کوارٹر فائنل میں 21-19, 18-21 اور 15-21 سے شکست دی. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابوظبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور 2 طرفہ تجارت پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے دفاع، پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے. نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دا مڈ ڈے نیوز. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defense, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NEET UG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Ratindra Boshu elected as new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. Prime Minister Narendra Modi is in Abu Dhabi on the first leg of a 6-day tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Prime Minister Modi has since met President Sheikh Mohammed bin Zayed with energy cooperation and bilateral trade high on the agenda. The talks took place amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
3: UAE ko jis tarah nishana bana raha hai, ye kisi bhi roop mein स्वीकार कर रही है।

0: between Central Secretariat and Seva Teerth metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vidithsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत

0: परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
4: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो NTA ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के 4 भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी 2 बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर

0: फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की अलीना स्वितोलिना और अमरीका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
1: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और आप जानते हैं कि यह वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। जी हाँ, और आज इस प्रोग्राम में सितारों की महफिल लेकर, जिसमें हम एक ना एक सितारा लेकर आते हैं, हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ कलाकार नहीं, एक एहसास बन जाते हैं। जब वो मुस्कुराएं तो लाखों दिल खिल उठे, जब वो नृत्य करें तो संगीत भी झूम उठे, और जब वो पर्दे पर आए तो जैसे पूरा सिनेमा जगमगा उठे। तो आज की जो हमारा प्रोग्राम है वो खास तौर पर समर्पित है उस खूबसूरत सी अभिनेत्री को जिनकी मुस्कान में मासूमियत है, अभिनय में गहराई है और नृत्य में जादू है। जी हाँ, आज इनका जन्मदिन भी है। अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, किस सितारे की बात कर रहे हैं। और जब आप अंदाजा लगा लेते हैं तो आप जानते ही हैं ना कि क्या करते हैं, संदेश भेज देते हैं मेल के जरिए। मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। अपने जवाब इस संदेश पर, इस पते पर हम तक पहुँचा दीजिए। फिलहाल हम उस खूबसूरत अभिनेत्री का ये खूबसूरत सा गीत आप तक पहुँचा रहे हैं।

जी, आपका इंतजार हम खत्म कर रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं इस प्रोग्राम में धक धक गर्ल, यानी कि माधुरी दीक्षित, जिनका आज जन्मदिन भी है। जी हाँ, 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी का बचपन बहुत सादगी और संस्कारों के बीच बीता था। उनके पिता शंकर दीक्षित और उनकी माँ स्नेहलता दीक्षित चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ाई में आगे बढ़े। बहुत कम लोग जानते हैं कि माधुरी ने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई भी की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नृत्य में उनकी रुचि बचपन से ही थी और उन्होंने कथक की बाकायदा ट्रेनिंग भी ली थी और यही नृत्य आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी 1984 में फिल्म अबोध से। फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन माधुरी की मासूमियत लोगों की नज़रों में आ गई और शुरुआती दौर आसान नहीं था। कई फिल्में असफल भी रहीं, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और फिर आया साल 1988 और वो साल था जिसने माधुरी की

जी हाँ, 1988 में आई फिल्म तेजाब। इस फिल्म ने माधुरी दीक्षित को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और इस फिल्म के इस गाने को जो आप सुन रहे हैं 1 2 3 ने पूरे देश में धूम मचा दी। 90 का दशक जो हर तरफ सिर्फ एक नाम ही दिखाता था, एक नाम की ही गूंज आती थी और वो नाम था माधुरी दीक्षित। उन्होंने एक से एक बढ़कर फिल्में दी, दिल, साजन, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास, यानी कि इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद यहाँ पर अगर हमने नाम लेने शुरू कर दिए तो वक्त नहीं बचेगा। और इन फिल्मों में उन्हें अभिनय की दुनिया की सबसे ऊंची कतार में ला खड़ा कर दिया। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म का वो गीत जिस गीत के कारण उनको धक धक गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा था।

अगर बॉलीवुड में नृत्य की बात हो और माधुरी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। धक धक करने लगा, छोली के पीछे क्या है, दीदी तेरा देवर दीवाना या फिर गीत ले लीजिए आप मार डाला। इन गीतों में माधुरी ने सिर्फ डांस नहीं किया बल्कि उनके भाव, लय और अदाओं से उन्हें अमर बना दिया। कई बड़े डांसर्स और अभिनेत्रियां मानती हैं कि माधुरी दीक्षित से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। माधुरी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता। कॉमेडी हो, इमोशन हो, रोमांस हो या फिर गंभीर किरदार, वो हर भूमिका में ढल जाती थी। याद कीजिए उनकी फिल्म मृत्युदंड, लज्जा, इनमें उनके गंभीर अभिनय को भी लोगों ने खूब पसंद किया।

माधुरी दीक्षित। जी हाँ, माधुरी को पेंटिंग का भी शौक है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। खाली समय में उन्हें चित्र बनाना और संगीत सुनना पसंद है। अपने करियर के शिखर पर जब माधुरी पहुंची थी तो उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की और कुछ समय के लिए वो यूनाइटेड स्टेट चली गई। लेकिन उनके चाहने वालों का प्यार कभी कम नहीं हुआ और वही प्यार था कि दोबारा उनको फिल्मी दुनिया में ले आया। माधुरी ने कई सारे पुरस्कार भी जीते, उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।

आपकी ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थानी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम जी जुड़े हुए हैं, और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ हैं, नागर कोल्हा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल और परिवार के सदस्य हैं, चिरमिरी कुरासिया कालडी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर जी साथ जुड़े हुए हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली, फैज फराज, फरीन जी हमारे साथ हैं, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुलरुल गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से जुड़े हुए हैं, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं, अंबेडकर चौक बकोड़ी से उत्तम और स्वराज सिंह, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी, नंदा और हनुमान जी हमारे साथ हैं, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैदवासी निगत, परवीन शरफाज फरदान और परिवार के सभी सदस्य हैं, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं, गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराव सत्तोड़ जी जुड़े हुए हैं, और अगला संदेश हमारे पास संदीप मक्कर जी का आया हुआ है जालंधर पंजाब से, इनके बाद भी कुछ और संदेश हैं जिनको हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे।

तो दोस्तों, फिल्मों के अलावा माधुरी ने कई डांस रियलिटी शो में जज बनकर नई प्रतिभाओं को प्रेरित किया। उनकी मुस्कान और उनकी विनम्रता आज भी लोगों का दिल जीत लेती है। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा अध्याय है जिसे जितना पढ़ो उतना कम लगता है। उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताज़ा है, उनका नृत्य आज भी उतना ही मनमोहक है और उनकी अदाकारी आज भी दिलों पर राज करती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि वक्त कह रहा है कि अब और ज़्यादा नहीं। हालांकि माधुरी दीक्षित जी के इतने सारे सुपरहिट सॉन्ग हैं, लेकिन वक्त की कमी के कारण हम उनको चाह कर भी आपके पास नहीं सुनवा पा रहे हैं। फिर अगली मुलाकात होगी एक नए सितारे के साथ, एक नई फिल्म के साथ। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए और इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
0: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
0: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ? कहानियाँ

0: हाँ, भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी। और हाँ, श्रोताओं आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
0: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोल कर यानी वाचन के साथ पढ़ें।
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
0: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
1: जैसे
0: जैसे प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
0: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं,
1: जैसे
0: जैसे कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है, और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा।

खातु और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां धातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं।

0: अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्धनायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या बॉल शुरू हो गई?
4: हाँ
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों

0: और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 1/6 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहार।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध

0: रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के लहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। आज सुनते हैं कार्यक्रम लिटिल बुली।
4: Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong, and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with a pin.
5: So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good, because he could always pinch harder. They didn't like telling their teacher, because that was telling tales. It so happened that the

0: They only did to me what I keep doing to the other children.
1: He thought.
0: But how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick any.
2: तो श्रोताओ, अब हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर होता है समाप्त। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 3:30 और 6 सेकंड। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सामीन, अभी आप सरला कपूर की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था शकील बदायूनी का। सामीन, जब शायर लफ्ज़ों को बरतता है तो ऐसा महसूस होता है कि ज़बान ने उसके सामने अपने सारे मख्फी राज खोल कर रख दिए हैं। अपने एहसासात, तजर्बात को जब वो खूबसूरत लफ्ज़ों में पिरोता है तो वो शेर व नगमा की सूरत में ढल जाता है, जो दिलों पर असर करता है। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। आइए सामीन, पंकज उदास की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है महेंद्र देहलवी का।

सामिन, अभी आप पंकज उदास की आवाज में गजल सुन रहे थे। कलाम था महेंद्र दहलवी का। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम आबशारे गजल। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। अपनी मेजबान नसरीन बेगम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 4 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में UAE नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, UAE और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
3: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवे

0: इस जल संशोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। केंद्र ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षण में 20 नमूनों में से 13 में वायरस पाया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमागुमी को हराया। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ वितेदरसन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंक तालिका में 5वें स्थान पर चेन्नई ये मैच जीतकर शीर्ष 4 में प्रवेश करना चाहेगी, जबकि लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
2: इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और बिल्डअप का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय राष्ट्रीय एकता सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: Addressing President Sheikh Mohammed bin Zayed as brother, Mr. Modi praised the resilience shown by the UAE leadership during challenging times, reaffirmed India's support for the Emirates, and said dialogue and diplomacy remain the only path forward in the current period of global conflict. More details from our West Asia correspondent.
3: The talks have already yielded concrete outcomes. The two sides signed a framework agreement for strategic defense partnership, a significant step that institutionalizes security cooperation between the two countries. A memorandum of understanding on strategic petroleum reserves was also concluded, alongside a separate agreement on liquefied petroleum gas supplies, moves that directly addresses India's energy security concerns amid ongoing West Asia's tensions. The two countries further signed an MOU to establish a ship repair cluster at Vatnagar on India's western coast. On the investment front, the UAE announced commitments worth $5 billion to Indian infrastructure. Prime Minister Modi also noted that the comprehensive strategic partnership between India and the UAE continues to grow stronger across multiple sectors. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
1: On the second leg of his visit, the Prime Minister will arrive in the Netherlands this evening. Thereafter, he will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said the breadth of the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. He further said there is an urgent need to reform the international financial architecture. BJP MLA Rathindra Basu has been elected unopposed as the new Speaker of the Legislative Assembly of West Bengal. The election for the post was conducted this morning under the supervision of Pro Tem Speaker Tapas Roy. Basu registered his maiden victory as a BJP candidate in the recently held assembly polls from Kuch Bihar South. The

0: that the conditions are favourable for the advance of southwest monsoon over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands during next 24 hours. In badminton, India's top men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of the Thailand Open. The Indian duo defeated Chinese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunnawut Wittitsarn in the men's singles quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है शाम के 4:10:15 और ये वक्त है आपको जानकारी देने का गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। कोतवाली जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर से जो हमें पहली सूचना प्राप्त हुई है, गुमशुदा का नाम है अंजलि, पुत्री सुरेंद्र। ये ग्राम रोही आरएनआर कॉलोनी थाना जेवर की रहने वाली हैं और यहीं से ये गुम हुई हैं। अंजलि एक 14 वर्षीय महिला है जिनके शरीर की बनावट पतली और कद 4 फुट 5 इंच है। अंजलि से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप रखते हैं या आपने अंजलि को कहीं देखा है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर। आपको हम एक फ़ोन नंबर भी देते हैं, आप इस फ़ोन नंबर पर भी जानकारी होने पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 6397545877। एक बार फिर से आप फोन नंबर सुन लीजिए, 6397545877। कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर थाने से जो अगली जानकारी हमें मिली है वो है चंदावती के बारे में। ये 31 मार्च 2026 से लापता है। रात्रि 2 बजे अपने घर से कहीं चली गई हैं। चंदावती जो कि 17 वर्षीय महिला हैं, शरीर की बनावट इनकी सामान्य है और कद लगभग 5 फीट है। चंदावती पुत्री राम सेवक निवासी राजेंद्र यादव का मकान ग्राम सरफाबाज सेक्टर 73 नोएडा की रहने वाली है और ये बिना बताए 31 मार्च 2026 को कहीं चली गईं जिनका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। आपने चंदावती को कहीं देखा है या इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप रखते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर नोएडा से। और अगली जो जानकारी हमें मिली है वो थाना सेक्टर 49 नोएडा कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर से ही मिली है और ये एक अज्ञात शव से संबंधित है। ये अज्ञात शव की एक पुरुष का है जिनकी उम्र 45 वर्ष है। ये शव सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से प्राप्त हुआ है और इनको खोजने के काफ़ी प्रयास किए गए, इनके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने के और अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। अज्ञात शव ये पुरुष का है जो कि 45 वर्ष इनकी उम्र है, मजबूत शरीर और कद 5 फुट 6 इंच है। इन्होंने चेक शर्ट पहनी हुई है जो बड़े खाने की चेक है और गहरे नीले रंग की पैंट पहनी हुई है। अगर आप इनसे संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो आप संपर्क करें थाना सेक्टर 45 नोएडा गौतम बुद्ध नगर। आपको हम फ़ोन नंबर भी बता देते हैं, कृपया फ़ोन नंबर आप लिख लें, 8595902537।

एक बार फिर सुन लीजिए, 8595902537। थाना सेक्टर 113 नोएडा, कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर से। अगली जानकारी विनोद उर्फ विनय के बारे में है। ये है सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में मिले हैं। ये एक 50 वर्षीय पुरुष हैं और इनका चेहरे का रंग सांवला, सिर के बाल सफेद और कद 5 फीट 5 इंच है। इनके माथे पर चोट का निशान है। मृत अवस्था में ये सफदरजंग अस्पताल में मिले। इनके ऊपर 2000 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप अगर रखते हैं, आपने इनको कहीं देखा है तो आप संपर्क, इनके बारे में माफ कीजिएगा, कहीं कोई जानकारी रखते हैं या इनसे संबंधित कोई भी सूचना आपके पास है तो आप संपर्क करें थाना सेक्टर 113 नोएडा, कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर। अगली जानकारी हमें मिली है, ये भी एक अज्ञात शव है जिन्हें 4 अप्रैल 2026 को जिला अस्पताल के पास देखा गया है। पुरुष है ये, करीब उम्र इनकी 35 वर्ष है। आंख, नाक, कान औसत और रंग इनका गेहुआ है। कद 5 फीट 2 इंच है। ये अज्ञात शव के दाहिने हाथ की बाजू पर टैटू का निशान बना हुआ है। इनकी धार्मिक पहचान हिंदू है। अगर आपके पास कोई भी जानकारी इनसे संबंधित है तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 30 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। थाना सेक्टर 49 नोएडा, कमीशन रेड, गौतम बुद्ध नगर से अगली जानकारी भी एक अज्ञात शव से संबंधित है जो जिला अस्पताल सेक्टर 39 नोएडा से मैं मिली है। ये 30 वर्षीय पुरुष का शव है जिनका इकहरा शरीर, कद 5 फुट 4 इंच और छाती पर जले का निशान है। इनसे संबंधित अगर कोई भी सूचना आप रखते हैं या कुछ भी आप जानते हैं तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा, कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर। थाना फेस टू गौतम बुद्ध नगर से अगली जानकारी भी एक अज्ञात शव के बारे में है। ये 40 वर्षीय लगभग किसी एक पुरुष का शव है जिनके आंख, नाक, कान औसत हैं और कद 5 फुट 4 इंच है। इनसे संबंधित जानकारी अगर आप रखते हैं तो आप संपर्क करें उपनिरीक्षक सुनील राणा, थाना फेस टू गौतम बुद्ध नगर। थाना सेक्टर 142, कमीशन गौतम बुद्ध नगर से, कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर से जो अगली जानकारी है ये भी एक अज्ञात शव के बारे में है जिन्हें सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में से इन्हें देखा गया है। ये यहाँ पर है और इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। ये एक पुरुष का शव है जिनका इकहरा शरीर है और शरीर पतला दुबला है। कद लगभग 5 फुट 1 इंच है और इन्होंने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है। इनसे संबंधित कोई भी सूचना जानकारी आप रखते हैं, कोई भी मालूमात रखते हैं तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 142, कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर। तो ये थी जानकारी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल।

0: रोजगार समाचारों के साथ मैं विनीता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी, सिम्युलेटर इंजीनियर के लिए एक स्थान यहाँ रिक्त है। igrua.gov.in पर आप जाएं और इस वेबसाइट से समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग आशुलिपिक समूह ग एवं घ के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित पद्धति में आशुलिपिक समूह ग एवं घ परीक्षा 2026 का आयोजन होगा। भर्ती के बारे में और भी अधिक जानकारी आप परीक्षा की विस्तृत विज्ञप्ति पर देखें, जिसे आयोग की वेबसाइट पर यानी ssc.gov.in पर अपलोड किया गया है। परीक्षा के संदर्भ में यदि और कोई भी शुद्धि पत्र हो, परिशिष्ट हो या फिर महत्वपूर्ण सूचना होगी, उसे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ही जारी किया जाएगा। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। RGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस, रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये है कैंपस, रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए BE BTech सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में BE BTech सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय अनुभाग की एक इकाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये आता है। पद का नाम है प्राचार्य और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 1 है, जो कि UR के लिए है। आवेदन प्रपत्र, आवश्यक योग्यता एवं वांछनीय योग्यताओं के लिए कृपया आप वेबसाइट www.vkm.ac.in को देखें। विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाओं सहित प्रबंधक वसंत कन्या महाविद्यालय वाराणसी के पक्ष में आप भेज दें। विज्ञापन की तिथि 20 दिनों के भीतर वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा वाराणसी 221010 उत्तर प्रदेश पर। अभ्यर्थी अपने आवेदन को उचित माध्यम से अग्रेषित करें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का सुरक्षा निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं।
1: आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड रोजगार समाचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 4:30 होने को है। सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
2: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या हैं उनके पास खास रिपोर्ट्स, और खेल के मैदानों की गतिविधियों की भी हम आपको देंगे जानकारी, साथ ही साथ आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी डालेंगे नज़र। कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
3: नमस्कार विशाल एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद मी शगुन चोपड़ा एंड विशाल शर्मा टुडे। वेल यस, विशाल वाज टेलिंग यू अबाउट ऑल दैट इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर रफली। वेल एंड टुडे लेट मी स्टार्ट विद बाय एक्सटेंडिंग हार्टफेल्ट विशेस टू फैमिलीज अराउंड द वर्ल्ड फॉर गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ to successfully overcome the challenges of daily life. And today it's International Day of Families. We'll discuss more about it in our Dateline India segment. So let's start with the headlines.
2: जी शगुन, प्रमुख समाचारों से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर।
3: BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism.
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया।
3: BJP MLA Rathindra Basu elected as new speaker of West Bengal Legislative Assembly.
2: और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची।
3: So this is our segment Dateline India, and today, as we were telling you in the beginning, today it's International Day of Families. So, well, loneliness, financial stress and emotional distance, they grow across modern homes. Nowadays, it's pretty common. The International Day of Families 2026, therefore, it highlights why strong family bonds, they remain essential for child well-being, mental health and social stability in an increasingly unequal and uncertain world.
2: जी शगुन, और परिवार का जो महत्व हमारे जीवन में है उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। परिवार केवल खून के रिश्तों से बंधा हुआ एक समूह नहीं होता, बल्कि ये जीवन मूल्यों का पहला विद्यालय होता है, पहला स्कूल होता है जहां हम जीवन की वैल्यूज़ के बारे में सीखते हैं। और परिवार के भीतर ही व्यक्ति सबसे पहले प्रेम, त्याग, सहयोग, अनुशासन, धैर्य और सअस्तित्व सीखता है। सहस्तित्व की जो भावना आती है, को एग्जिस्टेंस की, सबके साथ रहने की जो भावना होती है, वो वहीं सीखता है परिवार में। और यदि परिवार हमारे स्वस्थ हैं तो समाज भी स्वस्थ होता है, और समाज स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र और विश्व भी संतुलित रहेंगे। इसलिए आज शगुन देखा जाए तो आवश्यकता केवल परिवारों को बचाए रखने की नहीं है, बल्कि उन्हें मूल्यों पर आधारित और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने की है। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना कठिन होता जा रहा है, और युवाओं के सामने रोजगार को लेकर की भी कई चुनौतियां होती हैं, तो परिवार और खासतौर पर संयुक्त परिवार की आवश्यकता बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है। संयुक्त परिवार केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं होते, बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं, और इसमें संसाधन जो है साझा किए जाते हैं।

0: रहते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और किसी भी संकट का सामना केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। और जो बड़े शहरों में, महानगरों में जो है अकेलापन, अकेलेपन की जो समस्या है, उससे जो अवसाद की समस्याएं पैदा होती हैं, वो संयुक्त परिवारों में बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप याद करिए पुराना समय जब परिवार संयुक्त रहा करते थे, सारे जो प्रत्येक व्यक्ति के जो कष्ट होते थे, समस्याएं होती थी, सब उसको मिल बांट करके पता भी नहीं चलता था किस तरीके से जीवन निकल जाता था।
1: प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज दे यूज्ड टू सॉल्व इट बाय टॉकिंग एक्चुअली इन कॉन्वर्सेशंस। सो लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ द डे एज वेल। नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड द होल थीम हियर। ड्यूरिंग द 1980s एक्चुअली द यूनाइटेड नेशंस बिगैन फोकसिंग द अटेंशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू फैमिलीज। सो दिस स्टार्टेड इन 1980s। इन देन इन 1993 द जनरल असेंबली डिसाइडेड इन द रेजोल्यूशन दैट 15th ऑफ मे एवरी ईयर शुड बी ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। So this happened in the year 1993. So this day provides an opportunity to promote awareness of issues which is related to families and also to increase the knowledge of social, economic and demographic processes affecting families. Families must become the first place where a child learns tolerance and compassion. Right, family members, they teach them. It should be a space where children are taught that life is not a competition. You were also talking about coexistence. A place where elders are not treated as burdens but as invaluable treasures of experience which they share with us. A place where women receive dignity, the children, they receive values and youth receive trust and confidence. Much of the growing, Vishal, much of the growing violence in today's world, it stems from the weakening of dialogue and sensitivity within the families. Children are speaking to mobile phones but not to their parents. Families may be living together physically yet emotionally they are falling apart. Climate change, wars, economic instability, so many issues, they have made the entire world insecure. Whether it is the Russia-Ukraine war, the conflicts in West Asia, the greatest impact of these crises falls upon families. So millions are displaced, children, they become orphans and women face insecurity and exploitation.
0: जी, और इस साल का जो परिवार, विश्व परिवार दिवस का जो आयोजन का विषय है वो है परिवार, असमानताएं और बच्चों का कल्याण। ये इस बात पर जोर देता है कि कैसे बढ़ती असमानताएं पारिवारिक जीवन को आकार दे रही हैं और बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित कर रही हैं। ये असमानताओं को कम करने और बच्चों के स्वस्थ विकास में सहायता के लिए एकीकृत और परिवार केंद्रित नीतियों में अधिक ध्यान देने का आह्वान करता है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति में परिवारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और फिर भी कई परिवारों को आय की अनिश्चितता, देखभाल संबंधी सीमित सहायता और ज़रूरी सेवाओं तक असमान पहुंच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त सहायता न मिलने पर छोटे बच्चे वाले परिवारों में गरीबी का जोखिम बढ़ जाता है, जिसका बच्चों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और समग्र कल्याण पर बहुत लंबे समय तक असर देखने को मिलता है। आय में जो स्थिरता होती है और देखभाल संबंधी सीमित सहायता और बच्चों के विकास में जो बाधा आती है, वो इन सभी समस्याओं के साथ साथ जो है दिव्यांगता पर आधारित असमानताएं भी इसमें जुड़ जाती हैं।
1: Well, the relationship between family stability and economic inequality, it is characterized by a bi-directional cycle where financial stress undermines domestic security, while stable families, if we talk about stable families, they serve as a critical buffer against economic hardship. So on the International Day of Families 2026, experts, they have highlighted that growing global inequality and inflation, they are directly contributing to emotional instability, emotional exhaustion actually, within the modern homes. And amid these global crises, the family, they play an important part. Families remain the one institution that gives broken human beings the courage to live again with happiness.
0: जो आपने इन्फ्लेशन की बात करी और ग्लोबल इनएक्वलिटी की बात करी, तो इस ये जो आर्थिक दबाव है ना, इसके कारण जो है मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अब देखने को मिल रही हैं। और इंडियन पेरेंट्स की बात करें तो भारतीय माता पिताओं में अवसाद का खतरा 12% तक बढ़ जाता है जब उनके वयस्क बच्चे बेरोजगार घर में बैठे रहते हैं। और इसके अलावा बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने भी एक सैंडविच जनरेशन ले ऑफ की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जहां करियर के मध्य में नौकरी छूटने से भूमिकाओं में उलटफेर हो जाता है और परिवार के भरण पोषण का जो बोझ है वो छोटे बच्चों पर आ जाता है।
1: वेल ट्रू। सो इफ वी फोकस ऑन आवर कल्चर, इंडियन कल्चर,

0: नागपुर में 17 और 18 मई को जल संवाद और जल क्रांति कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र को जल संपन्न बनाने पर बड़े पैमाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि फार्म तालाबों से निकाली गई मिट्टी का उपयोग अकोला, वाशिम और बुलडाणा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया गया है, जिससे पश्चिम विदर्भ में भू जल स्तर बढ़ा है।
1: हमने एक नई नीति लाई कि जहां रोड के लिए एग्रीगेट मिट्टी लगती है तो नदी नालों का खुलीकरण करना, रुंदीकरण करना, और जहां किसान या संस्था हमें अनुमति देती है तो उनके खेत की मिट्टी निकालकर रोड में डालना और वहां तालाब बनाना, इसके दो बहुत यशस्वी उदाहरण विदर्भ के हैं। पहला उदाहरण है पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला में हमने 36 तालाब बना के, और जो उनका 350 एकड़ जमीन सिंचाई के ऊपर जाती थी वो जमीन अब 3500-4000 एकड़ हो गई। और केवल उनकी खेती नहीं हुई तो ये तालाब के कारण आजू बाजू के 10-12 किलोमीटर के परिघों में भी कुओं में पानी आया और वहाँ अच्छी क्रांति। दूसरा एक बुलडाणा पैटर्न जिसकी नीति आयोग ने तारीफ की, ये बुलडाणा से अजंता तक रोड था, हमने इस रोड पर पूरी तरह नदी नालों का खुलीकरण किया और ये मिट्टी पूरी रोड में, और इसका परिणाम ये हुआ कि वाटर लेवल बढ़ गई।
0: ऐसे कई प्रयासों पर नितिन गडकरी ने चर्चा की। देश भर से प्रमुख जल विशेषज्ञ, पद्म पुरस्कार विजेते और सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियाँ इन आयोजनों में भाग लेने वाली है। सम्मेलन का विशेष आकर्षण पानी फाउंडेशन के संस्थापक और प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान, नाम फाउंडेशन के अध्यक्ष नाना पाटेकर और सचिव मकरंद अनासपुरे की उपस्थिति होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
2: So this next report, even I'm very excited to know about it. Niang Teza 2026. This is a two-day festival celebrating the mass emergence of the World Cup cicada. This is also known as World Cup insect. This was held on May 8th and 9th in Meghalaya's Riboi district. So this festival is actually a celebration of the Niang Teza, popularly called, I told you, World Cup insect, that appears in the same year when the FIFA World Cup is held. The locals refer to it as the Niang World Cup. Let's find out more details in this report.
3: The residents of Saiden village in Meghalaya's Riboi district recently celebrated the Niang Taser festival, one that is quite unique because it is centered around a mysterious insect that appears only once every 4 years. Locally known as the World Cup insect, the appearance of Niang Taser is often linked with the FIFA World Cup season. The two-day festival was organized by the Riboi District Tourism and Environmental Development Forum in collaboration with the headmen of Saiden village. Meghalaya Community and Rural Development Minister Shri Sosthenes Sothun inaugurated the festival and said that the unique festival highlights the richness of Riboi. The event featured traditional sports, cultural performances, folk songs from different localities, traditional dance competitions, fishing competitions, a fashion show and football-themed activities. The insect has become a cultural symbol in several villages of Riboi district. People associate its arrival with celebration, football fever and traditional gatherings. Families gather through the night to collect the insects, which are also considered a local delicacy. Organizers and village elders believe that the festival is helping showcase Meghalaya's rich biodiversity and indigenous culture to visitors from outside the state. The Niang Taser festival blends folklore and community celebration, and it continues to remain one of Meghalaya's most rare cultural traditions. For Parikrama, Anumita Das, Akashvani, Shillong.
4: मणिपुर को उसकी जीवंत सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक समृद्धि के लिए जाना जाता है, और रिंग फेस्टिवल 2026 के लिए की मेज़बानी के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है मणिपुर राज्य। ये एक अनूठा मंच है जो वहाँ की मूल कला, संस्कृति और पहचान का उत्सव मनाता है। ये महोत्सव कलाकारों और संस्कृति प्रेमियों को एक साथ लाता है, जो इस क्षेत्र की विविध परंपराओं और रचनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देता है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे इम्फाल संवाददाता।
5: The 5-day Ring 2026 festival, scheduled to take place from 21st to 25th May 2026, with preparations already in progress for its grand event at Mapal Kangjibung and Kumalampak in Imphal. Ring 2026 aims to elevate the indigenous games inherited from the forefathers of the land to the international stage. More than just a sporting event, Ring represents a broader culture and movement dedicated to preserving identity, strengthening community ties, and inspiring inspiring the youth through engagement with traditional heritage. The festival will showcase a wide range of indigenous games from different communities, including Thang Ta, Mukna, Yubi Lakpi, Mukna Kangjai, Sagol Kangjai, Arambai Hunba, Kang, Thori Chingbi, Naga Wrestling, and Porcupine Foraging Games of the Tarau tribe. A call has also been made to scholars, youth organizations, and athletes involved in traditional games to unite under one platform and motivate the younger generation to revive and uphold the rich cultural heritage of Manipur. Ring 2026 promises to be more than just a festival. It is a celebration of identity, creativity, and cultural unity. As Manipur prepared to host this five-day event, it reflects a strong commitment to preserving and promoting indigenous traditions while embracing global cultural dialogue. JJ Thoksom, Akashvani News, Parikrama, Imphal.
4: और अब संक्षिप्त जानकारी खेल के मैदान से। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
2: Now in Thailand Open in badminton, India's top men's doubles pair Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Now in some business news, benchmark domestic equity indices reversed earlier gains and ended around 0.2% down today. The Sensex fell 161 points to close at 75,238, while the Nifty dropped 46 points to settle at 23,644. The broader market on the National Stock Exchange also ended lower.
4: कार्यक्रम के इस हिस्से में बात करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और उन्हें याद भी करेंगे और साथ ही साथ उन व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती है या आज के दिन जिनका जन्म हुआ था।
6: ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of May 1857 सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्मी वाज गिवन टू मिर्जा मुगल। मिर्जा मुगल वाज सन ऑफ बहादुर शाह जफर। ही टुक अ लीडिंग पार्ट इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। On the 15th of May 1857, a darbar was held in Red Fort and new officers of the Hindustani army were appointed by the emperor. The supreme command of this army was given to Mirza Mughal. He was titled as Commander-in-Chief Bahadur and his honorific title was Sahib-e-Alam.
7: In his capacity as Commander-in-Chief, Mirza Mughal worked as a liaison officer between the civil and military departments and formed a link with warriors on the one hand and the merchants and local chiefs on the other. He continued to play an important role in military administration. After the reoccupation of Delhi by the British, Mirza Mughal was captured on the 22nd of September 1857. The British took him near Khuni Darwaza and asked him to take off his clothes. He was shot dead and his body was driven to the Kotwali and laid down outside the building before he was buried. We salute this great nationalist.
6: We also remember Martyr Harpal Singh. He was in the English East India Company Army, but left it during the First War of Independence of 1857 and joined hands with rebel forces with a pledge to overthrow the oppressive foreign rule. He fought the British at several places and was finally caught during a confrontation. He was charged with mutiny against the British Empire and sentenced to 7 years jail. He was sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858, where he died due to physical torture in captivity on the 15th of May 1858. We salute.
7: We also remember Martyr Sukhdev Thapar. He was born on the 15th of May 1907 in Ludhiana. Sukhdev Thapar had witnessed the brutal atrocities that the Imperial British Raj had inflicted on India, which led him to join the revolutionary freedom fighters.
4: आज पुण्यतिथि है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की। कुछ लोग सिर्फ सेना का नेतृत्व नहीं करते बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही महान सैन्य अधिकारी थे फील्ड मार्शल कोंडडेरा मडप्पा करियप्पा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनने का गौरव प्राप्त करने वाले करियप्पा ने भारतीय सेना को नई पहचान और मजबूत दिशा दी। इस पद पर वे 1953 तक रहे। उनका मानना था कि एक सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासन और देश के प्रति समर्पण होता है। सैनिकों के बीच वे सिर्फ एक अधिकारी नहीं थे बल्कि प्रेरणा और विश्वास का प्रतीक भी माने जाते थे। देश के प्रति उनकी असाधारण सेवा और

0: योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
1: Well, we salute the brave heart. Today, listeners, we are also remembering Emily Elizabeth Dickinson, the poet. The Poetry Foundation describes her as having created in her writing a distinctively elliptical language for expressing what was possible but not yet realized. Although she was a prolific writer, only 10 of her nearly 1,800 poems were published during her lifetime. Today, her poems are widely regarded as groundbreaking with their use of lean descriptions and slant or off-rhythm.
0: आज ही पुण्यतिथि है कालिंदी चरण पाणिग्रही की। शब्दों को भावनाओं की ताकत देने वाले महान साहित्यकार कालिंदी चरण पाणिग्रही को उड़िया साहित्य का प्रमुख स्तंभों में गिना जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास हो, नाटक साहित्य की लगभग हर विधा में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी रचनाओं में समाज, मानवीय संवेदनाएं और भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। इनकी प्रसिद्ध कृति की बात करें तो माटीरा मणिषा आज भी उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। इन्हें उड़िया साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। कालिंदी चरण पाणिग्रही को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग द कंट्री सिंगर सॉन्ग राइटर एक्ट्रेस एंड ऑथर वैलोरी जून कार्टर कैश। अ फाइव टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर शी वॉज अ मेंबर ऑफ द कार्टर फैमिली एंड ऑल्सो वेल शी परफॉर्म्ड अंडर द नेम जून कार्टर इन द बिगिनिंग देन शी कंटिन्यूड टू यूज दैट नेम प्रोफेशनली इंक्लूडिंग ऑन सॉन्ग राइटिंग क्रेडिट्स. I have a beautiful song in her voice. Let's listen in.

0: आज ही के दिन जन्म हुआ था महेंद्रनाथ मुल्ला का। कर्तव्य, साहस और नेतृत्व की मिसाल बने भारतीय नौसेना के जांबाज अधिकारी थे महेंद्रनाथ मुल्ला। और 1926 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान INS खोखरी के कप्तान थे ये। और युद्ध के समय जब दुश्मन के हमले में जहाज़ क्षतिग्रस्त हो गया, तब इन्होंने अपने साथियों की जान बचाने को सबसे पहले महत्व दिया। और कहा जाता है कि इन्होंने अंतिम समय तक अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और जहाज के साथ ही समुद्र में समा गए। उनका ये साहस, नेतृत्व और बलिदान भारतीय नौसेना के इतिहास में अद्भुत उदाहरण माना जाता है। देश के प्रति उनकी वीरता और सेवा को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
1: वेल, टुडे इट्स आल्सो माधुरी दीक्षित नेने'स बर्थडे। So she has appeared in over 70 Hindi films, attaining nationwide stardom that influenced Indian popular culture.
0: जी, आज बॉलीवुड की धक धक गर्ल का जन्मदिन है। और माधुरी दीक्षित ने 1984 में फिल्म अभूत से अपने फिल्मी जीवन की करियर की शुरुआत की थी। और अभिनेत्री के रूप में देखा जाए, जिस फिल्म से इनको पहचान मिली वो थी फिल्म तेजाब।
1: एग्जैक्टली।
0: और तेजाब फिल्म से ही इनको पहली सफलता मिली और इसके बाद ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। और माधुरी दीक्षित ने, अगर फिल्मों की बात करें तो बहुत लंबी सूची है, फिल्मों की लिस्ट है, दयावान, राम लखन, दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन जैसी सफल फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। और इनकी मुस्कान और चेहरे के भाव और इनका जो नृत्य जो था वो दर्शकों पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ता था।
1: सो यू टॉक्ड अबाउट हम आपके हैं कौन, वी आल्सो हैव अ डायलॉग फ्रॉम द मूवी, लेट्स लिसन इन।
0: जी जरूर।
2: समझ गई।
3: क्या?
2: खड़े होइए।
3: जी
2: खड़े होइए। देखिए, आप लोग साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं।
3: जी
2: जी हाँ, साल भर तो पढ़ाई करते हैं नहीं, इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने।
3: नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम, मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही हैं।
1: सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित, हम आपके हैं कौन।
0: जी, और हर किरदार में माधुरी ने अपने अभिनय की अलग ही छाप छोड़ी है।
1: So her accolades, they also include 6 Filmfare Awards and in 2008, well, she was awarded with Padma Shri, right?
0: जी, तो उनकी फिल्म का एक गीत जरूर सुना जाए।
1: जी।

0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है, आपसे हमें अनुमति लेनी होगी यहीं पर। तो
1: नमस्ते।
0: इजाज़त दीजिए विशाल और शगुन को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। और आप इस कार्यक्रम को अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
1: सो विद दैट थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग, द्विपक्षीय व्यवहार और प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
3: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप की 6 दिन के दौरे पर पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
4: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत माध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए NEET UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज गुरुग्राम में भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान में 11वें विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने बताया कि सत्र में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रदेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूच विहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना DMK के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की। भारत का माल और सेवा कुल निर्यात अप्रैल 2026 में

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: देखो वीनस बहन, आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषाओं को, लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोक कलाकारों को, शास्त्रीय संगीत को, ग्रामीण प्रतिभाओं को अपने कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए हम लोक संगीत लेकर आते रहें, क्योंकि बहुत ही पसंद करते हैं वो इसे सुनना, हमसे जुड़े रहते हैं लगातार। हमारे और भी कार्यक्रम हैं जिनमें वो SMS के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, हर तरीके से हमें अपनी पसंद और नापसंद से अवगत कराते रहते हैं। तो उनके मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए लोक रंजनी कार्यक्रम में हम बेहतरीन लोकगीतों का चयन करते हैं।
1: वो तो होता ही है, क्योंकि ये अवसर और हमारे जो तीज त्यौहार है और जो मौसम से भी जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को अपने संगीत के माध्यम से और लोक संगीत के साथ ऐसे इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि लोगों को तो मज़ा आता ही, हमको भी बहुत मज़ा आता है। तो हम देरी
0: बिल्कुल।
1: ना करते हुए सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को पहला लोकगीत।
0: और कलाकार रहेंगे करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा।

0: हंस हंस प्रेम ते बोले जा, वह किस्मत वाली होया करे। बहुत ही सुंदर अभी ये जुगलबंदी सुन रहे थे आप मंजू शर्मा और कंपल शर्मा की आवाज़ में। और जैसे तालमेल पति पत्नी के बीच ज़रूरी है, वैसे ही गायक कलाकार और वादक कलाकार के बीच जब सही तालमेल होता है तो एक बेहतरीन गीत निकल कर आता है। और हमारी अगली जो कलाकार है,
1: अगली कलाकार जो हमारे होंगे, हम श्रोताओं को सुनाने वाले हैं शिक्षा तवर से ये एक और लोकगीत।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शिक्षा तंवर की आवाज़ में ये रागिनी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और
1: और
0: सुनते हैं
1: सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर और पूनम चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर और पूनम चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत। इसके साथ ही आज का लोकरंजनी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल। और अब आपसे मुलाकात होगी 6:30 पर ग्राम संसार कार्यक्रम में।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
1: शिवांश रक्षित।
0: और कार्यक्रम शुरू करते हैं और बताते हैं सबसे पहले कि क्या है खास आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करेंगे आज आईपीएल की। जी हाँ, आईपीएल में खेले जा रहे रोमांचक मुकाबले प्लेऑफ्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर भी चर्चा करेंगे और एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्या है खास उस पर आपको बताएंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2026 पर एक खास रिपोर्ट भी आपको सुनवाएंगे और लाइव अपडेट भी आपको देंगे क्वार्टर फाइनल्स के, क्योंकि शुरू होने वाला है मुकाबला लक्ष्य सेन का, उसके बारे में आपको भी हम अवगत कराएंगे। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप्स जो ताशकंद में खेली जा रही थी, उनके अंडर 17 के फाइनल्स की क्या है अपडेट वो भी आपको देंगे। और बॉक्सिंग ट्रायल्स फॉर एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो पटियाला में आयोजित किए गए थे उनमें क्या रहा खास उस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 18 हॉकी के मुकाबले होने हैं बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कैटेगरी के, तो उस पर भी आपको रिपोर्टिंग जरूर सुनवाएंगे। WTT फीडर इस्तांबुल में क्या है खास और साथ ही साथ 2026 सुपर चेस क्लासिक जो रोमानिया में आयोजित किया गया है उसके राउंड एक के रिजल्ट और राउंड टू के क्या है फिक्सचर्स उसके बारे में जानेंगे।

आईपीएल की बात करने से पहले शुरू करते हैं, एक बताते हैं आपको एक खास खबर, क्योंकि ये खबर है गोल्ड मेडल से जुड़ी हुई। 11th सांडा वर्ल्ड कप जो मकाऊ में आयोजित किया गया था, उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अपर्णा दहिया ने मौजूदा विश्व चैंपियनशिप थी फुआंग को सीधे सेटों में हराकर महिलाओं के 52 किलो भार वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं करीना कौशिक ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और साथ ही साथ सागर दहिया ने पुरुष के वर्ग 56 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो ये थी एक खास जानकारी, क्योंकि गोल्ड मेडल के लिए खेलता है हर एक खिलाड़ी और जब गोल्ड मेडल मिलता है तो वो उसके लिए तो खास होता ही है, साथ ही साथ देश के लिए भी गर्व की बात होती है। और अब बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल के मुकाबले की बात करते हैं जो कल खेला गया, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में। ये 58वां मुकाबला था और इस मुकाबले में पंजाब को लगातार सीजन की 5वीं हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद जब पंजाब की प्लेऑफ की राह भी मुश्किल हो गई, मुंबई का सफर पहले ही खत्म हो चुका था और ऐसे में कुछ ना खोने के डर वाली मुंबई ने श्रेयस अय्यर की टीम का खेल बिगाड़ दिया। इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेलने उतरी और नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पहले से ही टीम से बाहर है। वहीं सूर्यकुमार यादव भी मैच का हिस्सा नहीं थे। टॉस जीतकर बुमराह ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले खेलने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत ठीक थी, लेकिन उसके बाद मध्यक्रम डगमगा गया। प्रभसिमरन सिंह ने इस मैच में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 32 गेंद पर 57 रन बनाए। मध्यक्रम में कूपर कोनोली ने कुछ हद तक पारी संभाली, मगर कप्तान श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे और शशांक सिंह ने निराश किया। अंत में अफगान ऑलराउंडर अजमतुल्ला ओमजरई ने 17 गेंद पर 38 रन बनाते हुए शानदार फिनिश किया और स्कोर 200 रन तक पहुंचाया। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई के रियान रिकल्टन ने 23 गेंद पर 48 रन की पारी खेलते हुए तेज शुरुआत की, लेकिन धीमी बल्लेबाजी से फैंस को निराश किया और हिटमैन ने 26 गेंद पर 25 रन बनाए। इसके बाद नमन धीर ने भी निराश किया। फिर शुरू हुआ तिलक वर्मा का शो, जो मुंबई की जीत के बाद ही थमा। तिलक वर्मा ने 88 पर 3 के बाद

0: यानी कि 88 रन बन चुके थे और 3 विकेट्स गिर चुकी थी। उसके बाद मुंबई इंडियंस को अपने दम पर संभाला। 33 गेंद पर नाबाद 75 रन की पारी में उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के लगाए। शेफरन रदरफोर्ड 20 और अंत में विल जैक्स की 10 गेंद पर 25 रन की पारी के बदौलत मुंबई ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 205 रन बनाए और मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। मुंबई इंडियंस की जीत से पंजाब किंग्स का थोड़ा सा आंकड़ा बिगड़ गया। अब पंजाब के लिए टॉप 2 की जगह उम्मीदें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। अगर बचे हुए दोनों मैच पंजाब की टीम जीत भी जाती है तो उसके 17 अंक होंगे और 17 अंक पे पंजाब सुरक्षित नहीं रहेगी, और अपने दोनों मैचों में जीत के बाद उसे अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को बड़ा झटका दिया और आईपीएल 2026 के 58वें मैच में 6 विकेट से उनको हरा दिया। और शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने इस मुकाबले में 4 विकेट झटके, क्या कहते हैं पूरे के पूरे प्रदर्शन और पूरे के पूरी टीम के प्रदर्शन पर और अपने 4 विकेट्स लेने पर? आइए शार्दुल ठाकुर को सुनते हैं।
1: There were too many ups and downs in this game. In power play, we started really well, but then back end of the power play and start of the middle overs, there were few runs flowing. And again, we were able to pull them back again. In the death overs, there were some runs scored. Same with our batting. We had a good start in the power play. Then in the middle, we struggled. Then again, we picked up the pace. So if you follow the game from start to end, all this 40 was including both the innings, there have been too many ups and downs. The tempo was constantly changing. So as bowlers also and as batters also, it's very difficult to, you know, keep for bowlers to keep coming back and bowling good deliveries, because suddenly there's shift in tempo, and then you got to be thinking, oh, what are my shutdown options? Then suddenly there's a fall of 1 or 2 wickets, and then you're looking for wickets. So there were too many switches in the game itself. So in that way, bowlers had to shift their mindset quite a lot. And for batters, I think it was more of a patience game where they wait for loose deliveries and then try to convert. It was that kind of a pitch, I would say. And yes, we ended up giving probably 20 runs more than what we would intend to. Kudos to Tilak, the way he held his nerve. He spent the time in the middle. He looked to bat all 20 overs, and he selected his balls, he selected his areas where he needs to hit the shots. And also to start with Rickleton, the way he provided us runs in power play, and then Jaxy also in the end supporting Tilak with big hits, so that was very encouraging to see. जी बिल्कुल, जब मैं बॉलिंग के लिए आया तो 5th ओवर डाल रहा था, तो ये पता था कि 5th ओवर और 6th ओवर है जहाँ पे पंजाब के बैटर्स भी अटैक करने देखेंगे। हो सकता था कि और ज़्यादा रन्स भी जाए, बट जो मेरे 4 ओवर थे उसमें हो सकता था कि मैं 7-8 रन्स कम दे सकता हूँ, एक दो और अच्छे डिलीवरीज डाल सकता था। बट T20 गेम भी ऐसा है कि कभी कभी आपका इंटेंशन रहता है अच्छी गेंद डालने के लिए, लेकिन बैटर अच्छा शॉट खेल देता है, वो चौका निकल जाता है या छक्का निकल जाता है। और धर्मशाला एक ऐसा वेन्यू है जो हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो काफ़ी बार यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन पे आउट हो जाता है बैटर, वो यहाँ पे 6 भी जा सकता है। वो फैक्ट कंसिडर करते हुए अगर हम देखेंगे तो आई वॉज हैप्पी विथ माई बॉलिंग, आई वुडन्ट से आई वॉज टू हैप्पी विथ माई बॉलिंग। एंड जो विकेट लिए मैंने 4 विकेट, यस खुश हूँ उससे, बट ज़्यादा खुशी मेरे लिए इस पे कि विनिंग कॉज में मैं विकेट ले सका टीम के लिए।
0: ये थे शार्दुल ठाकुर, जो कह रहे थे बहुत खुश हैं अपनी बॉलिंग से क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया अपनी टीम के लिए, जीत के लिए कंट्रीब्यूट किया, और साथ ही साथ तिलक वर्मा की बैटिंग को उन्होंने खूब सराहा। और अब बात कर लेते हैं आज शाम होने वाले मुकाबले की। आज शाम मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, और ये आईपीएल 2026 का 59वां मैच होगा। यह मैच चेन्नई के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जीत के साथ ऋतुराज गायकवाड की टीम प्लेऑफ की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी, और वर्तमान में सीएसके की टीम जो है प्लेऑफ की दौड़ में 5वें स्थान पर है। सीएसके के पास इस समय 12 अंक हैं और उन्हें तीन और मैच खेलने हैं और इस मैच में चेन्नई पहले से ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। एलएसजी को हराकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है और इसलिए वैसी

0: का खेल खराब करने का पूरा प्रयास भी करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की नजरें अनुभवी खिलाड़ियों पर होगी। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज पथिराना से टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स अपने घरेलू मैदान पर केएल राहुल, निकोलस पुरन और रवि बिश्नोई के दम पर जीत दर्ज करने उतरेंगे। पिच रिपोर्ट की बात करें तो इकाना की सतह शुरुआत में थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। और अंक तालिका को अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। और अंक तालिका की बात करते हैं तो अंक तालिका के बारे में जानते हैं शिवांश रक्षित से।
1: दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनके 16 अंक है। दूसरे स्थान पर है गुजरात टाइटंस, जिनके भी 16 अंक है। तीसरे स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके 14 अंक है। चौथे स्थान पर है पंजाब किंग्स, जिनके 13 अंक है। पांचवें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके 12 अंक है। छठे स्थान पर है राजस्थान रॉयल्स, जिनके 12 अंक है। सातवें स्थान पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिनके 10 अंक है। आठवें स्थान पर है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके 9 अंक है। नवें स्थान पर है मुंबई इंडियंस, जिनके 8 अंक है। दसवें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिनके 6 अंक है।
0: तो ये तो थी आईपीएल की बात, और अब फिर से चलते हैं रक्षित के पास और जानते हैं वेट लिफ्टिंग के बारे में।
1: एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, जो कि 11 मई से 17 मई के बीच खेला जाएगा, उसमें भारतीय खिलाड़ी सुरेश अभिषेक 88 वर्ग भाग में नैच में पहला राउंड अपने नाम किया, लेकिन जो दूसरे राउंड में उनको शिकस्त मिली और तीसरे राउंड में भी उनको शिकस्त मिली, लेकिन जब क्लीन जर्क की बारी आई तब तीनों में उन्होंने जीत हासिल की और अभी वो पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर है। टोटल अगर उनका स्कोर बताया जाए तो वो 326 है और ये जो मैचेस है वो गांधीनगर में खेला जा रहा है। और इसी भार वर्ग में ग्रुप ए का मुकाबला आज 6 बजे शाम को होगा। इसके बाद ओवरऑल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का फैसला होगा, मगर भारत के अभिषेक सुरेश मेडल की दौड़ से बाहर हैं। दोस्तों, कल के खेले गए मैच, जो कि 79 भार वर्ग में भराली बेदेवव्रत, जिन्होंने स्नैच में तीनों बारी में सफलता हासिल की, लेकिन क्लीन एंड जर्क में उनको तीनों बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। और देखा जाए तो इस पूरे ग्रुप में निराशाजनक रूप से आखिरी स्थान पर है भराली। श्रोताओं, हरजिंदर कौर ने स्नैच में ब्रॉन्ज पदक अपने नाम किया। 69 kg भाग में स्नैच में पहले और तीसरे में जीत हासिल की और उन्होंने क्लीन एंड जर्क में भी तीनों बार जीत हासिल की। और अगर देख के बताए तो हरजिंदर कौर 4th स्थान पर हैं और उनके जो कुल मिलाकर पॉइंट्स है वो है 217।

अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप्स जो ताशकंत में आयोजित की गई हैं और 1 से 16 मई के बीच में इनका आयोजन किया गया है, और इसमें अगर हम जाने तो 21 देशों से यानी कि 21 एशियन कंट्रीज से 400 से 500 बॉक्सर्स इन्होंने शिरकत की, हिस्सा लिया, और भारतीय बॉक्सर्स ने अपना दबदबा बनाकर रखा पूरे प्रदर्शन के दौरान। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंत में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय युवा मुक्केबाज शानदार प्रदर्शन करते रहे। टूर्नामेंट में एशिया के कई देशों के उभरते बॉक्सरों ने हिस्सा लिया और भारत ने इस प्रतियोगिता में 56 सदस्यीय टीम उतारी जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों वर्गों के शामिल थे। भारतीय खिलाड़ियों ने कई भार वर्गों में सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचकर देश के लिए पदक भी सुनिश्चित किया। और अंडर 17 के मुकाबलों की अगर बात करें, क्योंकि आज अंडर 17 के मुकाबले समाप्त हुए हैं, एशियाई मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाने वाले भारतीय अंडर 17 बॉक्सरों ने कई भार वर्ग में फाइनल में जगह बनाई, जबकि अनेक खिलाड़ियों ने कांस्य पदक निश्चित किया और देश का गौरव बढ़ाया। भारतीय टीम का प्रदर्शन विशेष रूप से गर्ल्स का शानदार रहा, जिसमें 8 मुक्केबाज जो है फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद गोल्ड मेडल तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बेहतरीन तकनीक और आक्रामक खेल दिखाकर उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। और कौन कौन सी जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्होंने सिल्वर लिया और कौन सी हमारी

खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड लिया उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो दो हमारी अंडर 17 गर्ल्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, वो है राखी और दूसरी खिलाड़ी है नव्या। और नव्या का मुकाबला हुआ था जापान के खिलाड़ी से, वहीं राखी का मुकाबला हुआ था उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी से। इन दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया और सिल्वर मेडल हासिल करने वाली जो खिलाड़ी हैं उनके नाम हैं खुशी चंद, और इनका मुकाबला हुआ था जापान की अरीसा से। वहीं दूसरी खिलाड़ी दिया है और इनका मुकाबला हुआ था महरी मा किलियोचोवा जो उज़्बेकिस्तान की हैं उनसे इनका मुकाबला हुआ था। और हिमांशी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया और इनका मुकाबला भी उज़्बेकिस्तान की करीना से हुआ था। और कजाकिस्तान की डायना का मुकाबला ज्योति से हुआ था और ज्योति ने सिल्वर मेडल हासिल किया। वंशिका जो भारत की हैं उनका मुकाबला कजाकिस्तान की जहान साया से हुआ था और इन्होंने सिल्वर हासिल किया। और साथ ही साथ गुरसीरत कौर इन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया और इनका मुकाबला हुआ था उज़्बेकिस्तान की खिलाड़ी से। और अगर पुरुषों की बात करें अंडर 17 जो लड़के खेल रहे हैं उनकी अगर बात करें तो लक्ष्य फोगाट जो हैं वो फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंचने के बाद स्वर्ण पदक में उस अपने सफ़र को स्वर्ण पदक में नहीं बदल पाए और इनका मुकाबला फाइनल में उज़्बेकिस्तान के तुशपुलोतोव से था और वो फाइनल में हार गए और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। लक्ष्य फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबला में कोरिया के स्युंगमिन ली के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया था और 5-0 से जीत हासिल की थी।

बॉक्सिंग की ही बात को जारी रखते हैं और ये भी बताते चलते हैं कि अंडर 17 में बॉयज़ की कैटेगरी में 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आए हैं और अंडर 17 की गर्ल्स की कैटेगरी में 2 गोल्ड 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग ट्रायल्स की। बॉक्सिंग ट्रायल्स पर दुनिया भर के बॉक्सर्स की नज़र है, लेकिन पटियाला में चल रहे बॉक्सिंग के नेशनल ट्रायल्स में कल 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में साक्षी चौधरी ने निखत को 4-1 से शिकस्त देकर सबको चौंका दिया। साक्षी ने निखत को 4-1 के चौंकाने वाले स्प्लिट डिसीजन से हरा दिया और इस तरह 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन ओलंपियन निखत जरीन 2026 एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हो गई। 51 किलोग्राम वर्ग में एक और तोड़फोड़ देखने को मिली जब पूर्व वर्ल्ड चैंपियन नीतू घनघस को मीनाक्षी हुड्डा ने हरा दिया, जो कि लिवरपूल 2026 में वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। और इस हार के कारण अब पूर्व चैंपियन निखत अब 2022 के एशियाड में जीते गए कांस्य पदक को नहीं बचा पाएंगी। दो हजार बाईस के बर्मिंगम राष्ट्रमंडल गेम्स की चैंपियन और 2023 की हांगजो एशियन गेम्स की ब्रॉन्ज मेडल विजेता निखत पहले मुकाबले में 51 किलोग्राम के सेमीफाइनल में साक्षी चौधरी से 1-4 से हार गई। और इसके अलावा पिछले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर द्वारा की गई मूल्यांकन आधारित चयन प्रणाली 2023 से ही वह सवालों के घेरे में ये सारी चयन प्रणालियां थी और उसके बाद ये ऐसे चेंजेस किए गए जिसकी वजह से ये बॉक्सिंग ट्रायल्स रखे गए और काफ़ी नए उभरते बॉक्सर्स को मौका मिला और जो जिन बॉक्सर से बहुत उम्मीद थी वो इन ट्रायल्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, उन ट्रायल्स में विजयी नहीं हो पाए और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी जगह वे बिल्कुल भी नहीं बना पाए। अब बात करें मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जैस्मिन लंबोरिया की तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में और अरुंधति चौधरी 70 किलोग्राम ने सिर्फ राष्ट्रमंडल खेल के लिए जगह पक्की की क्योंकि उनका वजन वर्ग एशियाड में शामिल नहीं है और ट्रायल जीतने वाले मुक्केबाज राष्ट्रमंडल गेम्स से पहले कैंप के लिए चेकिया जाएंगे, जबकि दूसरे रैंक के मुक्केबाज 15 से 20 जून तक चीन के गुयांग

शहर में होने वाले वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में हिस्सा लेंगे। 2026 राष्ट्रमंडल खेल जुलाई अगस्त में ग्लासगो में और इसके बाद सितंबर अक्टूबर में 2026 एशियन गेम्स जापान में होंगे। और कौन कौन से खिलाड़ी चयनित हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वुमेन कैटेगरी की बात करते हैं, तो वुमेन कैटेगरी में 51 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी चौधरी है, 54 किलोग्राम में जैस्मिन लंबोरिया है, 57 किलोग्राम में प्रवीण हुड्डा है, 60 किलोग्राम में संजू है, 66 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोरगोहेन है और 75 किलोग्राम भार वर्ग में मीनाक्षी है। वहीं पुरुषों की अगर सूची की और नज़र डालें तो 51 किलोग्राम भार वर्ग में है दीपक बोरिया, 57 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन सिवाच, 63 किलोग्राम में शिवा थापा, 71 में विशाल, 80 किलोग्राम भार वर्ग में जुगनू और 92 से ऊपर के भार वर्ग में है नरेंद्र।

0: और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की और चलते हैं शिवांश रक्षित के पास।
1: भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2026 में शानदार शुरुआत की है। 12 से 17 मई 2026 तक बैंकॉक के नीमी बूथ स्टेडियम में आयोजित इस BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में वो शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं। सात्विक चिराग की जोड़ी ने आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगोमी की जोड़ी के सीधे सेटों में 21-12 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में सात्विक चिराग का मुकाबला मलेशिया की इजुद्दीन और गोह सजे फेई के जोड़ी से होगा। टूर्नामेंट के अपने पहले दौर के मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक चिराग ने इंडोनेशिया की मोहपुत्र एरवी यांसिया और बागास मौलाना को 21-19 और 21-23 और 21-10 से हराया। ये मुकाबला 64 मिनट तक चला जिसमें भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए जीत हासिल की। कल के प्री क्वार्टर फाइनल के खेले गए मुकाबले

0: जापान के यामागुची से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें पहला सेट तो पीवी सिंधु के नाम रहा, लेकिन आखिर के दोनों सेट्स जापान के यामागुची के नाम हुआ।
1: और अब ये जानते हैं पीवी सिंधु क्या बताती हैं अपने इस जो मैच ये हार गई हैं उससे जुड़े।
2: You know, I could have converted it into a win, I felt, and you know, simple errors is what I made, I felt, because you know, I was leading in the second game, and I mean, it was not like we were doing the rally, it was not like easy points, but maybe I should have converted it into a win is what I felt. And I think third game also, I think the lead was, you know, maintaining, she was maintaining the lead, and I think in the beginning, I've given her like 4-5 points in a row, I covered, but still, you know, I think 2-3 points really matters a lot at this point as well, and of course it was very important for me to, you know, get every point, because when you're, you know, trailing at some point, you're like, you want to be safe also, you want to get a point as well. So I think, you know, I should have been in the upper hand, but yeah, I think I've made those errors which I shouldn't have made.
1: और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। WTT फीडर इस्तांबुल में आयोजित है और खास जानकारी वहां से एक आ रही है। सुतीरथ और अयका मुखर्जी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की चीन ली को 3-1 से हराया और 11-8, 12-10, 3-11 और 12-10 ये सेट रहे और 3-1 से हराकर महिला युगल का खिताब जीत लिया है। 0-8 से पिछड़ने के बाद उन्होंने चौथे गेम में 8-8 से बराबरी की और मैच 12-10 से अपने नाम कर लिया।

0: अब बात करते हैं चेस की। 2026 सुपर चेस क्लासिक जो रोमानिया में आयोजित है, राउंड वन के रिजल्ट और राउंड टू के फिक्स्चर्स के बारे में जानते हैं और चलते हैं शिवांश रक्षित के पास।
1: सुपर चेस क्लासिक जो कि रोमानिया में खेला जा रहा है, 14 मई से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में राउंड रॉबिन मैचेस खेले जाएंगे 24 मई तक, जिसमें सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं वो 9 बाजी खेलेंगे एक दूसरे के साथ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के विरुद्ध ड्रॉ खेला। ये मुकाबला यहाँ आयोजित सुपर चेस क्लासिक्स के पहले राउंड में खेला गया, जो ग्रैंड चेस टूर का पहला क्लासिकल इवेंट है। हालांकि प्रज्ञानंद ने जटिल स्थिति बनाने का फैसला किया और मजबूत सेंटर के बदले क्वीन साइड पर काले मोहरे को जुड़े हुए पास्ट प्यादे लेने दिए। ईरानी मूल के फ्रांसीसी खिलाड़ी फिरोजा ने मिडल गेम में शानदार चालें चली और भारतीय खिलाड़ी के किंग साइड पर दबाव बना दिया। स्थिति इतनी पेचीदा हो गई कि इंसानी दिमाग के लिए हर बेहतरीन चाल ढूंढ पाना लगभग असंभव था। 35वें चाल में हुई एक गलती के बाद मुकाबला बराबरी के रुख और प्यादों वाले एंड गेम में पहुंच गया। हालांकि प्रज्ञानंद एक प्यादा पीछे थे, लेकिन आखिर में मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये दिन का सबसे लंबा मुकाबला रहा जो 60 चालों तक चला। वहीं फ्रांस के मैक्सिम वाशिये लग्रेव और नेदरलैंड्स के अनीश गिरी के बीच भी रोमांचक मुकाबला ड्रॉ रहा। सफेद मोहरे से खेले गए कैटलन ओपनिंग में फ्रांसीसी खिलाड़ी को ज्यादा बढ़त नहीं मिली और कुछ अदला बदली के बाद मुकाबला संतुलित स्थिति में पहुंच गया। गिरी के पास कुछ मौके थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षित खेलते हुए 32 चालों में ड्रॉ स्वीकार कर लिया। श्रोताओं, आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल। सबसे पहले स्थान पर है फैबियानो जो कि यूएसए से है। दूसरे स्थान पर है जावोकिर सिंदरोव जो कि उज्बेकिस्तान से है। तीसरे स्थान पर है अनीश गिरी जो नेदरलैंड से खेलते हैं। चौथे स्थान पर है विंसेंट केमर जो कि जर्मनी से है। पांचवें स्थान पर है अलीरेजा फिरोजा जो फ्रांस से खेलते हैं। छठे स्थान पर है वेस्ले जो यूएसए से है। सातवें स्थान पर है जॉर्डन वैन फॉरेस्ट जो नेदरलैंड से खेलते हैं। आठवें स्थान पर है आर प्रज्ञानंदा जो भारत से है। नवे स्थान पर है मैक्सिम वाचियर लाग्रेव जो फ्रांस से खेलते हैं और दसवें स्थान पर है बोगदान डेनियल जो रोमानिया से खेलते हैं। श्रोताओं, आपको एक खास बात और बताते हैं कि जो कल के जितने भी मुकाबले खेले गए वो सारे के सारे ड्रॉ रहे। श्रोताओं, आपको बताते हैं कि अंडर 18 हॉकी मैन में 4 मैचेस की श्रृंखला चल रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यह टूर्नामेंट 15 मई से 20 मई तक चलेगा जो कि भोपाल में खेला जाएगा और आज सबसे पहला मैच चल रहा है, 5 बजे से शुरू हुआ था और जो अगला मैच है वो 17 मई को होगा, जो तीसरा मैच है वो 18 मई को होगा और जो आखिरी मैच है वो 20 मई को होगा। और अंडर 18 वीमेन में भी 4 मैचेस की श्रृंखला चल

0: चलेगी और जो सेम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगी। ये टूर्नामेंट भी 15 मई से 20 मई तक चलेगा, जो कि भोपाल में ही खेला जाएगा। और आज शाम 7 बजे से पहला मैच शुरू होने वाला है और जो अगला मैच है वो रहेगा 17 मई को, जो तीसरा मैच है वो रहेगा 18 मई को और जो आखिरी मैच रहेगा वो रहेगा 20 मई को।
1: तो ये तो थी हॉकी की बात। और अब अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 के लिए 50 सदस्यीय संभावित टीम की घोषणा हो चुकी है। जूनियर फेडरेशन कप 2026 में अब तक के सर्वोच्च प्रदर्शन के बाद 50 एथलीटों को अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो 28 से 21 मई 2026 तक हांगकॉन्ग में आयोजित होने वाली है। सभी 50 एथलीट भारतीय खेल प्राधिकरण के बेंगलुरु में आयोजित 19 दिवसीय तैयारी शिविर में भाग लेंगे और जिसे SAI के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत अनुमोदित किया गया है। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए अंतिम भारतीय टीम का चयन इन्हीं 50 एथलीटों में से किया जाएगा। और IPL चल रहा है और IPL के दौरान ही कुछ खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे तिलक वर्मा को इंडिया ए का कप्तान बनाया गया है और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को उप कप्तान नियुक्त किया गया है इंडिया ए का। जी हाँ, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, जो इस साल की शुरुआत में भारत की अंडर 19 विश्व कप टीम विजेता टीम का हिस्सा थे, उनको भी टीम में शामिल किया गया है और ये ट्राई सीरीज होनी है जून में, जो भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी। और इसका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। पहला मैच 9 जून को होगा, जो इंडिया ए और श्रीलंका के बीच में होगा। दूसरा मैच 11 जून को इंडिया ए वर्सेस अफगानिस्तान ए। तीसरा मैच 13 जून को अफगानिस्तान ए वर्सेस श्रीलंका ए और 15 जून को इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए। 17 जून को इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए और 19 जून को अफगानिस्तान ए वर्सेस श्रीलंका ए खेला जाएगा और फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को और मेरे सहयोगी शिवांश रक्षित को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
4: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
5: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
3: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से

0: बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने RG कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालाउथ वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. He arrived in UAE this morning on the first leg of his 5-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome, with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Both the leaders discussed energy cooperation and bilateral trade high amid global supply disruptions linked to the ongoing conflict in West Asia. In his opening remarks, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on the UAE, describing them as completely unacceptable.
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना लिया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने
1: After concluding his UAE visit, the Prime Minister is now en route to the Netherlands on the second leg of his visit. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the 6-day tour. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Addressing the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 in New Delhi, Dr. Jaishankar said, "The breadth of the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world." He further said there is urgent need to reform the international financial architecture. Dr. S. Jaishankar also met Foreign Minister of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. In a social media post, Dr. Jaishankar said

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां संधिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जून मासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानं एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्धविमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिमेशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारम्भिके भाषणे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया है यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए।
0: राष्ट्रपतिम शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुम भ्रातेति शब्देन संबोधयन् सः कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षवादस्य लक्ष्यस्य प्रगत्यै प्रतिबद्धमस्ति। नवदिल्ल्यां 26,000+ ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय दिवसस्य मुक्त सम्मेलनं संबोधयन् डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् अस्य समूहस्य विस्तारितं सहभागित्वं द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य वैश्विक सन्दर्भे बहुपक्षीय सहयोगानां सुदृढीकरणाय सर्वेषां नेतॄणां महत्वबोधं प्रतिबिम्बयति। सः इदमपि अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय संरचनायाः परिष्कारः अत्यावश्यकः अस्ति। ततः पूर्वं डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां ईरान देशस्य विदेश मंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह मिलितवान। सामाजिकांतर्जालीय पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उभौ नेतारौ पश्चिम एशियायाः स्थितिं तस्याः प्रभावाञ्च चर्चितवन्तौ। द्विपक्षीय विषयेषु परस्पर हितसंबद्ध विषयेषु च मतानां आदान प्रदानम् अपि कृतवन्तौ। ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडले 26,000 वर्षे श्री अराघची वर्यस्य सहभागितायाः अपि तेन प्रशंसा कृता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्यूबा देशस्य

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। विनस बहन, देखिए हमारे जो भारतीय समाज में परिवार का विशेष महत्व है, लेकिन आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और परिवार हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और पहली सामाजिक इकाई है, जिसमें कि हम बिना किसी शर्त के प्यार, मानसिक संबल और एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और परिवार के बीच जाकर चाहे जितनी भी थकान हो, जितनी भी मन में वो हो, लेकिन परिवार वाले जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा ही अच्छा माहौल बन जाता है और सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल, कहने की बात यह है कि आज 15 मई है और आज बहुत ख़ास दिन है। आज के दिन इंटरनेशनल फैमिली डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। आज की भागदौड़ की भरी ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा हम मॉडर्न लाइफ और मोबाइलिटी में डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो कहने का मतलब ये कि जो पहले वाला जो समय था जब परिवार एक साथ मिलजुल के रहते थे, अभी ऐसा नहीं रहा है। संयुक्त परिवारों का तो चलन बहुत ही कम हो गया है। लोग काम के सिलसिले में अपनों से दूर हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऐसे में ये दिवस हमें अपने परिवार के साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, छोटी मोटे हर किस्सों के बारे में डिस्कशन करना और रिश्तों को मजबूत बनाने का एक अवसर देता है। परिवार सबसे पहले है मेरी नज़र में और हम सबके लिए, क्योंकि ये हमारे पीछे से चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। परिवार की जो सबसे पहले है, ये परिवार की हमें सिक्योरिटी देती है, यही हमारी सुरक्षा का ऐसा एहसास दिलाता है जिसमें हमें दुख दर्द हो, चाहे हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो, वो छोटी छोटी खुशियाँ हो, उसको उनका जश्न मनाना है ना, छोटी छोटी हैप्पीनेस को
0: बिल्कुल,
1: इंजॉय करना
0: कोई
1: सबके साथ,
0: औपचारिकता नहीं होती
1: कोई
0: है परिवार
1: औपचारिकता
0: में।
1: नहीं होती है। एंड दूसरा ये कि एक दूसरे के मान सम्मान का भी बहुत ध्यान होता है, जितने भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं। एंड खासकर अगर हम बात करने जाऊँगी तो इस टाइम मैं थोड़ा सा भावुक हो जाऊँगी, इमोशनल हो जाऊँगी, क्योंकि ये हमें वो दिनों की याद भी दिलाता है कि कोविड के बाद में जो हमने बहुत सारे परिवारों ने अपने अपने प्रियजनों को खो दिया, तो ये खोने का जो दर्द है ना, ये बड़ा ही बहुत ही गहरा होता है। और आज के जीवन में ये जितना ज़्यादा कम हो गया है ना, तो मेरी सबसे दरख्वास्त है और ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो थोड़ा सा वक्त हमेशा हर दिन बैठें, बातचीत करें अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ में। शायद ये दर्द उनसे करीब होने का एहसास भी दिलाएगा और उनसे और जुड़ाव बढ़ जाएगा। परिवार का महत्व तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कुछ पल तो हमें हमारी ज़िंदगी के हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी जैसे हर दिन छोटी होती जा रही है और हमारे परिवार के लिए ना हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो बैठे, मिले, बात करें और अहमियत बताएं कि आपकी हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है और हमारी आपके साथ होने का क्या मतलब है।
0: बिल्कुल, देखिए विनस बहन, पहले संयुक्त परिवार होते थे तो आपस में जो चचेरे ममेरे भाई होते थे वो उनकी उम्र लगभग समान होती थी, तो सब बातें अपनी साझा करते थे वो आपस में। लेकिन अभी देखा गया है कि लोग अकेले पड़ गए हैं, वो सोशल मीडिया पे ही अपने फ्रेंड्सों को ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे साझा कर रहे हैं हर चीज़ को। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें एक साथ बैठना चाहिए, जिससे कि अगर हमारे जीवन में किसी भी तरीके की कठिनाई है तो हम उसे साझा कर सकें और आपस में मतलब बातचीत करके उसका समाधान भी निकाला जा सकता है। और जब हम भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े रहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते रहें, जुड़े रहें और आपस में एक दूसरे की ताकत बने रहें। और जो हमारे पालतू पशु होते हैं,
1: और इसीलिए ना ये जो साल है 15 मई का जो हमने आज मनाया, इसका खास दिन परिवार के बीच प्यार, भरोसे और साथ को मजबूत करने का संदेश देता है। इस यही बात मैं कुल मिलाकर यही कहूँगी आप सबसे।
0: बिल्कुल, देखिए परिवार के साथ साथ अगर हमारे जो पालतू पशु होते हैं ना, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। और हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए तो हमारे जो पालतू पशु हैं परिवार भी हैं और साथ साथ आमदनी का भी जरिया हैं। और गर्मी का मौसम है, जिस तरह से हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है, वैसे ही बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पालतू पशुओं की भी किस तरीके से गर्मी के मौसम में देखभाल करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक बातचीत लेकर आए हैं, जिसका विषय है गर्मियों में पालतू पशुओं की देखभाल। और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रोहित माथुर, वैज्ञानिक पशुपालन विभाग नई दिल्ली से। तो सुनते हैं ये बातचीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी का मौसम और ये गर्मी सभी को लगती है, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे छोटा जानवर हो। यानी कि गर्मी सब पशु पक्षियों को भी लगती है, और ये गर्मी दूसरा जो प्रभाव डालती है वो सभी पे डालती है। आज हम बात करेंगे जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में, विशेषकर कुत्ता बिल्ली के बारे में। और विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर रोहित माथुर साहब, जो वैज्ञानिक हैं पशुपालन विभाग नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बड़े पशु तो झेल भी जाते हैं, लेकिन जो छोटे हैं, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, खरगोश हुआ, तो इस गर्मी का उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है?
1: जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमारे जो पालतू पशु है, जिनको हम कंपेनियन एनिमल्स कहते हैं, स्पेशली जो डॉग और कैट है, उनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है इन गर्मियों में।
0: जी,
1: जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन का, तो उनके खाने का, रखरखाव का, घुमाने का, उनका हमें खास ध्यान, विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
0: तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले खान पीन की बात कर लेते हैं, तो किस तरह का खान पीन उनका होना चाहिए?
1: खाने पीने में सर, जैसे कि हमें उसको पेय पदार्थ ज़्यादा दें, जैसे उसकी जो गर्मी के कारण जो पानी की कमी है शरीर में, या सॉल्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, वो पूरी हो जाए। या फिर जैसे आप खाना दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा तरल पदार्थ ज़्यादा रहे। घर का बना खाना और जो डॉग फीड पे भी जो रहते हैं अपने कंपेनियन एनिमल, डॉग या कैट फीड पे जो मार्केट से बना बनाया खाना आता है, मार्केट से बनाया बनाया खाना जो है वो थोड़ा सूखा होता है, तो वो पेट में जाके जाता है। अगर आपने इसे दाने के तरह होते हैं, अगर पेट में जाके वो फूल जाता है, तो उससे वो भी वो पानी की कमी कर देता है। तो पानी को, वो उन दानों को आप पानी में भिगो के या दही में भिगो के साथ में देंगे, तो पेट भी थोड़ा ठीक रहेगा, पानी कमी की भी पूर्ति आपकी होती रहेगी। और हमेशा एक लोगों की धारणा है कि भाई जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पपी होते हैं या कैट छोटी होती है, बच्चे जो होते हैं, उनको पानी नहीं देना, पर ऐसा नहीं है। पानी तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हमेशा पानी फ्रेश रहना चाहिए उनके लिए। दिन में उसको आप 2 या 3 बार चेंज करिए पानी को।
0: डॉक्टर साहब, तो जब आपने कहा कि भाई खान पीन की बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोग सुबह घुमाते हैं, बहुत से नहीं घुमाते, क्या घुमाने का भी कुछ फायदा होता है?
1: घुमाने का तो ये सर एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की एक एक मसल्स में टोन रहता है।
0: अच्छा।
1: ये बहुत जरूरी है, स्पेशली डॉग के लिए। डॉग ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक छोटे घर में ले लिया, बंद कर लिया उसको, तो बंद रहेगा, उसको तो भागने की, फ्री घूमने की, जब तक चलेगा फिरेगा नहीं, तो एक तो वजन बढ़ सकता है और 10 बीमारी और लग जाएंगी। अभी जैसे गर्मी का समय है, ये है कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग्स में धूप जैसे तेज हो उससे पहले, या लेट इवनिंग में उसको घुमाएं, क्योंकि बाहर फिर लू जैसे लग जाती है हमारे को, इनको भी ऐसा है, इससे बॉडी का तापमान बढ़ जाता है काफी। फिर तापमान कभी कभी किसी किसी में तो 106-107 डिग्री भी पहुंच जाता है, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है, निवेदन है सभी श्रोताओं से मेरे कि भाई बहुत अर्ली मॉर्निंग ठंडक के समय घुमाएं, सुबह या फिर लेट नाइट घुमाएं अपने डॉग को।
0: डॉक्टर साहब, मैंने देखा है बहुत सारे सुबह सुबह अपने डॉग को आते हैं, और लेकिन वो जब पार्क में उनको खोल देते हैं तो बड़ा आनंद महसूस करके कलामुंडी मारते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी आनंद आ रहा है, तभी इसलिए
1: हाँ, आनंद आ रहा है, फ्री हो गए एकदम अपने भाग दौड़ लो, तो इसलिए है कि ठंड के समय थोड़ा ठंडी होते हैं सुबह सुबह, तभी उसी टाइम में लेके जाए, मतलब 7-7:30 से पहले ही ले जाए तो ज्यादा ठीक है, फिर धूप थोड़ी तेज हो जाती है। दूसरा ये कि जैसे घूम के आए गर्मी में, तो तुरंत पानी ना पिलाएं, आधा घंटा थोड़ा रुक के फिर उसको पानी दें, और ठंडा पानी बिल्कुल ना दे। नॉर्मल जैसे मटके का पानी हो गया या हल्का ठंडा पानी हो गया तो ठीक है, फ्रिज का एकदम ठंडा चिल्ड पानी ना दे, उससे मांसपेशियां और हड्डियों को भी नुकसान होता है।
0: और डॉक्टर साहब, अब गर्मी का मौसम है, उसमें सभी नहाने का सबको आनंद आता है, राहत भी मिलती है,
1: जी जी,
0: तो क्या इनको भी नहलाना जरूरी है?
1: नहलाना जरूरी तो है, पर इतना भी बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आप नहला रहे, बहुत लंबे समय के बाद ही नहलाना चाहिए, कम से कम 15 या 20 दिन बाद एक बार आप नहला लो।
0: अच्छा।
1: बिल्लियों में इतनी जरूरत नहीं है, बिल्लियों का तो आप 3-3 महीने भी निकल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बिल्लियां सारे टाइम मोस्टली घर के अंदर ही रहती है,
0: घर के अंदर रहती है,
1: बाहर जाने में उनकी कोई गंदगी हो रही है, पैर गंदे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉग तो चलो आपको जरूरी है कि उसको सुबह शाम आपने घुमाना है, तो पैर भी गंदे हो रहे हैं और डॉग से मिल रहा है, कहीं घास में लौट रहा है, मिट्टी में लौट रहा है, तो 15 दिन या 20 दिन में एक बार नहलाना जरूरी है। बहुत ज्यादा आप नहलाओगे तो स्किन की, त्वचा की बहुत सारी बीमारियां वो पकड़ लेगा।
0: और कई बार डॉक्टर साहब देखा है कि जो हमारे कुत्ते हैं उनको चीचड़ी टाइप के हो जाता है।
1: हाँ, गर्मी में स्पेशली परजीवी जो है, चीचड़ जो है परजीवी, ये डॉग का खून चूसते हैं और कई बीमारियां छोड़ देते हैं, जिनका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि इस सीजन में स्पेशली गर्मियों में और आती हुई जो बारिश है, बारिश का टाइम आएगा तब इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो रोज अपने डॉग को या कैट को अपने अच्छे से वो चेक करें कि कोई टिक तो नहीं है, चीचड़ जो है वो नहीं है, उसका आप खास ध्यान रखें।
0: डॉक्टर साहब, हमने देखा बहुत सारे कुत्ते के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं,
1: जी जी,
0: तो ऐसे में चीचड़ी को ढूंढे कैसे, या इसके लिए कोई टीका है, या किस तरह उसका उपचार करें?
1: हाँ, कई सारी दवाइयां हैं, कॉलर है गले में पहनाने का जो दवाई छोड़ता है, और टीका भी आता है उसका कि आप उस पर लगाए, 3 महीने 6 महीने काम करता है। तो वो जरूरी है, वो मैनेजमेंट फिर आप अपने जो नजदीकी अपना पशु चिकित्सक है उनके पास जाना पड़ेगा।
0: इसके अलावा डॉक्टर साहब, कोई गर्मी से विशेष कोई अलग से कोई बीमारी आ जाती है, मानो ज्यादा गर्मी लग भी गई, मानो घर में खुला रह गया और खूब सारे दिन घूमता रहा, तो किस तरह की बीमारी आ जाती है, तो उसका उपचार किस तरह किया जाए?
1: हाँ, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, कभी किसी किसी का 105 के पार हो जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 से 102.5 तक रहता है, इससे ऊपर आप मान लीजिए कि 103 पार हो गया तो आप समझो कि बुखार है आपके, या फिर वो गर्मी से त्रस्त है। तो उस केस में हम जैसे सर पे मेन तो क्या है कि दौरा भी पड़ जाता है, इसमें दौरा पड़ जाता है या नाक से जैसे नकसीर आ जाती है ना, उस तरह का खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में इसको ठंडा रखना है, जैसे एसी में रखा या सर पे हम बर्फ लगाएं उसके। अगर आप प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाए तो आप घर पे ये कर सकते हो, सर पे उसके बर्फ लगाए जिससे कि जो नाक से खून बहना है उसका वो कम से कम बंद हो और ठंडी जगह हो, वो ये ध्यान रखेगा।
0: यानी कि उनका तापक्रम बढ़ जाता है। आपने बीपी का जिक्र किया डॉक्टर साहब, क्या ये बीपी उनको बढ़ता है?
1: बीपी हमारे जैसे हमें भी शिकायत है बीपी की, उनको भी हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, जब किसी को बीपी हो गया और किसी ने पहचान करके मालूम भी कर लिया, तो इसके लिए दवाएं होती हैं?
1: नहीं, दवाएं होती है बिल्कुल, जैसे हमारे लिए इनके लिए भी सब दवाइयां उपलब्ध है। जिसको है फिर वो तो डायग्नोस होने के बाद अपने जो भी पशु चिकित्सक है वो आपको ज्ञान बताएंगे उसके बारे में।
0: यानी ठीक इंसान की तरह जो बीमारी होती है वो छोटे जानवर में भी होती है?
1: बिल्कुल, वैसे के वैसे ही है।
0: और डॉक्टर साहब, कई बार लोग कुत्ते इनसे डरते भी हैं, अक्सर किसी को वैसे काट लेते हैं, तो डॉक्टर साहब काटने के कितने बाद टीके लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक घातक बीमारी भी हो जाती है?
1: हाँ, रेबीज जो है घातक बीमारी है। पूरी सरकार और सब जैसे भी डिपार्टमेंट है, हेल्थ का है, पशु चिकित्सा डिपार्टमेंट है, सब है, सब ये अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। मिशन भी है कि 2030 तक रेबीज फ्री इंडिया हो जाए। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि अगर मान लो आपको, हमें ह्यूमन को किसी डॉग ने काट लिया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर हमें टीकाकरण कराना होता है। तो उसमें आप नजदीकी जो भी आपका चिकित्सालय है वहाँ पे आप जा सकते हैं, जो डॉक्टरी परामर्श से अपना एंटी रेबीज भी लगता है, उसमें अगर बाइट ज्यादा है तो उस जगह जहाँ पे काटा है वहाँ पे सीरम का इंजेक्शन लगता है और टेटनस का इंजेक्शन लगता है। ये तो है ही, अगर डॉग को काट ले तो उसका भी एक अलग कोर्स होता है।
0: अच्छा।
1: उसमें भी एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन लगता है। जैसे आज काटा तो 0 डे होता है, 0, 3, 5, 7 ऐसे 4 या 5 टीके लगते हैं।
0: और डॉक्टर साहब, कई बार पहचान नहीं होती है कि कई बार मानो कुत्ता पागल हो गया
1: जी,
0: और कैसे पहचान करें कि भाई कुत्ता पागल है, इसे बचें थोड़ा सा, नहीं तो काटता है?
1: नहीं, दो तरह के होते हैं, एक तो ये पागलपन में जो काटता है सबको, दूसरा है वो एकदम शांत बैठा रहेगा। दो तरह के रेबीज के दो तरह के लक्षण होते, तो वो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है आम आदमी के लिए। बट ये है कि आप जो नजदीकी चिकित्सालय हो गया, जो पशु चिकित्सालय या फिर अपना जो म्यूनिसिपल बॉडी है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं कि उसको वहाँ से पिक कर दिया जाए, या कोई एनजीओ जो एरिया में काम करती हो
0: जी,
1: वो उसको ले जाए वहाँ पे, तो प्रॉपर उसका फिर उपचार हो।
0: डॉक्टर साहब, जो पालतू कुत्ते बिल्ली हैं उनकी देखभाल तो घर वाले कर ही रहे हैं, लेकिन जो ऐसे जानवर हैं जो बाहर घूम रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, तो उनको किस तरह उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए?
1: जो बाहर स्ट्रीट पे कैट या डॉग घूम रहे हैं उनका तो ऐसा है कि एनजीओज है, एनिमल लवर्स हैं, और सरकार जो है जिनके अस्पताल है अपने, दिल्ली सरकार के हो गए या फिर एनडीएमसी, जो भी सिविक बॉडीज हैं अपने, वो एनजीओज की हेल्प के साथ इन आवारा कुत्तों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे इनका टीकाकरण, रेबीज से बचाव का टीकाकरण की मुहिम है, एनजीओ के साथ मिलके या खुद जो है अपना पशु चिकित्सालय वाले जो है, जो सिविक बॉडीज हैं, वो खुद भी टीकाकरण सबके कर रहे हैं, जो एंटी रेबीज लगना जरूरी है। हर साल वो कोशिश करते हैं कि जितने भी डॉग उनकी लोकेलिटी में, उनके एरिया में है, स्टेप वाइज एरिया वाइज अप्रोच करके उनको टीकाकरण करा जाए। उसके अलावा भी अगर कोई और बीमारी से ग्रस्त है कोई डॉग, तो एनजीओ वाले उसको ले जाते हैं, ट्रीटमेंट करके छोड़ जाते हैं। या फिर जो एनिमल लवर्स हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में एनिमल लवर्स डॉग लेके आते हैं, 3 दिन 5 दिन जो भी दिन का ट्रीटमेंट होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, और वो फिर उसको ठीक होने के बाद हम फिर छोड़ देते हैं।
0: डॉक्टर साहब, गाँव में तो बड़े पशु भी साथ में रहते हैं, और कई बार कुत्ते जो है उनके साथ खेलते भी हैं, और कई बार एक दूसरे को काट भी लेते हैं, तो क्या उसका कोई नुकसान तो नहीं होता?
1: नुकसान सर ये है कि जो कुत्ते जो पाले हुए वो ऐसा तो के घर के अंदर रहते हैं, वो बाहर भी जाते हैं और डॉग से भी मिलते हैं, और बाकी आस पड़ोस के कुत्ते या फिर जंगली कुत्ते जो बाहर गलियों में रह रहे हैं उससे मिलते हैं, तो उनका आप कह नहीं सकते कोई रेबीज का वायरस कहीं से वो ले आए। ये जरूरी है, आपके घर में अगर कुत्ता पाला हुआ है आपने, बड़े पशु, तो आप अपने कुत्ते का टीकाकरण जरूर कराएं, जिससे कि आपके कुत्ते का, आपका और आपके पशु का भी, बड़े पशु का भी बचाव हो।
0: तो डॉक्टर साहब, टीकाकरण की जो बात कही है वो कितने दिन में, कितने महीने में लगाना चाहिए?
1: ये 3 महीने की उम्र से डॉग या कैट में शुरू हो जाता है। 3 महीने की उम्र से हम लगाना स्टार्ट करते हैं, 3 महीने पे लगाया, फिर वो उसके 1 महीने बाद उसका बूस्टर, फिर उसके बाद सालाना लगता है वो।
0: डॉक्टर साहब, ये तो रही बड़े जो हमारे कुत्ते बिल्ली हैं, खरगोश हैं, जो छोटे बच्चे हैं एक महीने के, डेढ़ महीने का, तो उनकी तो विशेष देखभाल करने की जरूरत है। उसमें किस तरह की देखभाल हमारे भाई करें?
1: हाँ, गर्मियों में सर जिनका तो खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों का तो टेम्परेचर बहुत जल्दी शूट कर जाता है और ये पानी की कमी सबसे ज्यादा इन बच्चों में ज्यादा मिलती है। बड़ा डॉग तो झेल जाता है, पर छोटे

0: बच्चों में जो नए आपके घर में आए हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा जल्दी हो जाती है। तो ये है कि खाना हमेशा ताज़ा दें उनको। अगर मान लीजिए खाना आपने परोसा है उनको तो आधे एक घंटे में अगर वो ना खाएं तो उसको हटा लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी पड़े पड़े खाने में जीवाणु ग्रो कर जाते हैं। तो वो ज़्यादा देर तक खाना रखना नहीं चाहिए, आपको हटा लेना चाहिए। पानी की जहाँ तक बात है, पानी आपने कम से कम दिन में 3 या 4 बार वो पानी बदलना है, ताज़ा पानी अवेलेबल रहे सारे टाइम उनके पास।
1: यानी कि पानी भी ऐसा ज्यादा ठंडा भी ना हो जो
0: हाँ, नॉर्मल
1: जिसका
0: टेम्परेचर का हो, आरओ का हो गया या फिर नल का हो गया, पर ये उसको आप चेंज करते रहिए हरदम, वही चलता रहे। एक वो डाल दिया आपने सुबह तो वही शाम भी चल रहा है, अगले दिन भी वो चल रहा है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें भी कोई गंदगी गिरी, कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपके डॉग या कैट के नुकसान करेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, उन छोटे बच्चों में भी कोई टीके लगाने की जरूरत है? कोई
0: हाँ,
1: बीमारी ऐसी आ जाती?
0: 1.5 महीने की उम्र से टीके चालू हो जाते हैं बिल्ली और कुत्ते दोनों के, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3 महीने पे जो मैंने बताया रेबीज का, वो टीकाकरण लगता है।
1: डॉक्टर रोहित माथुर जी, आपने सही बताया, जिस तरह एक हमारे छोटे बच्चे की देखभाल हम करते हैं
0: जी
1: ठीक उसी तरह आप अपने, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, या आपके खरगोश है, या और जो छोटे उनकी तो विशेषकर देखभाल इस गर्मी के मौसम में करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बहुत ही काम की जानकारी, गर्मियों में पालतू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए, और इसकी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रोहित माथुर, वैज्ञानिक और नई दिल्ली से, पशुपालन विकास से
3: विभाग से,
2: पशुपालन विभाग से नई दिल्ली से बोल रहे थे, और इनसे बातचीत कर रहे थे PS भाटी।
3: और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं मनोज गहलोत की आवाज़ में ये रागिनी।

अभी आप सुन रहे थे मनोज गहलोत की आवाज़ में ये रागनी, और हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, जो ये कि एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य है हर नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्वक दवा उपलब्ध कराना। और इसमें आपको दवाओं के अलावा प्रोटीन पाउडर और अन्य जो न्यूट्रिशन पाउडर और सामग्री हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जिस पर कि आपको सस्ती दवाएं मिलेंगी। और इसमें अगर आपने फार्मेसी, डॉक्टरी या मेडिकल प्रैक्टिशनर का कोर्स किया है तो इसके लिए आप भी इस केंद्र को खोल सकते हैं, जिसमें शर्त ये है कि आपके पास 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए, तब आप इसके कागजातों के लिए आवेदन कर सकते हैं और जन आरोग्य केंद्र खोलकर इस कल्याणकारी योजना का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं दिनेश गिरी की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो श्रोताओं, दिनेश गिरी के गाए हुए इस रागनी के साथ ही आज का ग्राम संसार कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ग्राम संसार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीएनएम 810 किलोहर्ट्स पर। 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये बातचीत पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही

0: में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विजन का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद के लिए तैयार है। श्री अराक्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरलम में आता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युईची शिमोगामी को 21-12, 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को देखिए,
1: राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, ताकि उनके जितने भी कृषि कार्य हैं उन्हें एक्सपर्ट से जानकारी मिल पाए और वो अपनी बुआई से लेकर कटाई तक के सभी सवालों का जवाब हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जान पाएँ। और अगर बात करें खरीफ फसलों की, जिसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये जो फसलें हैं इनकी तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इस समय खेत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम अपनी मिट्टी की जांच करवाएं और उसके आधार पर कौन कौन से पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी है, उसके अनुसार ही हम पोषक तत्वों का उपयोग करें, जिससे कि हमारी फसल बेहतर हो पाए और हमारा खर्चा भी कम लगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज एक हम खास बातचीत लेकर आए हैं, जिसका विषय है खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक, और इसमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, निदेशक विपणन इफको से। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहनों भाइयों, जिस तरह आप अपने फसलों में लगातार उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं और वो भी लगातार अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमारी फसलों के साथ साथ हमारी ज़मीन, हमारा पानी, हमारी हवा सब खराब हो रही है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं, ये जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं ज़्यादातर विदेशों से आते हैं और हमारा काफ़ी पैसा बाहर जाता है। फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, क्या फायदे हैं, आइए इन सब बातों की जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार जी, जो निदेशक हैं विपणन विभाग इफको में। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को बताएं कि संतुलित जो उर्वरक कैसे प्रयोग करें और उनका क्या फायदा है।
3: नमस्कार किसान भाइयों, संतुलित उर्वरक प्रयोग करने की शुरुआत हम सभी किसान भाइयों को पहले मिट्टी परीक्षण से करनी चाहिए, और जो कि समय अभी चल रहा है। अभी जिन खेतों में कोई फसल नहीं है वहाँ पे अभी आप धान की रुपाई करने का कार्यक्रम बना रहे होंगे, ऐसे खेतों में अभी मिट्टी की जांच संभव है। आप मिट्टी का नमूना ले लें और नमूना जो है अपने समीपवर्ती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लें। और मृदा नमूना लेने के लिए जो सावधानियाँ हैं वो 6-7 स्थानों से 6 इंच गहरी एक आयताकार एक खुदाई खुरपे से करें और उसकी दीवारों को खुरच करके अपने तसले में रख लें, किसी टोकरी में रख लें साफ, फिर ऐसे 6-7 जगह से इकट्ठा करें और फिर उसको एक जगह फैला करके खूब उसको मिलाएं और मिला के उसको 4 भाग करें, उसके 2 ले लें, 2 छोड़ दें और फिर करें इसी तरीके से। और जब लगभग आधा किलो मिट्टी बचे तो उसमें अपना नाम, खेत का नाम, पहचान और पता, अपना मोबाइल नंबर, ये सब नमूने में डाल करके इसको आप मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से उसकी जाँच करा लें। और जांच के अनुसार फिर अगर आप उर्वरकों का प्रयोग करोगे, उनकी मात्रा की जानकारी आपको सही अगर चाहिए तो उसी तरीके से आपको मिल पाएगी। अभी यह भी देखने में आया है कि जैसे जो संस्तुति मात्राएं आएँ उसमें भी हम आधा उर्वरक बचा सकते हैं, और जो हमारे पास इस समय एक निवेश हमारे पास है उनका प्रयोग करके। बहुत सारे किसान भाइयों ने मूंग उड़द की खेती की होगी, जिसको अभी खेत में मिला देंगे हरी खाद के रूप में। कुछ लोगों ने ढैंचे की खेती की होगी हरी खाद की, वो भी उसको खेत में मिलाएंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि हमारी खेती में जो पोषक तत्व हैं, जो उनकी उर्वरा शक्ति हमारी धरती माता की है, हरी खाद के प्रयोग से भी बढ़ती है। दूसरा, अगर हमने ऐसा नहीं किया है तो अभी देखिए हमारा जो केंद्रीय शोध संस्थान है ICR, उसकी तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम तकनीक विकसित की हुई हैं। उसमें एक तकनीक से एक बहुत ही छोटा सा एक बाटल में पाद आता है, जिसको हम लोग बहुत भारी मात्रा में बनाते हैं और किसान भाइयों को प्रयोग के लिए देते हैं। उसका नाम है बायोडिकम्पोजर। बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल ज़रूर करें किसान भाई। उसकी विधि मैं आपको बता देता हूँ। एक 200 लीटर का जो ड्रम है उसमें पानी भरें। पानी भरने के बाद जो उस छोटी सी एक CC है उसका जो भी पदार्थ है उसको उसमें डालें। 2-3 किलो गुड़ या राब या जिसको जेगरी बोलते हैं उसको आप उसमें डालें, और फिर ताज़ा पिसा हुआ बेसन अगर 2-1.5 किलो है उसको डाल दें, और खेत की मिट्टी जहाँ रसायनों का प्रयोग कम से कम हुआ हो, रसायन मुक्त हो तो अच्छा है, अगर पेड़ है तो उसके नीचे की थोड़ी सी

मिट्टी खोद लें ऊपर की तह हटा के, तो उसका दो मुट्ठा जो है आप उसमें डाल दें और उसको डंडे से चलाते रहें। फिर ये घोल बन के तैयार हो जाएगा और इस घोल का उपयोग जब जुताई के पहले जो सिंचाई की जाती है उस समय आप कर लेंगे तो आप देखना आपके जो खेत है, एक एकड़ का खेत जिसका हम नमूना ले रहे हैं, उसमें कम से कम 15 से 20 किलो फसल और शेषों को

आपके पौधे को बढ़वार के लिए अच्छा होगा, बढ़वार भी अच्छी होगी और साथ में भी जमीन जो है थोड़ा सा अच्छी होनी शुरू होगी, धरती माता के लिए एक अच्छी जैविक खुराक उपलब्ध होगी और जो वहाँ पे शेष पड़े थे वो भी एक तरीके से पोषक तत्व में परिवर्तित हो जाएंगे। उसके बाद में एक काम और करना चाहिए, देखिए जब खेत की तैयारी करते हैं तो जुताई करेंगे, जुताई करने के बाद में फिर उसमें आप लेवा लगाएंगे, इस बीच में थोड़ा समय होगा, इसके लिए थोड़ा सा पहले से तैयारी कर लो। हमारे पास बायो फर्टिलाइज़र आते हैं, बायो फर्टिलाइज़र आता है और माइक्रोराइजा भी आता है, तो बायो फर्टिलाइज़र का एक काम अलग है, माइक्रोराइजा भी एक तरीके से जैविक है, माइक्रोबियल फर्टिलाइज़र ही है, उसको दोनों को थोड़ा थोड़ा जरूर लीजिए। भाई देखिए अभी चूँकि हमारे भूमि में, हमारी धरती माँ में जीवाश्म की मात्रा कम हो गई है, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन आप सुनते होंगे, लोग बताते हैं कम हो गया है, ऑर्गेनिक कार्बन यानी उसकी धरती माँ की जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसको हमें पूरा करने का काम करना है, तो बायो फर्टिलाइज़र ये काम करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र को दो तरीके से ज़रूर इस्तेमाल करिए, धान की खेती में करना है, कैसे करेंगे, मान लो 1 लीटर आप ले लीजिए NPK कंसोर्टिया, उसमें तीनों होता है, नाइट्रोजन वाला भी होता है, फास्फोरस वाला भी होता है, पोटास वाला होता है। अब आप आधा लीटर जो है करीब 60-70 किलो सड़े गोबर की खाद में इसको मिला के छायादार स्थान पे 6-7 दिन तक रखिए और मिलाते रहिए बीच में, और फिर आपके पास अगर और जैविक खाद है, ऑर्गेनिक मैन्योर है आपके पास, जैसे मानो चाहे कूड़े करकट की हो, चाहे गोबर की हो, चाहे किसी फसल अवशेष की हो, कुछ भी हो, तो ये 60 किलो उस खाद में भी मिला करके अगर रख देंगे 4-5-6 दिन के लिए छायादार स्थान पे, तो एक तरीके से पूरा ये जो जैविक खाद है एक तरीके से उसमें अतिरिक्त ताकत भर जाएगी। ताकत कैसे भरेगी, बैक्टीरिया उसमें बनने लगेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने बैक्टीरिया होंगे उतनी हमारी खेत की जीवनी शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे, तो उसको फिर हम अपने 1 एकड़ खेत में उसको डालते हैं। फिर एक हमारा केंद्रीय शोध संस्थान है CSMCRI, उसका एक हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जिसको बायोस्टूमुलेंट आप लोग कहते हो, वो सागरिका के नाम से आता है और एक आता है तरल भी आता है, तो ग्रेन्यूल वाले को सामान्य खेतों में जैसे धान बोएंगे, गेहूं बोएंगे, मक्का बोएंगे, बाजरा बोएंगे, ज्वार बोएंगे, उनमें 10 किलो उसको डाल दीजिए। उसके बाद में धान की जब आपने नर्सरी लगा दी होगी या नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे होंगे बोने की, तो उसको आप 24 घंटे तक या 12 घंटे तक भिगो के रखते हैं, उस समय उसमें नैनो DAP जो हमारा आता है तरल, उससे उसका ट्रीटमेंट करिए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करके उसको देखेंगे और उसमें थोड़ा बायो फर्टिलाइज़र भी अगर डाल देंगे तो भी अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है, जब हमने भूमि शोधन कर दिया बायो फर्टिलाइज़र से, जब वो शेष हमारा 1 लीटर में बचा हुआ है, उससे जड़ शोधन जरूर करना है। जड़ शोधन से मतलब मेरा क्या है, एक छोटा सा होज या किसी तरीके का उसमें नैनो DAP का मिश्रण डाल देंगे बना करके, और उसमें जड़ें अपनी डुबोएंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर छायादार स्थान में रख के खेत में रोपाई कर देंगे। इससे क्या होता है, नैनो DAP से जब जड़ों का शोधन करेंगे या किसी बीज का शोधन करेंगे या किसी कंद का शोधन करेंगे, तो नैनो DAP के सूक्ष्म कण कुछ बीज के अंदर, कंद के अंदर, जड़ों के आसपास चिपक जाएंगे, कुछ प्रवेश कर जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन और फास्फोरस की ताकत जो है, जो पोषक तत्व है, वो अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होने के समय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी। जबकि आप रासायनिक खाद का जब प्रयोग करते हो तो जब अंकुरण हो जाता है तब पोषक तत्व मिलता है, इसमें अंकुरण की प्रक्रिया को शुरू करने के समय से ही पोषक तत्व उपलब्ध होने लगता है। फिर DAP या जितनी कोई भी खाद डालते हैं फास्फेटिक, उसकी मात्रा को आप आधा कर दीजिए, और यूरिया अगर बेसल ड्रेसिंग में डालते हैं, पहले तो धान में कोई डालता नहीं है, अगर डालते हैं तो उसकी मात्रा को भी आधा कर दी। फिर जब रोपाई कर देंगे, ये अवस्था 25-30 दिन में आएगी, जो खूब धान उसका जो टिलरिंग शुरू होगी थोड़े दिनों बाद 20-21 दिन में, तब एक बार 1 एकड़ में आप 40 किलो या 45 किलो एक बोरी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दीजिए, फिर खाद नहीं डालनी है, आधी ही डालनी है, और फिर उसके 8-10 दिन के बाद जब खूब किल्ले निकल आएंगे, खेत में नीचे से भी ताकत मिलेगी और साथ में फिर ऊपर से आपको नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका का स्प्रे कर दीजिए मिला के एक एक बोतल, और फिर यही स्प्रे 25-30 दिन के बाद फिर कर दीजिए धान के खेत में, बाकी फिर खाद डालने की जरूरत है नहीं। आप देखेंगे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आप जो भी चीज पैदा करने

0: जा रहे हैं, चाहे धान पैदा करने जा रहे हैं, चाहे ज्वार पैदा करने जा रहे हैं, इन सभी जो धान्य वाली फसलें हैं इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, उनकी क्वालिटी, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अच्छी होगी। मूंगफली बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होती है, कपास बहुत बड़े क्षेत्रफल पर होता है, बहुत सारी फसलें खरीफ में होती हैं, सोयाबीन होता है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो फसलें खरीफ की हैं सभी में आपको इन तकनीक का इस्तेमाल करना है। बायो डिकम्पोजर, बायो फर्टिलाइजर, माइकोराइजा का भी मात्रा जब आप बुआई कर रहे हैं उसी समय 2 से 5 किलो माइकोराइजा 1 एकड़ में आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, पोषक तत्वों का गतिशीलता बढ़ जाएगी। मानो कभी हम खाद डालते हैं तो कहीं पर गिरता है, पौधे की जड़ कहीं होती है, तो वो उसकी गतिशीलता को बढ़ाता है और बहुत सारे तरीके से उसको सुरक्षा और उसकी वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। तो ये जितने भी उत्पाद हमने आपको बताए हैं ये बहुत ही सुलभ हैं और सभी जो है केंद्रीय शोध संस्थानों के विज्ञान के तकनीक के आधार पर बनाए गए हैं। इनको अगर किसान भाई डालेंगे तो निश्चित रूप से खाद की मात्रा को हम आधा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, फसल चक्र का भी किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। आम तौर पे किसान क्या करता है, जहाँ धान गेहूँ कर रहा है वहाँ धान गेहूँ कर रहा है, चाहे ऊपर वाली ज़मीन है तो भी धान बोता है, और हम कह रहे हैं जहाँ निचली ज़मीनें हैं जहाँ पानी भरता है वहाँ धान बोना तो मजबूरी है, जहाँ ऊंची ज़मीनें हैं जहाँ पे पानी निकल जाता है हम अगर 6 महीने वाला अरहर लगा लें उसके बाद गेहूँ कर लें। अब अरहर अगर लगा लेंगे तो अरहर का उत्पादन धान जितना तो नहीं होगा, लेकिन अरहर की कीमत कितनी मिलेगी किसान को और ज़मीन कितनी मजबूत हो जाएगी। अरहर की किस्में आ गई हैं जो 5 महीने में तैयार हो जाती हैं, जो लोग जून में अभी लगा देंगे या थोड़ा और पहले लगा देंगे, किसी तरीके से पानी वानी देते रहेंगे, बड़े आराम से अक्टूबर के महीने में अरहर कट जाएगी। फिर रबी की जो फसल आप करेंगे वो बहुत ही बढ़िया होगी। अगर हम बायो डिकम्पोजर, बायो फर्टिलाइजर और जो हमने चीज़ें बताई हैं नैनो तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करिए, ये देश में किसानों के हित के लिए बनाई गई हैं। इसका विशेष लाभ क्या होता है कि इससे प्रदूषण मुक्त खेती संभव है। अभी देखिए क्या हो रहा है, पंजाब का किसान हो चाहे यूपी का किसान हो चाहे हरियाणा किसान हो, शिमला मिर्च खेती करेगा कम से कम 10 बोरी यूरिया डालता है, गोभी में लोग 12-14 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं कई बार में। अब आप सोचते हैं क्या हमारी जमीन का क्या हाल होगा, जमीन भी तो एक पूरी सृष्टि का आधार है, सभी के लिए भोज्य पदार्थ अगर कहीं से उपलब्ध होते हैं तो जमीन से होते हैं, और कुछ भी होता है तो जमीन के बिना कुछ नहीं होता, कृषि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उस जमीन के स्वास्थ्य के बारे में आप सोचते हैं, फिर जमीन का क्या हाल होता है, जब यूरिया 10 बोरी 12 बोरी 1 एकड़ में डाला तो जमीन कमजोर होती है और उस यूरिया से बहने वाला नाइट्रेट जल में जाता है, जल को प्रदूषित करता है, जमीन में रहता है तो जमीन को प्रदूषित करता है। और आपको शायद ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि ज्यादा अगर नत्रजन का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, दूसरे पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो भी प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है और जमीन का वातावरण भी खराब हो जाता है। यानी जल भी खराब पीने वाला, जमीन भी खराब, और हवा में निकलती जहरीली गैसें तो उससे हमारी हवा भी खराब, तीन ये तो प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित होते हैं। अब चौथा मालूम आप क्या सोचते हैं किसान भाइयों, जो आप 12 बोरी या 10 बोरी यूरिया और तमाम रसायनों का अंधाधुंध स्प्रे करके सब्जी पैदा करते हो तो सब्जी बहुत जहरीली होती है, उसमें उन रसायनों के नाइट्रेट के अवशेष सब्जियों में पहुंच जाते हैं। आप सोचो उस सब्जी को आप भी खाते होंगे, जानवरों में आप देखिए, आप वही चारा वही अवशेष प्रयोग में लाते हैं जानवर खाते हैं, उनके दूध में उसके अवशेष आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इतना ध्यान देने की ज़रूरत है, सब्जियों में ऐसे रसायन हम लोग प्रयोग कर लेते हैं जो सब्जियों में प्रयोग नहीं करने चाहिए, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फसल चक्र का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किसी तरीके से अपने फसल चक्र में एक दलहनी फसल को फिट करना है। और एक नकदी फसल कोई ले लीजिए, अगर जहाँ कोई नकदी फसल हो एक दलहनी फसल का समावेश हो जाए तो आपका सोने में सुहागा हो जाएगा। और आपको बहुत अपनी प्लानिंग करके, किसान भाइयों से एक मेरी और प्रार्थना है कि हम खेती का कोई बजट नहीं बनाते, कोई पहले प्लान नहीं करते, कई बार चीज़ें बेहिसाब पैदा हो जाती हैं, उनके कोई कीमत नहीं मिलती और कई बार बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो हमको अपने एक संतुलित रूप से अपनी सुनियोजित योजना के अंतर्गत कृषि की जब तक हम लोग करना शुरू नहीं करेंगे तब ये दिक्कतें बनी रहेंगी। और हमें विश्वास है किसान भाई अगर मेरी इस बात को मानेंगे, थोड़े से खेत पे एक बार करके देख लीजिए, आधा एकड़, चौथाई एकड़, एक एकड़ जैसी आपकी क्षमता हो एक बार करेंगे तो आप निश्चित रूप से इसको करने लगेंगे। दूसरी एक बात और बता दूं, धान की फसल में और भी फसलों में जिंक की कमी होती है। नैनो जिंक बहुत ही फायदेमंद है, बहुत अच्छा प्रभाव है। नैनो जिंक की अगर एक सीसी को एक एकड़ में आप 100 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर देंगे तो जिंक सल्फेट के प्रयोग से आप बच जाएंगे। अब जिंक सल्फेट सोचते हैं हम 10 किलो डाल रहे हैं एकड़ में, या 33% वाला 6 किलो डाल रहे हैं, काम कितना आता है, 2-5% ही जिंक उससे मिलेगा पोषक तत्व। नैनो कापर हम लेके आए हैं, अगर डालेंगे तो कापर पोषक तत्व की पूर्ति होगी और साथ में कापर एक तरीके से उसमें फंगस से लगने वाली बीमारियों से भी पौधे को बचाएगा। तो ये जितने भी नैनो तकनीक आधारित विभिन्न संस्थाएं हमारी उत्पाद लाई हैं देश में और सब भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत हैं, उनका उपयोग करना हम सभी का दायित्व तो बनता है। इसको एक बार करके हम लोग जरूर देखें। मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है, आप सभी ने मुझे सुना, आपका धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया और भाई इस तरह आप खेती करेंगे तो खेती से आमदनी भी होगी और जो आपका उत्पाद होगा वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरा होता है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे बातचीत खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, इसमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर योगेंद्र कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी। और बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से जो नैनो तकनीक है उसका प्रयोग कीजिए और जो सब्जियां हैं उसमें ज़्यादा रासायनिकों का प्रयोग मत कीजिए क्योंकि हमारी सेहत के लिए वो सही नहीं है। और अगर सेहत की बात करें तो हम बात करते हैं हमेशा कि गर्मी का मौसम है, गर्मी में पानी की कमी हमारे शरीर को नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे फल और सब्जियों का आप चयन कीजिए जो कि पानी से भरपूर हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तुरई है, घिया है, बेल वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और पचाने में भी बड़ी आसान होती हैं। ऐसी सब्जियों को आप खाइए, ऐसे फलों का चयन कीजिए जिसमें भी पानी है। इसके साथ साथ पेय पदार्थ भी बहुत हैं जो हमें हमारे शरीर को ठंडक देते हैं, जैसे नींबू पानी है, नारियल पानी है, बेल का शरबत है, लस्सी है, तो जो भी ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखती हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। और फ्रिज का पानी ना पिए, बल्कि पानी जो है वो आप मटके का पीजिए क्योंकि वो बहुत अधिक ज़्यादा ठंडा नहीं होता। फ्रिज में कई बार होता है बहुत अधिक ठंडा पानी हो जाता है और उससे गला ख़राब हो जाता है और हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में आप खाने पीने का पूरा ध्यान रखें।
3: बिल्कुल, हमें जो मौसमी फल और सब्ज़ी ये तो ज़रूर लेना ही चाहिए। और आजकल पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा से लिक्विड फॉर्म में आप लीजिए, नारियल पानी पिए, शिकंजी ले लीजिए, छाछ बना के ले सकते हैं। एंड कुछ लोग जैसे अब सब्ज़ियाँ नहीं पसंद करते तो उनका सूप बना लीजिए, उससे भी आपकी ना बॉडी के अंदर हाइड्रेशन रहेगी हमेशा। तो मौसमी फल सब्ज़ी आसानी से मिल भी जाते हैं और उनकी जो कीमतें होती वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फाइबर और लिक्विड बेस्ड चीज़ें आप ज़्यादा गर्मियों में लें।
2: बिल्कुल। और अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं दिनेश कुमार और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये उपदेश।

0: अभी आप सुन रहे थे दिनेश कुमार और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में ये रागनी। और आपको याद दिला दें कि कल है शनिवार, 6:30 पर आप सुन पाएंगे फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार, जिसमें आप अपनी फरमाइशों से हमें अवगत कराते हैं। तो 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलिए। इसके साथ ही आज का कृषि जगत यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम राम। कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

कृषि जगत, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब गजल और कव्वाली के कार्यक्रम में सुनते हैं ये कव्वाली।

0: इसी के साथ कव्वाली का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 30 जून से शुरू होगा और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा आज से शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों और आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। एक रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि

0: पहल कर्मचारियों के परिवारों को आत्मनिर्भर बनने, सम्मानपूर्वक जीवन जीने और भविष्य को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का सशक्त संबल प्रदान करेगी। साथ ही श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को लिबरलाइज्ड मेडिकल हेल्थ स्कीम के तहत मेडिकल हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए, जिनके माध्यम से उन्हें और उनके परिवारजनों को सूचीबद्ध अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनडीएमसी परिवार का हिस्सा बने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा, उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्रीलंका की महिला और बाल कल्याण मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रीलंका के लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश गहरे सभ्यतागत बंधनों, लोकतांत्रिक मूल्यों और अटूट जनसंबंधों से जुड़े हुए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये दौरा भारत और श्रीलंका के बीच मित्रता को और अधिक मजबूत करेगा और महिला नेतृत्व के माध्यम से गहन सहयोग को प्रेरित करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा।
1: इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। प्रश्न पत्रों तक उनकी पहुंच थी। एजेंसी ने पिछले 24 घंटे में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। सीबीआई ने बताया कि कल गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड के लिए पुणे की अदालत में पेश किया जा रहा है और उन्हें दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से हैं। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद आज डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सूद ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं है बल्कि एक विकसित होता शिक्षा केंद्र है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। श्री सूद ने कहा कि शिक्षा अवसरों और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि ज्ञान से भविष्य की ओर और भविष्य से राष्ट्र निर्माण की ओर, यही प्रगतिशील नई दिल्ली की पहचान है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत बैठक कर उनके स्कूलों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विद्यालय प्रमुखों से कहा कि वे वर्चुअल बैठक की कार्यप्रणाली की आदत विकसित करें। उन्होंने वर्चुअल बैठकों के संचालन के लिए प्रोटोकॉल और एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने सभी विद्यालयों को 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस पर विशेष कार्य करने का भी निर्देश दिया। साथ ही श्री सूद ने बताया कि दिल्ली सरकार सभी सरकारी विद्यालयों में AI आधारित लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दे रही है।
3: सरकार ने अपनी नीति को थोड़ा बदला है। बहुत बड़े विज्ञापन न देकर बच्चों के इनोवेशन के लिए पैसा खर्च करने का काम सरकार ने किया है। एनईपी 2020 में पर्सनलाइज्ड लर्निंग का जो एक आग्रह किया गया है, उसके संदर्भ में इन डिजिटल टूल्स का बेस्ट उपयोग करें।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। ये उपाय पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक दबावों को देखते हुए नागरिकों और संस्थानों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक खर्च से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के कुछ दिनों बाद किए गए हैं। दिल्ली के कला, संस्कृति और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा आज ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने के लिए ईवी कार चलाकर दिल्ली सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में मेट्रो मंडे, दो वर्क फ्रॉम होम और न्यूनतम गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
4: सरकार ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है मेट्रो मंडे और दो वर्क फ्रॉम होम, न्यूनतम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, और पूरी सरकार इसका पालन कर रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पूरी तरह से अगर आप देखें तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियां कम कर रहे हैं लोग वर्क फ्रॉम होम। मेरे पास ये जिम्मेदारी है कि मैं दिल्ली के प्रतिष्ठानों से, व्यापारियों से बात करूं, और ज्यादातर लोग अपने संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम को लागू कर रहे हैं।
1: श्री मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने परामर्श भी जारी किया है। दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी सरकारी संसाधनों के उपयोग, ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में सामूहिक जिम्मेदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल वृद्धि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक संतुलित कदम है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये बस सेवा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीएमआरसी को दो अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं। 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली ये बसें सुरक्षा, GPS आधारित ट्रैकिंग और CCTV कैमरे से लैस हैं। इस बस का किराया 10 से 15 रुपए के बीच रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, UPI और नकद भुगतान विकल्पों के माध्यम से यात्री टिकट खरीद सकते हैं। यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक बस सेवा संचालित की जाएगी। यह बस सेवा कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड, बड़ौदा हाउस, राष्ट्रीय स्टेडियम, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, इंडिया गेट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन सहित महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों और स्थलों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का अभियान 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह पाए। विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण और सामग्री मुद्रण का कार्य 20 जून से 29 जून 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO द्वारा 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आयोग ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में कुल 1,48,23,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में प्रतीक्षा कक्ष का उद्घाटन भी किया। श्री वाही ने अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने अस्पताल के पार्क में वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए तथा वहां रखे कूलर को साफ करके जनता की सुविधा के लिए इस्तेमाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से अस्पताल में 100 बिस्तरों की गहन चिकित्सा इकाई के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली नगर निगम के आयु

संजीव खिरवार ने आज ऑपरेशन मिशन के अंतर्गत आगामी मॉनसून सीजन के चलते अंतर विभागीय बैठक की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में दिल्ली में जलभराव और नालों की सिल्ट सफाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान आयुक्त ने बताया कि एमसीडी ने मॉनसून से पहले अपने अधिकार क्षेत्र के नालों की लगभग 65% सिल्ट सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग 4 फीट और उससे अधिक चौड़ाई वाले 1375 नालों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जो दिल्ली के कुल बड़े नालों का लगभग 50% हिस्सा है। श्री खिरवार ने कहा कि मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या को रोकने के लिए सभी विभागों और एजेंसियों को आपसी समन्वय और बेहतर समझ के साथ काम करना होगा। बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने देश के नागरिकों से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति मित्र बनकर नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। विभाग के सचिव सुधांश पंत ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि नशा मुक्त भारत बनाने का राष्ट्रीय संकल्प है। विभाग ने विश्वास व्यक्त किया कि आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी नशे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान को अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी। भारत का माल और सेवा का कुल निर्यात अप्रैल 2026 में 80 अरब 80 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष अप्रैल की तुलना में 13.6% अधिक है। वाणिज्य विभाग ने कहा है कि निर्यात में ये मजबूत प्रदर्शन व्यापारिक गति की स्थिरता, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती वैश्विक मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। देश के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अप्रैल 2026 में 34.66% बढ़कर 9 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वर्टिस फाउंडेशन के सहयोग से प्रोजेक्ट सक्षम के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका के अवसरों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाकर सशक्त बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त करना है। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज दिनभर धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल आसमान साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, लोकतांत्रिक सफर में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके प्रति संवेदनशील। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR 30 जून से शुरू होगा और दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा आज से शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं नाटक।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में प्रस्तुत है विशेष नाटक हवा में गूंजते शब्द 90 साल की यात्रा। आलेख समी, प्रस्तुति काजल सूरी।

ये आकाशवाणी है। हम मना रहे हैं 90 वर्षों का वो सफर जहां आवाजों ने इतिहास लिखा। आइए चलते हैं उस दौर में जब शब्द हवा

0: में उड़कर दिलों तक पहुंचते थे।
1: भारत में रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत 1927 के दशक में हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की स्थापना हुई। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र जल्द ही एक प्रमुख प्रसारण केंद्र बन गया, जहां से हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होने लगे।
0: आकाशवाणी दिल्ली के रेडियो नाटकों का इतिहास भारतीय प्रसारण और सांस्कृतिक विकास की एक महत्वपूर्ण धारा को दर्शाता है। ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि समाज, भाषा और साहित्य को जोड़ने वाला सशक्त उपकरण भी बना। 1920 के दशक में रेडियो के प्रसार के साथ ही नाटक का प्रसारण शुरू हुआ। 1930 से 40 के दशक में ये मनोरंजन का प्रमुख माध्यम बन गया।
2: एक

0: आकाशवाणी दिल्ली के रेडियो नाटकों की यात्रा में आपका स्वागत है।
1: ये आवाजों की दुनिया है जहां मंच दिखाई नहीं देता लेकिन कहानी जीवित होती है।
0: ये सिर्फ एक संस्था की कहानी नहीं, ये आवाजों की एक जीवित परंपरा है।
2: मेरा नाम सुचित्रा गुप्ता है। मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक संस्थान नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार रहा है जिसने मुझे बचपन से संजोया, संवारा और पहचान दी। मैंने यहाँ अपनी शुरुआत की एक बाल कलाकार के रूप में। इन 65 वर्षों में मैंने न जाने कितने नाटक किए और सौभाग्य से देश के श्रेष्ठ निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला। हर निर्देशक की अपनी शैली थी, अपनी दृष्टि थी और हर नाटक अपने आप में एक नई सीख लेकर आता रहा। हर किरदार, हर संवाद, हर रिकॉर्डिंग मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं।
1: आकाशवाणी दिल्ली के रेडियो नाटक, जहां शब्दों ने मंच नहीं हवा को अपना घर बनाया।
0: यहीं से शुरू हुआ रेडियो नाटक का सुनहरा सफर।
3: बंदी, ओ बंदी, बंदी,
4: क्या है, सोने दो।
3: मुक्त होना चाहते हो?
4: अभी नहीं, नींद खुलने पर। जाते रहो।
3: सुनो,
4: हाँ,
3: फिर अवसर नहीं मिलेगा। आंधी की संभावना है और तारे भी छिप गए हैं।
4: तो क्या तुम भी बंदी हो?
3: धीरे बोलो, आज ही मेरे बंधन ढीले हैं।
4: अच्छा, कौन हो तुम?
3: देखो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं।

0: हेलो, मेरे ढीले बंधन तो खुल गए। लाओ तुम्हारे बंधन भी खोल दूं।
1: हाँ।
0: दो इधर लाओ ना।
1: ये यहाँ से ध्यान से। मैं मुक्त हो गया।
2: 1930 के दशक से शुरू हुई ये यात्रा आज 90 वर्षों का इतिहास बन चुकी है।
3: इस दौर में रेडियो नाटक की शुरुआत प्रयोगात्मक रूप में हुई। मंच नाटकों को रेडियो के अनुकूल ढालने की कोशिश की गई। साहित्यकारों को रेडियो से जोड़ा गया।
2: सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर और उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी और उर्दू के प्रमुख साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार थे, जिनका आकाशवाणी दिल्ली से गहरा संबंध रहा है।
3: सादत हसन मंटो, कृष्ण चंदर और

0: उपेंद्र नाथ अश्क ने आकाशवाणी में कार्य किया और उनके कई नाटकों और कहानियों का प्रसारण आकाशवाणी से हुआ।
1: आकाशवाणी, शब्दों की वो दुनिया जिसने 90 वर्षों से अनगिनत कहानियों को आवाज दी है। हम आपको ले चलते हैं उन दिनों में जब कलम और आवाज मिलकर जादू रचते थे।
2: मैं सादत हसन मंटो। रेडियो पर कहानी लिखना आसान नहीं, यहां शब्दों को बोलना पड़ता है, सिर्फ लिखना नहीं, हर शब्द को जीना पड़ता है, आवाज ही असली किरदार बन जाती है।
1: मंटो साहब, आपकी कहानियां रेडियो पर जीवन बन जाती हैं।
3: ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो हवा में तैरती है। मैं कृष्णचंद्र। रेडियो ने मेरी कहानियों को गांव गांव तक पहुंचाया। जहां किताब नहीं थी वहां आवाज थी, वहां रेडियो पहुंचा, मेरी कहानियां गांव की आवाज बन गई।
4: मैं उपेंद्र नाथ अश्क। संवाद जितना सरल होगा असर उतना गहरा होगा। रेडियो नाटक में शब्द नहीं, संवेदना बोलती है। रेडियो नाटक में सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है।
5: देखिए
4: भाई, रेडियो की ये दुनिया बड़ी निराली है। यहां शब्द ही सब कुछ है, ना रंग ना मंच, फिर भी पूरा संसार खड़ा हो जाता है।
2: हाँ अश्क साहब, और यही इसकी ताकत भी है। यहां सच छिपाया नहीं जा सकता, आवाज सीधे दिल तक जाती है।
3: और कल्पना की उड़ान भी। यहाँ श्रोता अपनी अपनी दुनिया खुद रचते हैं, हम सिर्फ बीज बोते हैं, पेड़ तो उनकी सोच में उगता है।
4: यही कारण है कि नाटक सिर्फ मंच तक सीमित नहीं, आकाशवाणी ने उसे घर घर पहुंचा दिया।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
4: देखिए मंटो साहब, रेडियो ने हमें कागज से उठाकर सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया।
2: हाँ अश्क साहब, यहाँ कहानी लिखी नहीं, जी जाती है। हर आवाज में एक सच्चाई होती है। रेडियो ने हमें ईमानदार भी बनाया है
3: जी।
2: यहाँ दिखावा नहीं चलता, सिर्फ असर चलता है।
4: बिल्कुल।
3: और असर तभी होगा जब कहानी दिल से निकले, चाहे वो दर्द हो, हंसी हो या सच्चाई, और वही सच्चाई श्रोताओं को बांध लेती है। जब हमारा नाटक प्रसारित होता है तो हर घर एक रंगमंच बन जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
4: सही कहा। रेडियो ने हिंदी और उर्दू दोनों को एक ही धड़कन में पिरो दिया। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
2: और यही वजह है कि हमारे किरदार अब सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की आवाजों में बसते हैं
3: जी। और सोचिए, बिना मंच बिना पर्दा, सिर्फ आवाज।
2: हाँ।
3: और फिर भी कितना असर।
2: वाह।
4: जब तक शब्द हैं, ये तरंगे चलती रहेंगी
3: जी।
4: ये माइक सिर्फ मशीन नहीं है, ये हमारी आवाज को अमर कर देता है।
2: और हमारे सच को भी, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो।
3: और हमारी कहानियों को
2: जी,
3: जो हर घर तक पहुंचती हैं
2: जी। जी,
0: इन शब्दों में वही जादू है जिसने 90 वर्षों से आकाशवाणी को जीवंत रखा है। अश्क, मंटो और कृष्णचंद्र जैसे रचनाकारों ने न केवल नाटक लिखे बल्कि आवाज को आत्मा दी।
1: इन महान साहित्यकारों की आवाजें आज भी गूंजती हैं आकाशवाणी के गलियारों में।
0: आकाशवाणी, जहां कभी स्याही की खुशबू से नाटक जन्म लेते थे और आज कीबोर्ड की टकटक से।

0: अश्क साहब
1: जी,
0: आप लोग सच में हाथ से पूरा नाटक लिखते थे?
1: हाँ।
0: इतनी मेहनत और फिर लाइव प्रसारण?
1: मेहनत ही तो असली पूंजी थी। स्याही से लिखे हर शब्द में ठहराव होता था, सोचने का वक्त मिलता था।
0: अच्छा।
2: और काट छाट भी आसान नहीं थी, गलती हुई तो पूरा पन्ना फिर से लिखो। आज तो डिलीट का बटन है।

0: जी थे, सत्येंद्र शरद जी थे और दीनानाथ माथुर जी थे, सब अपनी कला में गुरु थे अपने फन के। जो हमारा तलफ्फुज है, किस तरह से शब्दों को तोल मोल कर बोलना है, ये सब उन्हीं ने सिखाया हमें। हमारी रिहर्सल हुआ करती थी और अगर हम पेन ना लेकर जाएं, ऐसे देखते थे कि पेन लेकर नहीं आते ड्रामा सेक्शन में, जबकि सबको स्क्रिप्ट मिलती थी तो उसमें करेक्शंस करनी है, पॉजेस बनाने हैं, कैसे पॉज के ऊपर एक लाइन देनी है, किस शब्द को किस वजन से बोलना है, वो सब बताया जाता था। इतनी बारीकी से सब समझाया जाता था कि आज भी वो हमारे काम आ रहा है, हमारी स्पीच में ये बातें बहुत अहम हैं। आज भी मुझे याद है कि एक बार तिलक नगर का जिक्र आया किसी नाटक में, किसी डायलॉग में, तो मैंने तिलक नगर बोल दिया तो दीना भाई ने उसी वक्त, तिलक नहीं होता, तिलक होता है, तो वो छोटी छोटी सी बातें आज भी याद आती हैं। और उन दिनों में जो बहुत बड़े बड़े नाटक हुआ करते थे स्टेज पे, उनको अभी रेडियो रूपांतर होता था। दर्द आएगा दबे पांव शीला भाटिया का नाटक था जो हम रिकॉर्ड करने आए थे। बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आए, हमारे जो लुक आफ्टर करते थे प्रोडक्शन को, वो हमारी प्रॉपर्टी का ट्रंक भी उठा कर ले आए थे, तो वहाँ पर इतना हंसे हम लोग कि रेडियो पे प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो साउंड इफेक्ट्स होते हैं। फिर वो दौर गया, बहुत बढ़िया सफ़र रहा और आज कितने लोगों के साथ हमने काम किया है। पर हाँ, जो इनिशियल हमारी फाउंडेशन थी, जो हमारी नींव रखी गई, वो तो दीनानाथ जी और सत्येंद्र शरद जी इनके द्वारा ही रखी गई, उनके नाटकों में काम करके ही हमारे को आज वो सब मिला है जो हम अपने फन के लिए, अपने थिएटर पे, फिल्म्स में, टेलीविज़न में, जो हमारी डायलेक्ट डिलीवरी है उसमें अगर कुछ भी ठीक है तो वो इन्हीं लोगों की गाइडेंस की वजह से है। और क्या क्या एक्टर होते थे, वीएम बडोला जी, श्याम अरोड़ा जी, उत्तरा थी, दीनानाथ जुत्सी होते थे, ओम शिवपुरी जी, लेकिन स्टूडियो आज वही है, वही स्टूडियो है, तब उसे स्टूडियो नंबर 5 बोलते थे, आजकल स्टूडियो नंबर 1 है, लेकिन वही जगह वही स्टूडियो, जब भी वहाँ पर जाते हैं तो सारी पुरानी यादें ताज़ा हो आती हैं।
1: एक यात्रा जो शब्दों से शुरू होकर दिलों तक पहुँचती है,
2: आकाशवाणी, शब्दों और संवेदनाओं का अमर सफर, जहाँ शब्द ही दृश्य है और आवाज ही अभिनय।
3: यहाँ नाटकों में कोई मेकअप नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, रेडियो पर तो बस कलाकार की आवाज़ ही टूल है, और श्रोता को उस दुनिया में लेकर जाना जो वास्तव में श्रोता देखता नहीं था लेकिन फिर भी देखता था। आवाज़ का ताना बाना ही कुछ ही होता था, और उतार चढ़ाव, रुकना, हंसना, बोलना, रोना, ये सब कुछ इसी आवाज़ के करिश्मे का असर होता है। आवाज़ ही कलाकार का, रेडियो के कलाकार का चेहरा बन जाती है। अपनी आवाज़ के माध्यम से श्रोताओं के दिलों तक पहुंचना होता है। सच में मौन भी कभी कभी मुखर हो जाता है। इतने वर्षों तक अनगिनत नाटक किए, अनगिनत किरदार निभाए, लेकिन हर बार माइक के सामने खड़े होकर वही उत्साह, वही जिम्मेदारी महसूस होती है।
4: यहाँ चेहरे नहीं दिखते लेकिन दर्द और खुशी सब सुनाई देता है। यहाँ अभिनय आंखों से नहीं, आत्मा से होता है।
5: बिल्कुल, और हर शब्द एक दृश्य बन जाता है, यही तो रेडियो का जादू है, कल्पना का थिएटर।
4: सही कहा, माइक्रोफोन के सामने चेहरा नहीं, भावना चाहिए। रेडियो नाटक सिर्फ मनोरंजन नहीं, साहित्य का जीवंत रूप है।
6: सही कहा, यहाँ अभिनय शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, और हर शब्द एक दृश्य बन जाता है।
4: बिल्कुल।
1: प्रारंभिक दौर 1936 से 1947, आकाशवाणी के रेडियो नाटकों को आकार देने में कई निर्माताओं और निर्देशकों की अहम भूमिका रही।
3: ये तो एक साधना है, इसी साधना का हिस्सा रही वो रिहर्सल्स, जहां स्क्रिप्ट कैसे मार्क की जाती है, उच्चारण का क्या महत्व है, डिक्शन कैसे प्रभावशाली बनाता है, भाषा का ज्ञान कितना आवश्यक है, किरदार को समझना, उसके क्षेत्रीयता को समझना, उसकी बैकग्राउंड को समझना, ये सब कुछ समझकर ही फिर वो किरदार अपनी शक्ल पाता है। स्क्रिप्ट मार्क करना

0: बहुत ज़रूरी। मार्क करना मतलब कहाँ रुकना है, कहाँ किस शब्द पर जोर देना है, कहाँ छोटा पॉज है, कहाँ बड़ा पॉज है। हर कलाकार अपनी शैली विकसित कर लेता है। हमारे एक निर्देशक थे जो बहुत जोर देते थे कि भाई तुम्हारे हाथ में रिहर्सल के दौरान पेन या पेंसिल ज़रूर होना चाहिए। ये भी डिसिप्लिन का एक हिस्सा है, साधना का एक हिस्सा है कि स्क्रिप्ट को मार्क करिए। अभी जो बताया जा रहा है आप यहाँ रिहर्सल रूम से बाहर निकलते ही भूल जाएंगे, इसलिए इसे मार्क कीजिए और निर्देशक जो कह रहा है उस पर गौर कीजिए।
1: ये कहानी है उन आवाजों की जो दिखाई नहीं देती लेकिन दिल में बस जाती हैं।
0: बचपन का किस्सा यूं है कि लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और उन दिनों में स्क्रिप्ट ना साइक्लो स्टाइल होती थी और कागज भी मोटा होता था, और मेरी तो हाइट भी इतनी कम थी, बच्ची थी, कि मेरे लिए वहाँ एक पेडेस्टल रखना पड़ता था खड़े होने के लिए। लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था, उसमें दो मुख्य भूमिकाएं थी, एक वयस्क की और एक बच्चे की। जब तक हम आधे रास्ते पहुंचे रिक ब्रॉडकास्टिंग में तो पता चला कि मेरे हाथ से स्क्रिप्ट छूट गई। अब स्टूडियो में पैनिक, कोई बोल तो सकता नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्ट चल रहा है, आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो मेरे साथी कलाकार जो वयस्क व्यक्ति का रोल कर रहे थे, उन्होंने एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, मुझे गोद में उठाया और अपनी स्क्रिप्ट में दिखाते हुए कहा कि मतलब इशारा किया कि मैं यहाँ हूँ, ये लाइन बोल रहा हूँ और तुम्हारी यहाँ लाइन है। और वो कलाकार और कोई नहीं, ओम शिवपुरी जी थे, जिन्होंने बाद में फिल्मों वगैरह में बहुत काम किया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत ज़रूरी रहती है। आकाशवाणी मेरा विद्यालय बन गया। मैंने यहाँ अपनी आवाज़ की बारीकियों को समझा और शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को जीना सीखा। सच कहूँ तो हर भूमिका ने मुझे कुछ नया सिखाया, और माइक मेरे लिए एक यंत्र नहीं, मेरा साथी बन गया जिसके सामने मैं हर बार एक नया जीवन जीती रही।
2: आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रेडियो नाटक रिकॉर्ड हो रहा है।
3: अरे अरे लेवल देखिए यार, पता नहीं क्या है, माइक
4: चेंज कर, माइक की करो टेस्ट, 1 2 3 1 2 3।
3: माइक में आइए जरा, देखिए
4: क्या बात है, आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। ओके, ये रसल आ रहा है क्या? माइक टेस्ट, माइक टेस्ट 1 2 3 1 2 3, बहुत अच्छा है।
3: ओके ओके,
4: ये रसल रसल आ
3: गए।
4: माइक टेस्ट,
3: नहीं नहीं फट रही है आवाज,
4: फट रही आवाज, अच्छा अच्छा ठीक करते हैं, एक बार और कर लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हां जी हां जी, लेवल अप एंड डाउन है। हां जी,
5: साइलेंस प्लीज। आज के लाइव नाटक के लिए तैयार हो जाएं।
6: मेरा नाम दीनानाथ है, मैं रेडियो नाटक का प्रोड्यूसर रहा हूं। स्टूडियो में हर सन्नाटा भी एक संवाद है, एक ध्वनि है, उसे सुनना ही निर्देशन है। माइक्रोफोन आपका मंच है, आवाज में ही अभिनय चाहिए।
5: जल्दी कीजिए, 5 सेकंड में ऑन एयर। स्टूडियो की लाल बत्ती ऑन ही ध्वनि संकेत है और ये रहे हम ऑन एयर।
7: मेरा नाम सत्येंद्र शरत है, मैं रेडियो नाटक का प्रोड्यूसर रहा हूं। हर नाटक सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होता, ये एक अनुभव होता है। हर नाटक एक जिम्मेदारी है, सिर्फ मनोरंजन नहीं।
8: मैं चिरंजीत, प्रोड्यूसर रेडियो नाटक। आवाज का उतार चढ़ाव ही दृश्य बनाता है। कैमरा नहीं है लेकिन दुनिया है। माइक्रोफोन के सामने कोई चेहरा नहीं चलता, सिर्फ आवाज चलती है। आवाज की गहराई ही दृश्य बनाती है। कल्पना की उड़ान एक आवाज, और श्रोता अपने मन में पूरा शहर बना लेते हैं।
0: मैंने जिस समय ब्रॉडकास्टिंग शुरू की और आज के बीच में, तकनीक में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। शुरुआती समय में रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती थी। रात 9 बजे से 10 बजे तक का हर हफ्ते 1 घंटे का नाटक लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इफेक्ट्स भी लाइव लगते थे। दरवाज़ा खुल रहा है, खिड़की बंद हो रही है, बरसात है, बादल गरज रहे हैं, पत्तों पे चल रहे हैं, हवा चल रही है, सब कुछ लाइव लगता था। फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सब इंट्रोड्यूस हुए और आज निहायत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बदलाव के इस सफ़र की हम सफ़र रही।
8: सुविधाएं बढ़ गई।

0: नहीं है, पर चुनौती वही है, दिल को छूना। तकनीक बदल गई है, लेकिन कहानी अगर सच्ची नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्याही से लिखी है या कंप्यूटर से।
1: स्वतंत्रता के बाद 1947 से 1970 रेडियो नाटक अपने स्वर्ण काल में पहुंचे। इस समय हवा महल जैसे कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए।
2: और फिर प्रयोग और विस्तार का दौर 1970 से 1990। इस काल में रेडियो नाटकों में नए प्रयोग हुए। तकनीकी रूप से नाटक अधिक प्रभावशाली बने।
3: आकाशवाणी के स्वर्णिम दौर का मैं हिस्सा रही, मुझे बहुत गर्व है इस बात का। उस समय रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ माध्यम था और उसी माध्यम से श्रोताओं के दिलों तक पहुँचना होता था।
1: आकाशवाणी ने रेडियो नाटक को जन जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।
4: अच्छा अच्छा, आप सब चुप हो जाओ, नया रेडियो नाटक आने वाला है, सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है?
5: चलो चलो
4: बैठ जाना, लेकिन बेटा पहले जाके ना चाय बना के सबके लिए।
6: हर रविवार नया नाटक, घर में उत्सव जैसा माहौल।
7: हम जानते थे लाखों लोग हमें सुन रहे हैं।
6: यही है रेडियो नाटक का जादू, ना मंच ना पर्दा, फिर भी दुनिया हमारी।
7: और हर आवाज एक कहानी, और हर कहानी एक जिंदगी।
8: मैं दिनेश वर्मा, आकाशवाणी दिल्ली और रेडियो नाटक का हिस्सा होना मेरे लिए महज एक काम नहीं बल्कि एक रूहानी सफर रहा है। रेडियो नाटक की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ कलाकार के पास चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज होती है। हमने यहाँ सीखा कि कैसे एक हल्की सी सांस या आवाज का उतार चढ़ाव श्रोताओं के दिल में एक तस्वीर बना सकता है। दिग्गज प्रोड्यूसरों के साथ काम करते हुए जो अनुशासन और बारीकियां हमने सीखी ना, वो आज भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने सीखा कि शब्दों में रंग और आवाज में जज्बात कैसे भरे जाते हैं। उन्होंने सिखाया कि बिना देखे भी सिर्फ अपनी आवाज की बारीकियों से सुनने वालों के जहन में एक पूरी दुनिया कैसे खड़ी की जाती। रिहर्सल रूम की वो चाय, स्क्रिप्ट पर की गई वो घंटों की चर्चा और फिर फाइनल रिकॉर्डिंग का वो रोमांच। लोग कहते हैं कि रेडियो सिर्फ सुनने की चीज है, पर मैं कहता हूं कि रेडियो सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है। हमारे लिए माइक्रोफोन के सामने खड़ा होना किसी इबादत से कम नहीं है। आज भी जब स्टूडियो की वो लाल लाइट जलती है ना, तो दिल की धड़कन वैसे ही बढ़ जाती है जैसे पहले दिन बढ़ी थी। रेडियो नाटक की दुनिया में हम कभी राजा बने, कभी फकीर, तो कभी एक आम आदमी, बिना मेकअप और बिना कैमरे के सिर्फ अपनी रूह और आवाज से किरदारों को जिंदा करना एक जादू ही तो है। आकाशवाणी के गलियारों में आज भी उन पुराने नाटकों की गूंज सुनाई देती है। ना कोई लिबास और ना ही कोई साजो सामान, रेडियो तो बस रूह से रूह की एक पहचान है।
9: अब हम डिजिटल रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन भावना वही पुरानी है।
6: जैसे पहले लोग रेडियो पर कान लगाकर सुनते थे, आज भी रेडियो के साथ लोगों का वैसे ही जुड़ाव है।
10: मैं गीता वर्मा, आकाशवाणी द ड्रामा सेक्शन हमारे लिए एक पाठशाला की तरह रहा है। प्रोड्यूसर्स की वो डांट और प्यार दोनों ने हमें तराशा है। उनके सानिध्य में रहकर मैंने सीखा कि आवाज का उतार चढ़ाव यानी मॉड्यूलेशन ही एक कलाकार का सबसे बड़ा शस्त्र है। माइक्रोफोन के सामने सिर्फ संवाद नहीं बोले जाते, बल्कि अपनी सांसों और टोन से किरदार की रूह को छूना पड़ता है। सफल रेडियो नाटक के पीछे शब्दों की शुद्धता और समय की पाबंदी का बड़ा महत्व है। कभी कभी लगता है कि हम कलाकार तो बस एक माध्यम है, असली जादू तो उन आवाजों में है जो हवा के जरिए लोगों के बंद कमरों और खुले दिलों तक पहुंचती हैं। रेडियो वो कैनवास है जहां हम अपनी आवाज के रंगों से श्रोताओं के मन में चित्र उकेरते हैं। यहाँ कोई चमक धमक नहीं, बस जज्बात की सच्चाई होती है जो मीलों दूर बैठे किसी अजनबी को भी अपना बना लेती है।
2: भले ही आज नए

0: माध्यम आ गए हों, लेकिन रेडियो नाटक की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा है।
1: आकाशवाणी ने हवा महल जैसे कार्यक्रमों के जरिए रेडियो नाटक को लोकप्रिय बनाया।
0: 90 साल,
1: हजारों नाटक,
0: लाखों आवाजें,
1: ये कहानी खत्म नहीं होती,
0: क्योंकि जब तक आवाज है
1: रेडियो नाटक जीवित रहेगा।
0: आकाशवाणी के रेडियो नाटकों ने भारतीय समाज, साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया है। यह न केवल मनोरंजन का साधन रहा, बल्कि शिक्षा और जागरूकता का प्रभावी माध्यम भी बना। आज भी इसकी विरासत भारतीय प्रसारण इतिहास में अमूल्य स्थान रखती है।
1: आकाशवाणी जहां आवाजें कभी बूढ़ी नहीं होती,
0: आकाशवाणी नाटक जहां शब्द आज भी हवा में जीवित हैं।
1: आज भी आकाशवाणी दिल्ली अपने नाटकों के जरिए संदेश, संस्कृति और संवेदना को जीवित रखे हुए है।
0: अगर शब्दों को पंख मिले हैं तो वो आकाशवाणी ही है।
1: ये सिर्फ एक रेडियो नहीं,
0: ये हमारी रूह की आवाज है।
2: आवाज कभी खत्म नहीं होती,
3: आवाज कभी खत्म नहीं होती।
4: हम हैं आवाजें,
3: हम हैं आवाजें।
5: हम हैं कहानियां,
3: हम हैं कहानियां।
6: हम हैं रेडियो नाटक,
3: हम हैं रेडियो नाटक।
7: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अभी आप सुन रहे थे एक विशेष नाटक, हवा में गूंजते शब्द, 90 साल की यात्रा। आलेख समीर और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे राघवेंद्र तिवारी, राजेश बख्शी, प्रज्ञा जा, मयंक मनिल मिश्रा, सुयश दीप सिंह, नितिन गुप्ता, वैभव पाल, हर्षित सिंगल, ऋषि उनियाल, दिव्यांका ठाकुर, नेहा शर्मा, सलीम खान, अदिता चौधरी और रघु राम।
8: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म मन से ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर

0: संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: All the BRICS members and partner countries.
6: BRICS के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम

0: जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान

0: उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 97 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heatwave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
3: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ye hamari sabse badi prathmikta hai. Is vision mein अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
2: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that it looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. We have more from a West Asia correspondent.
4: The talks yielded a wide range of agreements on energy. India Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company signed a strategic collaboration agreement to raise UAE's participation in India's strategic petroleum reserves to 30 million barrels. A long-term LPG supply arrangement between Indian Oil Corporation and ADNOC was also concluded. On defense, the two sides signed a framework for a strategic defense partnership covering industrial collaboration, maritime security, cyber defense and information exchange. $5 billion in UAE investment to India was announced. $3 billion from the Emirates New Development Bank into RBL Bank, $1 billion from the Abu Dhabi Investment Authority into priority infrastructure projects, and $1 billion from the International Holding Company into Sammaan Capital. The two countries also signed agreements to establish a ship repair cluster at Vadnagar, a skill development framework for the maritime sector, and an agreement to set up an exaflop supercomputing cluster between India's SeaDAC and UAE's G42. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Speaking to Akashvani, Ambassador Deepak Mittal said, India and the UAE have taken several strategic decisions during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi to deepen cooperation in energy, technology, investment and trade.
5: Today, the visit of the Honorable Prime Minister, there were very strategic announcements, long-term decisions to deepen India's energy security and to deepen energy partnership between India and the UAE. The discussions between the leaders today also touched upon technology, the decisions to set up 8 exaflop supercompute facility in India, which will be based upon the Cerebras chip technology. That will form a very important part of our AI mission. Associated with was also the UAE decision to also partnership in developing the ship repair cluster in the Vadinar in India.
2: Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urge collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening the shared planet and futures such as climate change. Briefing media New Delhi after the conclusion of BRICS foreign ministers' meeting, Secretary Economic Relations and Minister of External Affairs Sudhakar Dalela said all the BRICS members and partner countries were highly appreciative and supportive of India's chairship priorities under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.
6: All the BRICS members and partner countries are very appreciative and supportive of India's chairship priorities on the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Building on this deliberation in the last 2 days and based on these discussions, we have issued a chair statement and outcome document. It captures the common position of BRICS members on almost all the subjects under the three pillars of BRICS strategic partnership.
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. Jaishankar said the breadth of the meeting reflects the importance that all leaders attach to strengthening multilateral cooperation in a rapidly changing world. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Foreign Minister of Iran Abbas Araghchi today addressed a press conference in New Delhi. He said there is no military solution to anything related to Iran. He said Iran is ready to help pass all vessels through the Strait of Hormuz. The Iranian foreign minister said Iran would welcome any constructive role by India.
7: I think India, with its

0: Uzbekistan. India also bagged 8 bronze medals in the under-17 category. With this, the total number of medals won by the boys and girls teams of the country combined reached 17 in this category. Earlier in the Asian Under-15 Boxing Championships, India won a total of 27 medals, including 9 gold, 6 silver and 12 bronze medals. In Asian Weightlifting Championships, Harjinder Kaur won bronze medal in the women's 69kg category snatch event by lifting 96kg in Gandhinagar today. Harjinder also lifted 121kg in the clean and jerk event and finished 4th overall with a total lift of 217kg. In Thailand Open Badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semifinals in Bangkok. They defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami in straight games in the quarterfinal match today. However, PV Sindhu and Lakshya Sen lost the singles quarterfinal matches. In IPL cricket, Chennai Super Kings were 153 for 5 in 18 overs against Lucknow Super Giants in Lucknow when reports last came in. Earlier, Lucknow Super Giants won the toss and opted to field. The sacred Piprawa relics of Lord Buddha were accorded an emotional farewell at the Leh airport today after the conclusion of a 14-day long grand exposition in Ladakh. Over 1 lakh devotees paid obeisance to the holy relics, making it one of the largest spiritual gatherings organized in the Union Territory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under-17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने कयाम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालिया पर्चा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरूरेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। और ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुरमुज की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
2: ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। दरअसल भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यगानगत का

0: किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो तवानाई, सरमायाकारी और सप्लाई निज़ाम समेत अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: मुज़ाकरात के नतीजे में कई मुआहदे तय पाए। इनमें तवानाई के शोबे में भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूजैबी नेशनल ऑयल कंपनी के दरमियान मुआहदा शामिल है। इस मुआहदे का मकसद भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम के जखायर में यूएई की शराकतदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करना शामिल है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के दरमियान एक तवील मुद्दती LPG सप्लाई का मुआहदा तय पाया। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इसमें सनअती ताउन, बहरी सलामती, साइबर दिफा और मालूमात का तबादला शामिल है। इसके अलावा भारत में UAE के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने वाडिनार में जहाजों की मरम्मत के लिए क्लस्टर कायम करने और बहरी शोबे में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए। इसके साथ ही भारत के CDAC और UAE के G24 के दरमियान 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर को कायम करने पर भी समझौता हुआ। अबूजाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बाज़ाब्ता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर अन्नयान बजात खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब इमारात की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो मुत्तहिदा अरब अमारात के F-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता है। इमारात का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म अपने दौरे के दूसरे मरहले में नेदरलैंड्स रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अबूजाबी के दौरे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज़ को तकवीत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमाया अंदाज से फ़रोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदऊ किया। ब्रिक्स के वज़राए खारजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तहीं अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज़ में ज़्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक़वामी और कसीर रुखी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। इन वज़ीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इकदामात पर जोर दिया। इन वज़ीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की ज़रूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़राए खारजा ने मुश्तरका कुर्रे अर्ज और आबो हवा की तब्दीली जैसे मुस्तकबिल को लाहक चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर रुखे निज़ाम के तहीं अपने अहद को उजागर किया। ब्रिक्स के वज़ीरों ने आबो हवा की तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने इस बात की सताइश की कि भारत की सदारत में ब्रिक्स लगातार कोशिशों और सरगर्मियों के जरिए तआवुन बढ़ाने के लिए ज़्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें इंसानियत और आवाम को मरकजी हैसियत दी गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि सभी ब्रिक्स अराकीन और साझेदार मुल्कों ने मजबूती, इख्तरा, इश्तराक और पायदार निज़ाम की तामीर के मौजू के तहत भारत की सदारत के तहत तरजीहात की काफ़ी सताइश की और अपनी हिमायत का इजहार किया। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर जहती के हदफ की जानब पेशकदमी में अपने सभी शराकत दारों के साथ काम करने के तहीं अहद बस्ता है। ब्रिक्स वज़राए खारजा मीटिंग 2026 के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में एक आम इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग की वसत इस अहम बात की जानब इशारा करती है कि तेज़ी से बदलती दुनिया में सभी रहनुमा कसीर जहती तआवुन को मुस्तहकम करने से वाबस्ता हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मीटिंग के तनाजुर में ईरान, मलेशिया, युगांडा और क्यूबा के वज़राए खारजा से भी मुलाकात की।

अगले 2 दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमा मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरक़ी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें 4 दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिर कुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हरा कर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिर कुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए 2रा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसी रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 IPS अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Current Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing about the Prime Minister's visit to five nations, strengthening India's global partnerships. The first leg of the visit began in Abu Dhabi, where in a special gesture, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan personally received the Prime Minister upon his arrival, a reflection of the deep and enduring bonds of friendship between India and the UAE. Prime Minister Modi extended gratitude to President Nahyan for the warm reception, describing the UAE as his second home. Listen in.
1: आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां थी, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। अनेक लोगों ने मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना लिया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।
0: The two sides also exchanged views on developments in West Asia and other major global issues. The visit witnessed several significant outcomes, with seven major agreements and arrangements announced. These include an MOU on strategic collaboration between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company. So to discuss the significance of these outcomes and what they mean for the future of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, we have with us two eminent guests, Professor Harsh V. Pant, Vice President, Observer Research Foundation, and Professor

0: what is going to happen during this visit. This is going to be about New Delhi's trying to position itself as a credible manufacturing, technology, and investment hub as we see a global supply chain reconfiguration. And Europe certainly is very important in that respect. Then, of course, you have the energy transition that we were talking about. We were talking about it in a certain context when it came to UAE. But if you think about Europe, India is attempting to diversify its suppliers, its technology partnerships, its green transition imperatives. So cooperation on renewables, green hydrogen, clean technologies is going to be figuring out a lot when Prime Minister goes from Netherlands all the way to Nordic countries. So I think in that sense, energy, economy, and then tech, India's growing emphasis on emerging tech and innovation ecosystems, semiconductors, AI, resilient supply chains, defense tech, startup collaborations, these are all critical now for India's external partnerships. So now from a traditional focus on political solidarity to a far more transactional and capability-oriented engagement with major economies is what is defining India's European outreach. And I think that is what we are going to see in country after country the Prime Minister goes, whether it is Netherlands, whether then after Sweden,
1: Sweden.
0: Norway, Italy. I think this is how we are going to see the outcome from that. We should assess the outcome from that perspective, that India is no longer content with symbolic diplomacy. It is seeking tangible gains, whether it's technology access, energy resilience, investment flows, and a strategic influence. And at a time when you have geopolitical fragmentation, India, what it is trying to do is basically leverage its growing economic weight to emerge as a pivotal actor in these two critical geographies where India has traditionally not been that important. But today, certainly, India's economic weight is giving it such a heft that it can have a bilateral partnership with the UAE and it can have a bilateral engagement with the Nordics. So we'll have the India Nordic Summit happen next week. So it is, I think, in that sense, a transformative moment in India's ties with both West Asia and Europe.
1: Before we proceed further into the discussion, focusing on the second leg of the Prime Minister's visit, which is to the Netherlands, here's an interview of the Indian Ambassador to the Netherlands, Kumar Tuhin, who described the Prime Minister's visit to the country as a significant one while speaking exclusively to Akashvani correspondent Sushrut Sharma. आइए सुनते हैं इसके प्रमुख अंश.
2: प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर नीदरलैंड आ रहे हैं. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के राजदूत श्री कुमार तुहिन सर. सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट?
3: यह यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे संबंध नीदरलैंड से बहुत मजबूत हैं. लेकिन यह एक ऐसा मौका होगा जबकि दोनों देशों के नेता नीदरलैंड में नई सरकार बनने के बाद पहली बार सामने सामने मिल रहे होंगे. तो इस मौके पर आज तक जो हमारी प्रगति हुई है उसको रिव्यू करना, हमारी जो प्रोग्रेस है उनको कंसोलिडेट करना और आगे एक नई दिशा देने का एक बहुत बढ़िया मौका है.
2: सर, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पे दोनों देश आपसी सहयोग के मुद्दों पे बात करेंगे और उनको और एक्सप्लोर करेंगे?
3: पहले से जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, और जो पानी का क्षेत्र है, और कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में तो पहले से ही बहुत कुछ काम हो रहा है. हम ये आशा करते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को मौका मिलेगा कि जो नए इमर्जिंग जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है या क्लीन एनर्जी का क्षेत्र है, मैरिटाइम कोऑपरेशन का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी हमारी आज की प्रगति को रिव्यू करना और हमें एक नई दिशा और नए निर्देश देने का एक अवसर.
2: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नीदरलैंड एक पायनियर है. उस क्षेत्र में हमारे यहाँ पे R&D के फील्ड में कुछ भारत में भी हो रहा है, तो क्या आगे हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं एक्सप्लोर करते हैं?
3: जी, नीदरलैंड विश्व की सबसे प्रख्यात सेमीकंडक्टर कंपनियों की जगह है और पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की जो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उनमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी बढ़ाने का काफी बड़ा काम है. तो इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एक तरह के हम लोगों का स्ट्रेंथ है और हमारी भूमिकाएं हैं, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि डच कंपनियां जो कि अभी भारत में मौजूद हैं लेकिन उनकी और बढ़ने की अभी आशा है और पोटेंशियल है, उसको हम लोग एक नए स्तर पर लेके जा पाएंगे.
2: सर, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी आजकल बहुत बात हो रही है. नीदरलैंड इसमें एक पायनियर है लेकिन इंडिया भी इसमें एक उभरता हुआ लीडर नजर आ रहा है. सर, उस क्षेत्र में से कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे ये हमको बहुत बेनिफिट करेगा? हम सुन रहे हैं कि कुछ क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर में भी ग्रीन हाइड्रोजन का एक रोल है अदर देन एनर्जी सिक्योरिटी.
3: जी, सो नीदरलैंड्स क्लाइमेट के एरिया में, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के इलाके में काफी बढ़िया करते हैं. हमारे देश में भी आपको पता है कि क्लाइमेट, वातावरण और साथ साथ कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो डच कंपनियों के पास जो उनकी जो तकनीक है, उनके पास जो आधुनिक तकनीक है, उनका जो ज्ञान है, उनको हम लोग भारतीय कंपनियों के साथ जोड़ सकें, यहाँ के रिसर्च

0: used to be. And there is a more strategic ambition in Italy now to play a larger role in the Mediterranean, for example, where India-Italy collaboration, strategic and defense collaboration, is certainly being looked at very, very carefully. Defense partnership with Italy is something that will continue to grow and that we will see some of that reflected as an outcome of this visit as well. But I would also say that Italy, when it comes to investments and clean energy partnership, Italy is also very, very critical. By and large, what the momentum that this partnership has gathered, we are going to see that momentum being reflected during this visit. And I think the ambition that Italy now puts in its relationship with India, that ambition has started showing, whether we are looking at economic relations, where Italy today is India's fourth largest trading partner within the EU, whether it is the geopolitical alignment and strategic alignment between the Indo-Pacific and the Mediterranean, whether we are looking at cybersecurity, AI, and renewable partnership, or whether we are looking at the defense industrial cooperation. There is a military cooperation plan which focuses on how can you bridge the gap as far as India's Atmanirbhar initiative is concerned and Italy's competence in aerospace and ship design is concerned. So I think we are looking at a relationship that is increasingly becoming ambitious, and we are going to see some of that ambition get reflected in the outcomes of this visit.
1: Absolutely. We'll keep a close track of what these significant outcomes will be. But broadly, from trade and technology to strategic cooperation, the expected outcomes of the Prime Minister's five-nation visit will play a very, very important role for our future diplomacy, for our growth priorities, but also for the global role that India is now playing. On that note, we'll have to call it a wrap on this edition of Current Affairs. Thank you once again, Professor Pant, Professor Joshi. Thank you for joining us. Well, so that brings us to an end of this program. Thank you to both our guests for sharing your insights with us. Also, thank you to our listeners for your valuable time. You can also listen to this program on our mobile application, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
2: Current Affairs.
3: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम करंट अफेयर्स. यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया. अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.
5: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है. भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है. हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है. भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा.
4: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए. संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी दूसरी यात्रा के चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं. ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है. ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और इनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया. उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर बल दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुटुरपत्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी. इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख

0: तब मरकर उभरा है।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कल मेडिकल कॉलेज में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपुलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये फैसला ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते थे। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 10 बजकर, ये लीजिए पूरे 10 मिनट और 17 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आज हम लाए हैं आप सभी के लिए कुछ भोजपुरी गीत। कलाकार हैं विजय भारती झा। आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग, जिसके अंतर्गत आपने आज सुने विजया भारती की आवाज में गाए कुछ भोजपुरी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है राग रंजन यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। आइए अब सुनते हैं सितार पर बजाया राग जोग। कलाकार हैं सुनील कांत सक्सेना।

0: राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना सितार पर बजाया राग जोग, कलाकार रहे सुनील कांत सक्सेना। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग

0: आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic, and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism. Dr. S. Jaishankar also met foreign ministers of Iran, Malaysia, Uganda, Cuba on the sidelines of the meeting. Prime Minister Narendra Modi has

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी वक्त बता रही है ठीक 11:10 और ले लीजिए पूरे हुए 17 सेकेंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

जी हाँ, ये तेरा घर ये मेरा घर, और घर भी ऐसा जहाँ मोहब्बतों के रंग हैं, वहाँ ख्वाब है और उमंग है, तो वो घर सुंदर क्यों नहीं होगा। तो आज हमारे जो इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं रहूँगी वंदना, और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने गौर फरमाया है कि आपका घर घर है और घर ही रहेगा, या फिर कहीं वो मकान तो नहीं होता जा रहा। मकान से मतलब है कि भाई ईंट गारे का एक सर छुपाने का एक ठिकाना तो है, लेकिन वहाँ ये मोहब्बत वफा और उमंग के रंग जो है कहीं ना कहीं गायब है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हालांकि हमें इस दिवस की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि भारत में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है ना, जो कहते हैं हिम्मत और सबलता देने वाली इकाई है, वो घर ही कहा जाता है। लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से सब चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें भी अपने अपने घर को ज़रूर एक बार इस नज़र से देख लेना चाहिए कि वो प्यारा सा जो हमारा घर है ना, घर ही रहे, वो मकान ना बनने पाए। बहुत सारे संदेश भी हमारे साथी दोस्तों के आ रहे हैं, उन सभी के संदेशों को भी शामिल करते हैं चलिए। लेकिन एक और खूबसूरत सी पेशकश पहले आप सभी के नाम।

बिल्कुल भाई, अपना घर सबसे प्यारा और स्वर्ग से भी सुंदर लगता है, लेकिन घर बनता किससे है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो घर में ज़रूरी है वो रिश्ते, और उन रिश्तों में आपस में प्यार, लगाव, या फिर कहें वो गर्मजोशी जो आपके मकान को आपका घर बनाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज परिवार दिवस मनाया जा रहा है, तो यही मेरी कोशिश थी कि हमारे सभी साथी दोस्त जिनका घर यकीनन बहुत बहुत सुंदर है, उनके घर में भी सब हंसते मुस्कुराते चेहरे रहते हैं, लेकिन कहीं अगर कोई नाराज़गी किसी से चल रही है, तो आज बहुत बहुत ही अच्छा दिन है कि आप अपने उस अपने को मना लीजिए और अपने बेहतरीन, अपने सुंदर घर की खूबसूरती, उसी गर्मजोशी यूं ही बनाए रखिए। और फिलहाल हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगा रहे हैं हमारे सभी लिसनर, जिनके खूबसूरत से संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। लालगिरी साहब जो हैं हमारे साथ हैं और कहते हैं कार्यक्रम और आपका जो कार्यक्रम पेश करने का जो शायद तरीका है, लिख रहे हैं कि उन्हें पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियासत हुसैन साहब भी इस समय हमें सुन रहे हैं और फारूक अली खान साहब भी हैं जो कह रहे हैं कि हम भी आपको इस समय सुन रहे हैं। साथ में संजय साहू साहब हैं, इंद्रभान सिंह जी हैं, प्रकाश वर्मा साहब भी हमें सुन रहे हैं और रियासत हुसैन है, प्रकाश वर्मा जी फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि आप एक व्यक्ति बार बार लगातार अगर संदेशे भेजते हैं ना, तो फिर आप भी नाराज़ हो जाते हैं कि हम आपके संदेशे पढ़ नहीं पाते। तो बताइए, एक ही व्यक्ति अगर इतने संदेशे भेजेगा तो बाकियों के संदेशों को हम कैसे शामिल कर पाएंगे। दुर्गेश साहब इस समय हमें सुन रहे हैं, आमिर हुसैन है, अनिल मोहन है, अहमद फूल वाले भी इस समय हमें सुन रहे हैं, अनिल जैन है, संजय ढींगिया साहब हैं, दारा सिंह है, हाजी मंजर साहब हमारे साथ हैं, नारायण खर्चे जी हैं, हसीना जी हमें सुन रही हैं, टी डी मल्होत्रा साहब हैं, रमेश कुमार, आर कुमार और कमल भी हमें सुन रहे हैं। साथ में है हमारे नंद किशोर घाटे, राजकुमार दोधी, राजी शर्मा, राज क्रिएशन से भी हमारे कुछ साथी जुड़े हैं, पूनम गंगेचा है, सुदर्शन शाह साहब हैं, ताज मोहम्मद, गुरमीत सिंह, पूनम गंगेजा, अकरम हुसैन और सतीश अनेजा के साथ, अनिल मोहन, हरजिंदर शिंदे और रजक मोहम्मद साहब, सुनील पाठक जी हमें सुन रहे हैं। अभी देखिए मैंने कितने एक ही सांस में आप सभी के नाम ले लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि घर के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से जो है हमारे साथी सतीश अनिजा साहब लिखते हैं कि वंदना बहन, एक साल पहले ही नया घर बनाया है, उसमें खूबसूरत सा मंदिर भी बनाया है जिसमें हम सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही सुकून मिलता है। परिवार में आपसी सत्कार भी बना रहता है। जब कोई सज्जन मित्र या रिश्तेदार मिलने आते हैं तो उनको हम ऐसा ही सम्मान देते हैं कि वो हमेशा याद रखे। परमात्मा की असीम कृपा है और हमारा घर स्वर्ग से सुंदर है। साथ में विमल अनेजा भी बहुत खूबसूरत, जैसे कि हमने कहा कि अब तो चार दीवारी को आपने घर बना लिया, अब बहुत ज़रूरी है कि अपने सभी रिश्तों को सहेजे और सबसे ऊपर वो रिश्ते जो इस घर की नींव रखते हैं।

भाई संभल से इसी बीच हमारे साथ छोटे अंसारी साहब जुड़े हैं और साथ में असलम अंसारी, जो कहते हैं कि वाह जी वाह क्या बात है, प्रोग्राम बहुत ही शानदार है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मित्र। इसी बीच सूरज ढाक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में दुर्गेश नागनपुरे भी हैं, राजेश वर्मा साहब हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से, रश्मि पंड्या भी हैं जो लिखती हैं वना जी गुलाब से, आपका स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि, आपका गुलाब और कभी आपकी चाय मेरे बहुत काम आती है। और घर के लिए लिखती हैं कि वना सखी सुनो, मैं घर जो है अपना बहुत ही खुद से हौसला रखकर और बराबर पवित्र मंदिर की तरह साफ सुथरा रखती हूँ, और घर जो है ईश्वर के मंदिर की तरह है, और ये बात मतलब सभी को पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहती है कि बहुत ही खूबसूरती और प्यार से रश्मि आप अपना घर सहेज रही हैं, बहुत बढ़िया। साथ में भरत कुमार साहब भी हैं और इसी बीच हमारे साथ जो हैं नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा भी हैं, इंद्रभान सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे भी हमें सुन रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब भी हमारे साथ हैं, हाजी बंजर साहब भी हमें सुन रहे हैं, और कृष्णा जोतोलिया और

साथ में उनका पूरा परिवार है, पूजा, कोमल और आरव। स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारती भी इस समय हमें सुन रही हैं और साथ आ गए हैं हमारे किशन सपकाल, जो मुझे कह रहे हैं पूजा दीदी। तो भाई पूजा दीदी नहीं, बोलिए वंदना जी। जी हाँ, मानती हूँ मेरी बहुत परम मित्र हैं पूजा, और हमारी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा करीब करीब मिलती जुलती है, लेकिन ये पूजा नहीं किशन साहब, ये वंदना है। इसी बीच फारूक अली खान साहब हैं, लिखते हैं, घर तो घर होता है, मैंने पूरे परिवार से ही घर में जो माना जाता है रौनक होती है, बहन भाइयों की शादियां हो गई हैं, फिर अपने अपने बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, घर में वाइफ दो बेटियां हैं, किसी भी त्यौहार पर जब बच्चे घर आते हैं ना तो यकीन मानिए रौनक सी लौट आती है। फारूक अली खान साहब कहते हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि घर परिवार जो होता है ना वो रिश्तों से ही पूरा होता है। माँ बाप हैं तो माँ बाप से ऊपर हम उनके भी प्यारे प्यारे माँ बाप हैं, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं नानी माँ। और इन्हीं नानी के घर जाने की जो गर्मियों की छुट्टियों की बेसब्री के साथ हमने मन्नतें मांगी कि हम घर जाएं, नानी के घर जाएंगे और खूब मज़े करके आएंगे, तो ये नानी, ये दादी, ये भाई, ये बहन और ये प्यारा सा परिवार जो है रिश्तों में चार चांद लगाता है और आपके घर को मुकम्मल करता है। तो आइए, जब बात नानी की चली है तो नानी के ऊपर क्यों ना एक प्यारा सा गीत सुनें।

नानी माँ, और नानी माँ की जब बात आती है तो नानी माँ से मिलता था बहुत ही प्यार, ढेर सारा बेशुमार प्यार। और वहीं जो दादी माँ है उनसे मिलती हैं सीख। इसी बीच मैं बात करूं तो बहुत सारे संदेश मेरे पास आ रहे हैं। एसएम जावेद साहब हमें सुन रहे हैं, साथ में शगुफ्ता और अंजुम भी हमें सुन रहे हैं, अरुण कुमार पांडे हैं, प्रभाकर जोदले साहब हैं, प्रकाश वर्मा भी हैं जो कह रहे हैं कि नमस्कार दीदी, और कार्यक्रम आई थिंक इन्हें भी बहुत पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि गृहिणी घर की कुशल संचालक होती है, सुबह से रात तक बिना थके वह परिवार की ज़रूरतों को पूरा करती है। इस दिवस के माध्यम से समाज को याद भी दिलाया जाता है कि घर का जो काम है वो भी अत्यंत मूल्यवान है। बिल्कुल प्रकाश साहब, हम तो कहते हैं निखिल जी, प्रिंस और यशस्वी की स्त्री तो घर का आधार है, उसको अगर आप साइडलाइन कर देंगे तो काम कैसे चलेगा। इसी बीच स्वर्ण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में शीशपाल जी हैं जो कह रहे हैं आरजे जी पे जो प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ गाजियाबाद से, प्रोग्राम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो वहीं फारूक अली खान साहब भी कहते हैं कि प्रोग्राम का अंदाज इन्हें पसंद आता है, और वो कहते हैं हर अल्फाज जो है आपका उसमें प्यार नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नानी माँ की बात हो गई, और प्यारी सी दादी माँ की सीखों को अगर हम भूल जाएं तो हमारे को जो है पाप लगेगा, है ना। तो चलो दादी माँ के ऊपर भी एक खूबसूरत सा गीत।

भाई सुंदर सा जो घर परिवार है वो सजता ही तभी है जब बहुत सारे प्यारे जो रिश्ते होते हैं ना वो महकते रहते हैं। उसी में से एक रिश्ता जो है वो भाई का भी है जिस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आइए कुछ संदेशों को और शामिल करते हैं। स्वीटी जोड़ा हमें सुन रही है और साथ ही साथ सुखविंदर सिंह जोड़ा साहब भी हमें सुन रहे हैं पंखा रोड जनकपुरी से। तो वही नासिर शेख साहब का भी मैसेज आया है जो कहते हैं उद्घोषक दीदी नमस्ते, सुंदर प्रोग्राम और बेहतरीन गीत आपकी पेशकश लाजवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। साथ में नाजिया नासिर और साथ में है साजिद और शाहिद भी। और इसी बीच एक संदेश हमें और प्राप्त हुआ है ये रफीक भाई पवार साहब का जो कहते हैं दीदी को प्यार भरा आदाब। आज के टॉपिक में श्रोताओं के विचार सुनकर हमें भी हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। वो नाना नानी का घर और वहाँ की मौज मस्ती, गर्मियों की छुट्टियाँ वहीं गुजारना, फिर हमारी बुआ के बच्चों का भी आगमन होता था। वाकई वो दिन बड़े ही अनमोल और यादगार होते थे।

ये कहना है खंडवा से मोहम्मद रफ़ी पवार का, साथ में है बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकर लाल, वनीता और मोहम्मद हसनैन पवार। बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई यही हम बात कर रहे थे कि जो घर की खूबसूरती ही ऐसी होती है, कहते ना तभी घर महकता है जब उसका हर एक रिश्ता बहुत खुश हो, उसमें गर्म जोशी हो और वो खुलकर हंसता मुस्कुराता हो और सांस लेता हो और आपस में जो तारतम्य है वो लाजवाब हो। जैसे कि हमने कहा, नानी की बात हमने कर ली, दादी की बात कर ली, माँ बाप की बात कर ली, तो एक और बहुत प्यारा रिश्ता है जो बहन के लिए बहुत खास है, वो है उसका भाई के साथ ये रिश्ता।

और इसी बीच छोटे अंसारी साहब हमें कहते हैं कि भी आज का प्रोग्राम उन्हें सालों साल याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रभाकर जोंधले साहब और साथ में आरती जी भी इस समय हमें सुन रही हैं। और जैसे कि हमने कहा कि एक जो घर है वो ऐसे ही नहीं बन जाता कि बस आप में सारे रिश्ते साथ रहते हैं। मेन होता है कि उनमें आपस में कितना प्यार है, कितनी गर्मजोशी है, कितना आप एक दूसरे पे प्यार और एतबार रखते हैं। तो जैसा हमने कहा कि उसकी एक सुंदर जो कली है वो बहन है, तो सुंदर सा एक फूल उस परिवार की माला में भाई भी है।

भाई देखिए, इसी कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ हम बिल्कुल जो है समापन की ओर आ गए। और शिशुपाल, जो शीशपाल वर्धन साहब है, उनका भी संदेश हमें मिलता है और कह रहे हैं कि आज की प्रोग्राम ने दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश वर्मा साहब भी हमें इसी बीच सुन रहे थे, और साथ में हमारे हैं कौशल बी पवार साहब और उनका समस्त परिवार हमारे साथ है। और जो कहते हैं कि माँ बाप का प्यार

0: बहुत अनोखा होता है। और माँ बाप के जाने के बाद ना अक्सर जो घर की बच्चियाँ होती हैं वो बड़े भाई भाभी में ही माता पिता की छवि ढूंढते। बिल्कुल सही आपने कहा। और वही प्यार दुलार मिलना मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो घर, वो परिवार, वो आंगन जो है उनका वो बना रहा। और यही परिवार को मुकम्मल करता है। जैसे कि हमने कहा कि मकान और घर में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो कोशिश कीजिए आपका घर हो और वो भी हंसता मुस्कुराता, जहाँ के हर रिश्ते जिंदा हो और सांस लेते हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 4:50 पर एक बार पुनः हम आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। आपसे कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने UAE के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और UAE ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता की माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सच

0: क्षेत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कल हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his five-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit from 15 to 17 May, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their majesties, the King and the Queen. Today, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI, where the Netherlands stands as global leader. The visit of PM carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi has reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested the kingpin in connection with alleged irregularities in paper leak related to NEET UG 2026 examination. The agency said that P.V. Kulkarni has been arrested at Pune after thorough interrogation. P.V. Kulkarni is a chemistry lecturer involved in the process of examination on behalf of National Testing Agency. He had access to the question papers. Meanwhile, the National Testing Agency, NTA, yesterday announced 21st of June as date for reconduct of NEET UG 2026 exam. Central Board of Secondary Education, CBSE, has announced a two-stage review process for Class 12 students dissatisfied with their results. Students can apply online for scanned copies of evaluated answer books from the 19th to the 22nd of this month at 700 rupees per subject, while applications for verification and re-evaluation can be submitted from the 26th to the 29th. Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has stated that Made in India paper tools have focus on quality, functionality and sustainability. In a social media post yesterday, Mr. Vaishnaw said he met two young entrepreneurs, Aparna and Dinesh, who are behind RODA notes. The minister added that good stationery has always been close to him. Advocating for greater transparency in the West Bengal Assembly, Chief Minister Suvendu Adhikari called for live broadcast of question hour, debates, bills and budgets. He said people of the state have

आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज 24x7। सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। साथियों, सुरों का सफरनामा लेकर हाजिर हूं मैं अल्पना। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को की आत्मा और भक्ति, पवित्रता और प्रेम की मिठास को हम सबके अंदर घोला अपने प्यारे प्यारे गीतों के जरिए। तो आज इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से और सदाबहार नगमे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी दिव्य आवाज़ की मालिक की जिनका नाम है KG यशुदास। जी हाँ, भारतीय शास्त्रीय संगीत के खूबसूरत गीत उन्होंने गाए और साथ ही भक्ति गीत और प्रेम रस के प्यारे प्यारे गीत उनकी आवाज़ में हम आपको सुनवाएंगे। तो लीजिए सुनते हैं पहला गीत, जो कि बहुत ही प्यारा गीत है और उनका बहुत फेमस गीतों में से है, और ये हमने चुना है फिल्म चितचोर से। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा और मैं हूं आपके साथ अल्पना। 1976 में आई फिल्म चित्पुर चोर, जिसका भी आपने गीत सुना, यह गीत यशुदास जी के करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। जी हां, गांव की सादगी और प्रेम की मासूमियत को उनकी आवाज़ ने अमर कर दिया। दोस्तों, 10 जनवरी 1940 को केरल के फोर्ट कोची में यशुदास जी का जन्म हुआ और उनका पूरा नाम था जोसेफ यशुदास। जी हाँ, कट्टा सेरी जोसेफ यशुदास। जी हाँ, इसीलिए उनको केजी यशुदास भी कहते हैं। उनके पिता अगस्टीन जोसेफ मलयालम थिएटर और शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार थे और घर में संगीत का माहौल था और यहीं से शुरू हुई हुआ उनका सुरों का सफ़र, जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। तो चलिए, एक और प्यारा सा गीत और आवाज़ आप तो जानते ही हैं। आज हम बात कर रहे हैं यशुदास जी के ऊपर, तो फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन भाए।

0: खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए।
1: जी हाँ, कितना जीवन को सकारात्मकता और प्रेम का संदेश देता है ये गीत और आवाज़, अगर यशुदास की हो तो क्या कहने। और अगला जो गीत है वो है आशा भोसले और यशुदास की आवाज़ में, फिल्म छोटी सी बात से।

0: दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वारे।
1: संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे तेरे संग झूमे तेरी रागे।
0: दोष तेरा है ये तो हर दिन।

जी हाँ साथियों, जब दो दिल एक ही सुर में गुनगुनाते हैं तो ऐसे ही गीत जन्म लेते हैं। दोस्तों, यशुदास जी ने बहुत ही कम उम्र में ही कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की कठिन साधना शुरू कर दी थी। उनके आवाज़ में जो मिठास और स्थिरता सुनाई देती है वह वर्षों के रियाज का नतीजा है। और यह मानते हैं वो यही मानते थे कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ईश्वर की आराधना है, और इसीलिए उनकी आवाज़ में वो स्थिरता सुनाई पड़ती है। तो अगला गीत हमने चुना है स्वामी फिल्म से। सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

यहाँ सुना आपने राग आधारित ये गीत विरह की भावनाओं को इतनी खूबसूरती से पेश करता है कि सुनने वाले भी भावुक हो जाएं। और चलिए अगला गीत सुनते हैं, एक और ही प्यारा सा गीत है, फिल्म है साजन बिना सुहागन और आवाज़ तो आप जानते ही हैं यशोदास।

साथियों, क्या आप जानते हैं कि केजी यशुदास ने 50,000 से भी अधिक गीत रिकॉर्ड किए और उन्होंने हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, मराठी और संस्कृत जैसी भी भाषाओं में गीत गाए हैं। तो और उनके सुरों का जादू तो आप सुन ही रहे हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं फिल्म टूटे खिलौनों से, और ये 1978 की फिल्म है और इसको संगीत से सजाया था बप्पी लहरी ने। बहुत ही प्यारा गीत है।

जी साथियों, ये रोमांटिक एहसासों से भरा यह गीत आज भी पुरानी संगीत प्रेमियों के दिल में बसता है। इतनी खूबसूरती से निभाया है इस गीत को यशोदास जी ने, और इनकी जो गायकी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, गान गंधर्व भी कहा जाता है। जी हाँ, गान गंधर्व के नाम से भी इनकी गायकी को जाना जाता है। और उन्होंने शास्त्रीय संगीत की गहराई और उसकी पवित्रता को साफ आपने महसूस किया उनके कुछ गीतों में।

और ये रोमांटिक जो अंदाज़ उनका, उसको भी आपने महसूस करा। तो चलिए एक और अंदाज़ सुनवाते हैं हम आपको, वो है फिल्म दादा से। हमने ये फिल्म से गीत लिया है, सुनते हैं ये अगला गीत।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा, और आज हम बात कर रहे हैं यशोदास जी की। तो बेहतरीन सिंगर की हम बात कर रहे हैं, और पुराने दौर की सादगी और मधुरता से भरे इनके गीत आज भी सभी के दिलों पर राज करते हैं। और आपको हम बता दें कि भारतीय संगीत में इनके योगदान के लिए आपको कई सम्मानों से भी नवाजा गया, जिसमें कि 8 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले इनको, साथ में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, जो कि फिल्म अलाप से हमने चुना है। आवाज़ एक बार फिर यशोदास की।

जी हाँ साथियों, कितना प्यारा मेल है इनकी आवाज़ और शास्त्रीय संगीत का। ये तो आप सुन ही रहे हैं कि ऐसा सुरों में जादू खोल देती है आवाज़ यशोदास जी की। जी हाँ, और इनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं सीमित थी, बल्कि दुनिया भर के भारतीय संगीत प्रेमियों ने इनकी आवाज़ का भरपूर इनको प्यार दिया है। और इनके लाइव कॉन्सर्ट्स भी जितने भी रहे, उसमें एक अलग ही जादू महसूस किया गया। और तो चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं यशोदास जी की आवाज़ में, हमने चुना है इसे। फिल्म है हम अपने पराए, और इसमें जो संगीत से सजाया है पप्पी लहरी ने, और बोल हैं योगेश के।

और साथियों, देखिए कैसे समय समाप्त हो रहा है और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो एक खूबसूरत से अगले गीत के साथ ही अल्पना को इजाज़त दीजिएगा इस कार्यक्रम को ही समाप्त करने के, यानी कि शुरू का सफ़रनामा। आपको कैसा कार्यक्रम लगा बताइएगा और आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये और भी बहुत सारे गीतों के साथ अभी हम हाजिर होंगे कुछ ही समय बाद। लेकिन फ़िलहाल छोड़े जा रही हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ। फिल्म सदमा से हमने ये गीत चुना है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा। ये आकाशवाणी दिल्ली का ए आई आर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 1 बजने को है, आप समाचार सुनिए, पहले हिंदी में फिर अंग्रेज़ी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंड सिंह ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनल पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त

0: 118th birth anniversary of Indian anti-colonial revolutionary fighter Sukhdev Thapar. One of the iconic trio of Sukhdev, Bhagat Singh, Rajguru was held in Pakistan's Lahore yesterday. The event was organized by the Bhagat Singh Memorial Foundation, Pakistan, at the Democratic Lawn of Lahore High Court Bar. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Chennai Super Kings by 7 wickets in Lucknow. And that is the end of this news bulletin.
1: याकाशवी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुहानी गोल्डन एरा के। ये ओल्ड हिंदी फिल्म के आपको हम गीत सुनवाएंगे, वो गीत जो आज भी आपके दिलों पर राज करते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों को लेकर हाजिर हूँ मैं अल्पना, और शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस फिल्म मंजिल फिल्म से इस गीत के साथ, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में आप ये खूबसूरत सा गीत सुनेंगे।
2: कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुमझुम

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम की सुनहरी, जी हाँ, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड हिंदी फिल्म से प्यारे प्यारे नगमे। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में फिल्मबाजी से।

सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत जो कि हमने आपके लिए चुना है पुरानी फिल्मों से और पुराने नगमे जो कि गोल्डन एरा के नगमे हैं जो आज भी हमारे दिलों पे वैसे ही दस्तक देते हैं जैसे पहले दिया करते थे। तो चलिए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत, आवाज़ फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।

हाँ, हम भी आपके साथ वादे से जुड़े हुए हैं और लेकर आते रहते हैं प्यारे प्यारे गीत। और चलिए अगला गीत है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, रंगोली के फिल्म से।

लीजिए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बहुत ही प्यारा गीत है और इसे हमने चुना है फिल्म स्वयंवर से।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे
1: फिल्म संगीत का ये ओल्ड फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम है। इस प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, समय समाप्त हो रहा है इस कार्यक्रम का, आगे भी सुनते रहिएगा कार्यक्रम को अगले और कार्यक्रमों के।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIRL लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कि सुनहरे कार्यक्रम, 2 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

0: सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। वक्त हो गया है 2:10 और ये वक्त है गीत बहार कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक। तो चलिए आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारे प्यारे गीत।

और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से

0: गुपचुप। अरे आ जा रे फिर वही रात आई जाने जा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, जिसके अंतर्गत आपने सुनी नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है।

0: अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माही, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his 5-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their Majesties the King and the Queen. Today, Prime Minister Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Yesterday, during his UAE visit, Mr. Modi reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
1: Hormuz ko free, open or safe banaye rakhna ये हमारी

0: अभी आप सुन रहे थे मेहदी हसन की आवाज में ये खूबसूरत गजल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ

0: ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल की
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।
3: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभो।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कलाकार थे सरस्वती राजगोपालन। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रुद्र वीणा। कलाकार हैं सरस्वती राजगोपालन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। सुबह के 4:53 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए जान लें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग अर्ध मत्स्य इंद्रासन की। इसके बाद देशभक्ति गीत और कार्यक्रम स्वर रंजनी आप सुनेंगे 5:30 पर। 6:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में आप अनुराधा पौडवाल, मनोज मिश्रा, उषा मंगेशकर, शरण ओम शरण और जगजीत सिंह के गाए कुछ भजन सुनेंगे। ये 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन सुमित्रा नंदन के पंत के विचारों पर रामचरित मानस का समय रहेगा।

6:45 कार्यक्रम संगीतिका आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप विनोद कुमार तिवारी के गाए कुछ भजन सुनेंगे। गीतों भरी गुड मॉर्निंग होगी 7:30 पर। स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। धरती आकाश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। इस कार्यक्रम में आप जो विषय है वैज्ञानिक समाज के विकास में विज्ञान साहित्य का महत्व और अंडमान निकोबार की जैव विविधता। मिट्टी दी महक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद का समय रहेगा सुबह 10:10 पर। महिला कार्यक्रम घर आंगन आपके लिए प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:10 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से 1:10 पर। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है बेटी बेटा।

और इसके साथ हम आपको याद दिला दें कि दोपहर 3 बजे कार्यक्रम ब्रज माधुरी हम आपके लिए लेकर आएंगे। 3:30 पर नाटक 1 करोड़ की बोतल। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने उनकी अबूधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी लेंगे योग अर्ध मत्स्येन्द्रासन की।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है और अगर आप

गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्धमत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्धमत्स्येन्द्रासन। यही आसन
डायबिटीज

0: कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्धमत्स्येन्द्र आसन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: कार्यक्रम आओ योग करें के अंतर्गत आज आप जानकारी ले रहे थे योग अर्ध मत्स्येन्द्रासन की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंकज नौटियाल का गायन राग अहीर भैरव।